शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: शुभ प्रभात दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर पीएम भरद्वाज साहब जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा है वो बहुत बहुत जरूरी है, आज के परिपेक्ष में भी और पुराने परिपेक्ष में भी, और जो आगे आने वाला समय है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम इस बात को ठीक से समझें, अपनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तभी ये पूरा का पूरा समाज सुरक्षित रह पाएगा, चल पाएगा। सबसे पहले भरद्वाज साहब का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ हैं सर, क्या करते हैं।
1: पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा समीर जी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सनातन दर्शन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आज आप ये चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय नीड ऑफ द आवर है कि इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जहां तक सवाल मेरे परिचय का है, मेरा नाम डॉक्टर पीएम भारद्वाज है।

0: भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की चार संस्थाओं का पूर्व एमडी सीएमडी हूं, और साथ में मैं नेशनल लेवल पे मोटिवेशनल एवं मैनेजमेंट गुरु भी हूं, और मैंने काफी सारे लेख लिखे हैं जिसमें कि सनातन धर्म के, सनातन दर्शन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं
1: जी।
0: और वर्तमान में मैं जयपुर में हूँ, मेरा निवास जयपुर में है।
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि जो भी आज हमारे अतिथि हैं वो अपने विषय में पारंगत हैं, तो जाहिर से बातें हमें हल्की फुल्की बातें नहीं, बिल्कुल क्लियर, गहरी, गुनी हुई, समझी हुई बातों के बारे में पता चलने वाला है। तो शुरू करते हैं भारद्वाज साहब, और सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मेरे सुनने वालों, जितने भी हमारे श्रोता हैं, उनके दिमाग में भी आ रहा होगा। बार बार हम लोग सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म सुनते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हिंदी में, सिंपल भाषा में हमें समझाइए, ये सनातन धर्म वास्तव में है क्या?
0: देखिए समीर जी, सनातन धर्म सात्वत सत्य है। सात्वत सत्य का मतलब है जो पहले था, अभी है और आगे भी, जो कि अनंत है, ऐसा सत्य है। नैतिकता, आत्मज्ञान और मानव कल्याण पर आधारित जीवन दर्शन है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। समय, स्थान और परिस्थिति, चाहे हम भारतवर्ष में बात करें, चाहे किसी और दूसरे देश की बात करें, और समय, चाहे भूतकाल की बात करें या वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, हर परिस्थिति से ये परे है, मतलब हरदम ये सत्य है
1: जी। तो ये धर्म किसी विशेष समुदाय का है या सभी का है, क्या मतलब, इसको थोड़ा सा और समझाइए सर।
0: देखिए, जो सत्य होता है वो तो सभी पे लागू होता है, और सत्य जो है वो हर व्यक्ति के लिए, सत्य तो सत्य है, इसमें किसी जाति का, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है। अब ये ग्रेविटी लॉ ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष के लिए ही है, अमेरिका में लागू नहीं होगा, या ये जो है स्थान की बात करें, अगर पाकिस्तान में लागू नहीं है या चीन में लागू नहीं है, ये ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह लागू है। तो इसी तरह से जो सनातन दर्शन है या सनातन धर्म की बात अगर हम करें, ये एक जीवन जीने की पद्धति है, और ये हर व्यक्ति के लिए सत्य चीज है, और ये सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो।
1: होता क्या है भारद्वाज साहब, कि आज तक की डेट में जितना भी मैंने समझा सनातन को या सनातन के शब्द को सुना, हमेशा ये हो जाता है कि साहब ऐसा एक इम्प्रेशन है, ऐसी एक समझ बन गई है समाज में कि सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू। तो क्या ये सेम है या अलग अलग है सर? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्या है?
0: समीर जी, आपने एकदम सही कहा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें अंतर क्या है। सनातन धर्म मूल जीवन दर्शन है, जहां तक सनातन की बात करें ये तो मूल जीवन दर्शन है, जबकि हिंदू शब्द भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में बाद में प्रचलित हुआ है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चीज ये एक ही है, अलग नहीं है।
1: ओके, क्योंकि टाइम एंड अगेन सनातन धर्म को किसी और भाषा में या किसी और रिलीजन में या किसी और सामुदायिक ग्रुप में कभी डिस्कस होते हुए नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब सनातन धर्म की बात करते हुए सिर्फ हिंदू ही पाए गए, तो उसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है सनातन धर्म हिंदू है, या आज हम हिंदू लोग सनातन धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दरअसल सनातन धर्म की परिभाषा के लिए चक्कर में हमारी जो भाषा होती है वो भी इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कि लगता है ये तो हिंदू धर्म है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा।
0: नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये एक, जो कि पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये एक अटल सत्य है पर आधारित है, और ये सभी पे लागू है, ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए ये है। और इसको अगर देखिए, मैं एक और चीज मानता हूँ।

0: सा हमें इन तीनों को भी जरा एक डेफिनेशन या परिभाषित कर दीजिए, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मान लीजिए आपकी बात सुनकर मैं कहूं कि चलिए मैं भक्ति मार्ग अपनाता हूं, तो मैं क्या करूं? बात सनातन दर्शन की हो रही है सर। सनातन दर्शन के अंदर, उसके अंडर में कर्म को मैं कैसे भक्ति भक्ति मार्ग को मैं कैसे अपनाऊं, क्या करूं?
1: देखिए, भक्ति मार्ग का मतलब यह है कि हम परमपिता परमेश्वर, अब इसमें कोई एक परमेश्वर नहीं है, जो जिसको भी भगवान मानते हैं वो सभी एक हैं, तो उनको उनके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाएं। जैसे कि मीरा का एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग के अंदर, तो एक समर्पण का मार्ग होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, उनको एक सत्य मानना चाहिए कि हाँ भाई भगवान है, ये भक्ति मार्ग के अंदर उनके अंदर आस्था रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में विवेक और आत्मबोध का मार्ग है, इसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग है, शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो हरदम अमर है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा, तो ये ज्ञान योग है। और कर्म में निस्वार्थ कर्म का मार्ग, अब कर्म देखिए चक्कर क्या है कि कई तरह के कर्म है, अब कौन सा कर्म सही है कौन सा कर्म सही नहीं है ये मालूम होना बहुत जरूरी है, और कर्म करने के तरीके भी पता होना चाहिए कि कर्म अगर हम करें तो कैसे करें, और ये तरीका भी सनातन में बहुत ही ढंग से समझाया गया है कि निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल भगवान को अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे और हमारा जो है फिर जो मेन मोक्ष का जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंसान का, मानव योनि में उसको जन्म मिला है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि अंत में जाकर के वो भगवान से ही मिल जाए, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो इन तीनों मार्गों से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से उसको मिल सकता है, और अपनी नेचर के हिसाब से जो भी मार्ग जिसको सही लगे उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है।
0: जी तो दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बात को समझना कि सनातन दर्शन क्या कहता है। यहाँ पर भारद्वाज साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक प्यारे से भजन के लिए, और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास।
1: जी जी जी

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आपने जो पीछे बात कही भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान, हां जी सर, तो इनको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक्स्ट्रापोलेट करके इनको पूरे संसार पे फैला दूं, क्योंकि हम लोगों की यही बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म कुड बी यूज्ड बाय एनी रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट सब लोगों में शांति आ जाए। तो समझ लें, आपने कहा इस बात को कि सब लोग समझ लें, रशिया भी समझ ले, अमेरिका भी समझ ले, ईरान भी समझ ले, इराक भी समझ ले, पाकिस्तान भी समझ ले और वियतनाम भी समझ लें, सनातन को सब समझ लें तो सब शांत हो जाएंगे। तो वही मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा जो था सर भक्ति योग, इसको इन सारे विश्व में समझाने के लिए क्या करना चाहिए सर, कैसे इनको बताएं कि साहब ये तीन चीजें हैं, इनको कर लो, हाउ डू वी, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये अभी यहां बस भारतवर्ष के किसी कोने से ये निकला है सनातन धर्म, जिसको हम समझाने चले हैं कि हम पूरे विश्व को बताएं तो विश्व शांत हो जाए। सो चलिए मान लिया प्रिंसिपली, बट मेथड क्या हो, क्या करें हम, इराक को कैसे बताएं कि साहब ये सनातन धर्म इस्तेमाल करो।
1: जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम जो आज मैं देख रहा हूँ आपका टीवी भी कर रहा है
0: जी,
1: आज आपने इतने इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के आज आप ये एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी इसको नाम दे आप ये प्रोग्राम आपने बनाया और इस प्रोग्राम को हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इसी तरह से इसका जो प्रचार प्रसार है इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखे जाएं, और जैसे सरल भाषा में ये प्रोग्राम अभी आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने चाहिए और जिससे कि वो इस मुद्दे को समझ सके। देखिए सनातन धर्म एक बात कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, कि सबके अंदर भगवान है और शरीर एक वस्तु की तरह है और आत्मा जो है वो नश्वर है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, अनंत है और वो अमर है। तो अगर ये समझ में आ जाए कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर सब झगड़े दूर हो जाएंगे, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सनातन को समझेंगे तो ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी और जब हमें लगेगा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है तो उस केस में कहीं कभी भी कोई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद हमारे नहीं होंगे अगर हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में लेख होने चाहिए, मैंने काफी लेख लिखे हैं और कई न्यूज़पेपर के थ्रू, कई सोशल मीडिया के थ्रू इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह का ये पॉडकास्ट आप बना रहे हैं और इसको काफी लोगों को आप सुनवाएंगे, तो यही एक तरीका है जिससे कि ये चीज आगे आसानी से बढ़ेगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेनी चाहिए।
0: हाँ, मेरे दिमाग में यही चीज आ ही रही थी भारद्वाज साहब, क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, उसकी बारे में बातचीत हो रही है, हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या तो इस्तेमाल कर रहा है या डर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रस्पेक्टिव में, उसके संदर्भ में और जो आज की टेक्नोलॉजी है, वहां पर सनातन दर्शन के मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या रेलिवेंस है, सनातन धर्म एआई के साथ कैसे मिक्सिंग करेगा।
1: देखिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है समीर जी, आप भलीभांति जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी शक्ति देती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सही उपयोग विवेक, नैतिकता और करुणा से ही संभव है, और यही सनातन कहता है कि आप जो है सही उपयोग करें विवेक से, नैतिकता से और करुणा से। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा फायदेमंद टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी विनाशकारी भी हो सकती है अगर इसका मिसयूज कर दिया गया। और सनातन धर्म कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज के लिए को रिकमेंड नहीं करता, सनातन धर्म हरदम कहता है जो सत्य है वो करो। और सत्य क्या है, देखिए अब एक बार बताता हूँ, वायरलेस जैसे बना तो पुलिस के पास आने के पहले वायरलेस जब बना था वो पहले डाकुओं के हाथ में पहुंच गया, तो वो उन्होंने यूज किया सबसे पहले वायरलेस को कि बता, वो लोग ये बात करते थे आपस में कि भाई पुलिस आ रही है हमारे पीछे अब भागो। तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बनी है वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, शांति के लिए होनी चाहिए, अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है या उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं। परमाणु है, अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशंस में बिजली भी बना रही है, बिगर बिजली कुछ नहीं हो सकता, और इससे एटम बम भी बन रहे हैं। तो सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज किया जाए, कभी भी टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इस दर्शन में जगह जगह लिखा हुआ है। और पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार बताया गया है, ये इस धर्म की खासियत है। इसीलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस दर्शन को, सनातन दर्शन को सभी देश अपनाएंगे, जैसा आपने भी अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा है, तो एकदम सब जगह शांति फैल जाएगी और जीवन जो है वो सुखी और सफल होगा सभी लोगों का।
0: जी बहुत खूब। होता क्या है भारद्वाज साहब, पूरा संसार हम मनुष्यों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे तो साधु नहीं होते, कुछ तो बदमाश भी होते हैं। और जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से ये बुरे लोग और अच्छे लोग बने हुए हैं। लाखों करोड़ों साल गुजर चुके, इंसान ने बहुत कोशिश कर ली कि बुरे लोगों को सीधा बना दिया जाए, लेकिन हुआ कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, जब दिन होगा तो रात भी होगी, और अगर रात खत्म कर दी जाए तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब जहाँ पर इस सनातन दर्शन की हम बात कर रहे हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाए, तो ये एक तरीके से एक मुश्त धर्म हो जाएगा पूरे संसार का। ना कोई क्रिश्चियनिटी बचेगी, ना कोई हिंदुइज्म बचेगा, ना कोई बुद्धिज्म बचेगा, ना कोई इस्लाम बचेगा, सिर्फ एक सनातन दर्शन, सनातन धर्म होगा। क्या यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं सर, ऐसा ही चाहते हैं हम?
1: हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं जो सनातन में हमने शुरू में ही एक बात कही कि सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो सत्य है, और जिसमें करुणा भी है, आत्मबोध भी है, आत्मज्ञान भी है, वो सनातन है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म को मानते चलाएं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। ये विवेकानंद जी ने भी कहा था, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक खास बात कही थी कि हम आपके सभी के धर्मों का हम पूरी तरह से, हम उनके मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके विरोध में हैं, आप अपने धर्म को अपनाइए, लेकिन अगर आपको जो हम सनातन दर्शन की बात कर रहे हैं इसकी अगर अच्छाइयां बता रहे हैं तो जो अच्छाइयां इसमें आपको नजर आए वो अच्छाइयां जरूर अपनाओ। अब मैं बिगर नाम दिए हुए आपको एक बात कहना चाहूंगा समीर जी,
0: जी, जी।
1: कि सनातन में इसके कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नफरत की भावना नहीं लिखी हुई है कि हमें किसी से नफरत करनी है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आत्मा सभी के अंदर है। यूरोपियन कंट्रीज में सालों तक ये नहीं माना जाता था पुराने टाइम में कि महिला के अंदर आत्मा है। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, वो आज ये शो करते हैं कि वो लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ ये तक नहीं माना जाता था कि महिला में आत्मा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब में आत्मा है। और हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है जीव में निर्जीव में सबके अंदर भगवान को मानना है और भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना है। अगर हम सब में भगवान मानेंगे तो, और जब भी कोई हमसे मिलने आएगा, जब भी कोई काम होगा, अगर हम मानते हैं भगवान है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। सनातन धर्म इतनी ऊंची सोच के साथ ये दर्शन काम कर रहा है, तो इसको अपनाना तो सबके लिए जरूरी। बाकी वो जिसकी पूजा, जिसको वो प्रेम करना चाहे जिसकी पूजा करना चाहे वो करे, उनके लिए गॉड मे बी कुछ भी, कोई भी गॉड हो सकता है, उसके लिए कहीं मना नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन सनातन दर्शन में। लेकिन ये कहता है सत्य को, और सत्य तो हर जगह एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, जापान में कुछ और है और भारत में कुछ और है, सत्य तो सत्य है।
0: बहुत खूब, विचार करने का विषय है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए जो भरद्वाज साहब ने अभी हमें बताया। लीजिए इस भजन को सुनिए और हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए हम आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आते हैं कि जब से सनातन दर्शन को, सनातन धर्म को आपने समझा, अपनाया और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, बदलाव आए? क्या आपको लगा कि अरे यार, ये तो पहले मैं परेशान रहता था, अभी तो बड़ा अच्छा हो गया? क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में?
1: देखिए, पहले जब मैंने सनातन को ढंग से नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, जीवन आप देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आना स्वाभाविक है, आते ही है। जैसे कि दिन और रात, ये अवश्यम भावी है, दिन है तो फिर रात होगी, रात है फिर दिन होगा, ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख के सब आते। पहले कोई छोटी सी भी परेशानी आई तो मैं विचलित हो जाता था
0: जी,
1: लेकिन जब से मैंने सनातन को समझा और चीजों को देखी, अगर सत्य आपके सामने है, अगर मान लीजिए रात हुई और जिस व्यक्ति को कोई, कई ऐसे भी जीव है जिनको ये पता ही, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई रात है तो अब दिन होगा, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे पता है ये थोड़े समय के लिए है, फिर दिन आ जाएगा और दिन भी नहीं रहेगा, फिर रात हो जाएगी, तो ये जो है चक्र चलता रहेगा।

0: का, ऐसे ही सुख और दुख है। तो इसके बारे में सनातन धर्म कहता है कि ये चीजें स्थाई नहीं है। अगर सुख है तो वो भी स्थाई नहीं है, और दुख है तो वो भी स्थाई नहीं है। तो जब स्थाई नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको अपने आप को ढाल करके, उस परिस्थिति के अंदर हमें संतुलन बना करके, संयम बना करके रहना है, ना कि हम उस ऐसे ही कभी दुख आया, थोड़े से दुख आते ही विचलित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सनातन को समझा, मेरे जीवन में संतुलन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सेवा की भावना। सनातन ये कहता है कि आप दूसरों को जितना हो सके उनको सुख दीजिए, आपको भगवान अपने आप सुख देगा। चार वेद, किसी संत ने कहा है, चार वेद षट शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है इंपॉर्टेंट शास्त्रों में और चार वेदों में, सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर दूसरे को सुख देंगे आपको स्वयं को सुख मिलेगा, और आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो गड्ढे आप ही को दुख देंगे, आप ही के लिए वो गहरे गड्ढे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सनातन को समझने के बाद मुझे जो है जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा की भावना बहुत मेरे अंदर मजबूत हुई है
1: जी। बहुत खूब। तो ये बिल्कुल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल अलग चीज हो गई कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली सनातन दर्शन के बारे में, हैं जी, लोगों की हेल्प करो, सुख दो, लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी भारद्वाज साहब ने बताई कि जब उन्होंने इन चीजों को अपनाया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, चाहे हम इनको कितनी भी थियोरेटिकल बातें माने, लेकिन जब भी किसी दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते ही हैं। वही चीज भरद्वाज साहब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए। चलिए यहां पर रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक भजन का एक मुखड़ा सुनकर वापस आते हैं भरद्वाज साहब से और विचार विमर्श करने के लिए।

0: बहुत सुंदर। तो ठीक है, अब और प्रैक्टिकल बात करते हैं भारद्वाज साहब। मान लीजिए आपके इस बात, इन सारी बातों को, इन सारी डेफिनेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को सुनने के बाद कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि ठीक है ये तो बढ़िया बात लग रही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, उसे लगे चलिए सनातन धर्म के बारे में पढ़ता हूं और सनातन धर्म को और समझता हूं और सनातन धर्म अपनाता हूं, तो उसको पहला कदम क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, सनातन धर्म इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देता है कि पहले स्वयं को जानने की जिज्ञासा। अब स्वयं को जानने की जिज्ञासा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्वयं हम, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, और दूसरे क्या हैं, उनको समझे कि भाई वो भी जो है आत्मा है और परमात्मा के थ्रू हम सबके अंदर परमात्मा भी है, हम उसी के अंश हैं। तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो और प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। हम ये चिंतन करें, लोग क्या हो गया, एक बहुत एक अंधी दौड़ के अंदर दौड़ है, उनको समय ही नहीं है सोचने का। किसी कई जगह मैंने ये भी देखा, उनसे पूछा जाए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता लगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। पता लगा कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक नैतिक अनैतिक टेंशन में रह करके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनैतिक कार्य भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो है एकदम बीमारियों ने जकड़ लिया। अब पैसा, अगर आप भारतवर्ष की बात करें, आज अगर कोई भूखा है उसको खाना खाना है तो खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत, आज भी अपन भले ही महंगाई का युग बोले जो भी बोले, आज भी उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गलती से वो स्ट्रेस में काम करके, अनैतिक काम करके कहीं हॉस्पिटलाइज हो गया, तो समीर जी मैंने खुद ने देखा है कई अपने दोस्तों के केस में कि एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए के, आजकल मेडिकल खर्चा इतना हो रहा है कि जो लाखों रुपए का एक इंजेक्शन भी आ रहा है, इस तरह की भी चीजें हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मचिंतन करें, स्वयं को जाने और प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें और अंधी दौड़ में नहीं दौड़े, अदरवाइज हमें दिक्कत, हमारी दिक्कत है बढ़ जाएगी।
0: जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है सर। अब होता क्या है भारद्वाज साहब कि आप और मैं जिस उम्र में आ गए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले ज्यादातर लोग भी इसी उम्र के हैं, जिनको अब उन्होंने जिंदगी बिता ली, कमा लिया, खा लिया, बीमार पड़ गए, खुशी हो गई, बच्चे बच्चियों की शादियां कर दी, सेटल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो अब हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन कोई युवा, समझिए 25 साल का, जो अभी ग्रेजुएट होकर निकला है, हैं जी, किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंसेस में बड़ा विद्वान होकर निकला है, अब उसे तो गाड़ियां दिख रही हैं, उसे तो मॉल्स दिख रहे हैं, उसे तो कपड़े दिख रहे हैं, घड़ियां दिख रही हैं, लड़कियां दिख रही हैं, उसे तो मजे करने हैं। अब उसको हम कैसे समझाएं कि बेटा सनातन धर्म पकड़ लो, है ना, विचार करो, बैठो। वो कहेगा अरे साहब बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो पार्टी में जाना है। तो अगर हम उसे और समझाएं तो वो ये कहेगा कि सर ऐसा है, आपने तो अपनी जिंदगी मजे ले लिए, अब जब मेरा वक्त आया तो आप मुझे मजे लेने के बजाय कह रहे हो बैठो, मेडिटेट करो, समझो, मत कमाओ, ज्यादा मत कमाओ। तो 5 मिनट में अगर किसी युवा को सनातन धर्म समझाएं तो कैसे समझाएं सर?
1: जी जी नहीं, देखिए आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है और युवा पीढ़ी भी इसको देख रही होगी या जो मदर फादर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी उनको बता सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में, धार्मिक में मतलब फिर वही बात कहूंगा कि धर्म में कोई ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, मैं सनातन दर्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर या मेरे भी जो पूर्वज है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, तो जब मैंने जन्म लिया तो उन्होंने हरदम कहा कि सत्य का साथ मत छोड़ना, सनातन दर्शन को हरदम ध्यान में रखना। आज अगर मैं चार कंपनियों का चेयरमैन बना, देखिए मैं सेल्फ ड्रम बीट नहीं कर रहा मेरे, तो मैं अगर गौर से देखूं तो बहुत बड़ा एक हाथ है सनातन दर्शन का, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में अगर मैं ये मानूं कि मैं सफल रहा या मैंने अपने जो है सफल और सुखी हूं मैं या मैं रहा, तो ये आज ये नहीं कि इस एज में मैंने सनातन को पढ़ा है, बचपन से ही मैं देखता आ रहा था मेरे घर में। और मैंने ये कहा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, भाई ईमानदारी बरतनी। आज चेयरमैन के लेवल पे लोग बहुत ज्यादा पैसा भी बनाते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे वो सीवीसी हो या वो सीबीआई हो, उसमें क्या उनकी हालत होती है। तो घर के माहौल में, सनातन दर्शन के माहौल में मैंने देखा कि सत्य को अपनाना है, ईमानदारी बरतनी है, मेहनत करनी है, इन चीजों को ध्यान में रख गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो उसी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला और उसी वजह से सुखी रहा और सफल रहा, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनसे बचपन में भी या युवा में भी हमने कोई मौज मस्ती इस तरह की हो जो कि अनैतिक है या जो कि वो अलाउड नहीं थी। सनातन ये कहता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां भगवान ने आपको दी हुई है आपके शरीर में है, उनका एक लिमिटेड उन्होंने नियम बना रखा है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, ये आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा लड़कियों पीछे भाग रहे आज का युवा, देखिए भगवान ने भी कहा शादी का सिस्टम बनाया है, आप एक लिमिटेड वे में एक संतान उत्पत्ति के लिए या लिमिटेड वे के अंदर आप उस चीज को उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अनैतिक तरह से उस काम को कर रहे हैं उनका जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा, उनको परेशानियां होंगी। इंद्रिय अगर मान लीजिए हमें रस इंद्रिय भी बनाइए, खाने के लिए भी हमारी है, तो वो अगर जो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, संयम नहीं बरतते, तो आप देखें कितनी बड़ी परेशानी में रहते हैं, डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के बाद कई लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता और वो फिर भी जिन चीजों को डॉक्टर मना करते हैं उनको लगातार खाते रहते हैं। तो मना नहीं है, अपने एक लिमिटेड वे में जितना अलाउड है उस तरह के कर्म करें तो लाइफ में उनको सफलता भी मिलेगी और सुखी भी रह पाएंगे।
0: जी मैं समझ सकता हूँ सर। तो दोस्तों जो भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है हम सबका फर्ज बन जाता है, आफ्टर ऑल हम अपने बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम्स तो देते ही हैं ना बचपन से। तो जैसा भारद्वाज साहब समझा रहे हैं, सनातन दर्शन की भी शिक्षा या कह लीजिए एक परकोलेट डाउन होनी चाहिए, और कुछ तो होंगे बच्चे जो इस बात को समझेंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाके ठीक करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों हम आज भारद्वाज साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि सनातन धर्म किसी एक धर्म का नहीं है, सनातन दर्शन हिंदू नहीं है, सनातन दर्शन पूरे विश्व में सब लोगों के लिए मौजूद है, उसको अपनाकर सभी सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, बहुत सारी चीज़ों के से पर्दा हटा, हमें कन्फ्यूजन्स दूर हुए, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और हमें कुछ समझाया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने एक बहुत बड़े दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मौका दिया, आपको धन्यवाद एवं साधुवाद।
0: थैंक यू सर।
2: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की लेकर चलेगी हमें मुंबई की गलियों में। जी हाँ, हमारा बम्बई, जहाँ भीड़ है, धूल है, जोश है, और एक हांडी हवा में लटक रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस गाने के बिना आज दही हांडी का वो माहौल बिल्कुल अधूरा लगता है। वो गाना फिल्म की कहानी में पहले था ही नहीं,

जी हाँ, ना स्क्रिप्ट में था ना पहले से प्लान्ड था। बस एक दिन एक गाड़ी में जाते हुए एक आवाज सुनी और बॉलीवुड को मिल गया अपना एक अमर दही हांडी गीत। साल था 1963, फिल्म थी ब्लफ मास्टर और फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर जी। जी हाँ, अब शमी कपूर नाम ही काफी है। एनर्जी फुल ऑन, जोश फुल ऑन, और अगर किसी चीज की जिद कर लें तो फिर बस करके ही रहेंगे। एक दिन शमी कपूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई और म्यूजिक कंपोजर आनंद जी की गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके कानों में पड़ गई दही हांडी की असली आवाज। ढोल ताशे नगाड़े, लोगों की चीख और पुकार, गोविंदा गोविंदा। और शमी जी ने गाड़ी तुरंत रुकवाई। उन्होंने कहा, मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही गाना चाहिए अपनी फिल्म में। सोचिए, अब हम किसी गाने को सुनकर कहते हैं वाह क्या कॉम्पोजिशन है, लेकिन यहाँ तो गाना बना ही सड़क पर चलती हुई जिंदगी को देखकर। अब गाना तो बन गया, राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे वो अल्फाज, गोविंदा आला रे आला, और मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने उसमें जान फूंक दी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई। गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, शम्मी कपूर जी चाहते थे रियल भीड़ के बीच रियल दही हांडी के माहौल में हांडी को तोड़ना। और दोस्तों, ये था 1963। आज की तरह कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं थे, VFX नहीं थे, कंप्यूटर से हवा में लटकती बॉडीज नहीं थी, ग्रीन स्क्रीन नहीं थी। आज होता तो प्रोड्यूसर झट से बोलता, सर पहले इंश्योरेंस करा लीजिए। लेकिन उस वक्त शमी कपूर की जिद के सामने डायरेक्टर मनमोहन देसाई परेशान हो गए। सोचिए उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। हीरो को कुछ हो गया तो, लेकिन शमी जी तो शमी जी थे। गाना होगा और ऐसे ही होगा। शूटिंग गिरगांव की सड़कों पर होनी थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि शमी कपूर जी आज यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ी, सड़कें भर गईं, ट्रैफिक रुक गया, हर तरफ लोग ही लोग। अब आप मुझे बताइए, आज अगर किसी फिल्म स्टार की शूटिंग देखने के लिए ट्रैफिक के 6 घंटे रुक जाएं, तो सोशल मीडिया पर कितने मीम्स बनेंगे और क्या बवाल होगा। लेकिन उस वक्त लोग बस देखना चाहते थे, बस एक झलक शमी कपूर जी के। और इसी भीड़ को संभालने में बाल ठाकरे जी ने मदद भी की। ट्रैफिक को मैनेज किया गया, रास्ते बनाए गए, डाइवर्जन्स किए गए, और फिर कैमरा रेडी, म्यूजिक रेडी, शम्मी कपूर जी भी रेडी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस गाने के लिए कोई कोरियोग्राफर नहीं था। अब जरा इमेजिन कीजिए, आज फिल्म में डांस सीक्वेंस होता है तो डांसर्स रिहर्सल्स करते हैं, स्टेप्स डिसाइड होते हैं, कैमरा एंगल्स डिसाइड होते हैं, काउंट होता है 5 6 7 8। लेकिन गोविंदा आला रे आला में रियल क्राउड था, रियल लोग थे, रियल सेलिब्रेशन था। म्यूजिक बजता था और लोग अपने आप झूम उठते थे, कैमरा बस उन्हें कैप्चर करता था। यानी स्क्रीन पर जो एनर्जी आप देखते हैं इस गाने में, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो मुंबई की असली फेस्टिव एनर्जी थी। और शायद इसीलिए गाना इतना ज्यादा जिंदा लगता है, क्योंकि उसमें कोरियोग्राफी कम, जिंदगी ज्यादा है। अब जरा मोहम्मद रफी साहब की आवाज याद कीजिए, गोविंदा आला रे आला। जी,
आवाज में तो शरारत थी, वो मस्ती थी, वो खुशी थी, वो चैलेंज था। जैसे रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे, खुद दही हांडी में खड़े होकर आवाज लगा रहे हों। और शमी कपूर जी का अंदाज, बस वो तो पूछे मत। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो पागलपन था जो कहता था चीख चीख के, दही हांडी ऊपर है तो हम भी ऊपर ही जाएंगे। आपने कभी सोचा है कुछ गाने इतने सालों बाद भी इतने जिंदा क्यों रहते हैं? इसीलिए नहीं कि उनकी धुन अच्छी होती है, मुझे लगता है कुछ गाने हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। आपने पहली बार वो गाना कब सुना याद भी नहीं रहता, लेकिन जैसे ही ढोल बजेगा गोविंदा आला रे, आपके पैर रिदम पकड़ लेंगे अपने आप, चाहे आप डांसर हैं या टू लेफ्ट फीट। बचपन की दही हांडी याद आ जाएगी, मोहल्ले की भीड़ याद आ जाएगी, पानी की पिचकारी, ढोल, मटकी और वो एक आवाज, गोविंदा। यही तो गाने की असली ताकत होती है दोस्तों, वो सिर्फ सुना नहीं जाता, वो जिया जाता है। सोचिए, एक गाना जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, एक गाड़ी में अचानक आई आवाज से शुरू होता है, एक एक्टर की जिद ने उसे जन्म दिया, एक लिरिसिस्ट ने उसे लव्स दिए और रफी साहब ने उसे आवाज दी, मुंबई की सड़कों ने उसे अपनी एनर्जी दी और एक रियल क्राउड ने उसे वो रूह दी जो आज भी जिंदा है। इसीलिए शायद गोविंदा आला रे सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं रहा, ये दही हांडी के माहौल का हिस्सा बन गया, एक तरह का फेस्टिवल एंथम बन गया। तो अगली बार जब आप दही हांडी में ये गाना बजता सुने, एक पल के लिए सोचिएगा जरूर 1963 की मुंबई यानी बंबई की वो सड़क, वो भीड़, वो ढोल, वो कैमरा और बीच में शम्मी कपूर जी। और याद रखिए, कभी कभी बॉलीवुड की सबसे यादगार चीजें प्लान करके नहीं बनती, कभी एक अचानक सुनी हुई आवाज, कभी किसी की पागल सी जिद और कभी बस सड़क पर चलती हुई जिंदगी, ये सब मिलकर बना देती है एक ऐसा गीत जो 60 साल बाद भी लोगों को नचा दे। तो बताइए, आपके लिए दही हांडी का असली एंथम क्या है? और हाँ, अगर गोविंदा आला रे आला बजते ही आपके पैर भी थिरकने लगते हैं तो समझ लीजिए गोविंदा सच में आ गए। मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। मिलते हैं फिर किसी एक और कहानी के साथ, तब तक जोश बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए और जब ढोल बजे गोविंदा आला रे आला। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक घर में डाकू घुसी आए। उन्होंने घर वाले को बोला, देखो हम डाकू हैं, लूटने आए हैं, लेकिन बंदूक भूल आए हैं। तो घर वाले ने कहा, अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आपको जो लूटना लाटना है वो लूट लीजिए, लेकिन देखिए ईमानदारी से अगली बार बंदूक लाके दिखा दीजिएगा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा। आज की बात शुरू करेंगे हम एक अजीब सी जापानीज कहावत से, अ ड्रैगन्स हेड बट अ स्नेक्स टेल, यानी शुरुआत ड्रैगन जैसी जबरदस्त और अंत सांप की पूंछ जैसा फीका। थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन जरा अपनी जिंदगी देखिए, कितनी चीजें हैं जो हमने बड़े जोश से शुरू की हूं। कल से जिम, कल से डाइट, रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, इस बार बुक पूरी पढ़ेंगे, अब रोज कुछ नया सीखेंगे। पहले 3 दिन वाह क्या डिसिप्लिन है, चौथे दिन अलार्म बजता रहता है, बजता रहता है और बजता ही रहता है, और हम अलार्म को देखते हैं, अलार्म हमें देखता है और दोनों डिसाइड करते हैं 5 स्नूज़ फेस्ट और फिर कल ही मिलते हैं ना, आज क्या जल्दी है। यही है आज की कहानी, एक जापानीज प्रोवर्ब जो बहुत सिंपल तरीके से एक बहुत गहरी बात करता है। अच्छी शुरुआत जरूरी है, लेकिन असली कमाल है अंत तक बने रहना। इस कहावत में ड्रैगन का हेड एक ऐसी शुरुआत को बताता है जो बहुत इंप्रेसिव हो, कोई बड़ा आइडिया, बड़ा जोश, बड़ी अनाउंसमेंट, बड़े सपने। और फिर स्नेक्स टेल, मतलब शुरुआत के मुकाबले एंड में बहुत ही कमजोर हो जाना। जैसे कोई बोले मैं 1 महीने में पूरी लाइफ बदल दूंगा और 1 हफ्ते बाद लाइफ वही, बस व्हाट्सएप स्टेटस बदला हुआ। हमारी प्रॉब्लम अक्सर शुरुआत नहीं होती, हम शुरू करने में बहुत अच्छे हैं, नई नोटबुक, नया पेन, नया टाइम टेबल, नया जिम मेंबरशिप, नई डायरी, और डायरी के पहले पेज पर लिखा होता है न्यू बिगनिंग्स वेलकमिंग, उसके बाद 40 पेजेस खाली। और हम रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, नया काम इंटरेस्टिंग लगता है, नया बिजनेस आइडिया एक्साइटिंग लगता है, नई एक्सरसाइज रूटीन हमें मोटिवेट करती है, लेकिन कुछ दिन बाद रूटीन आ जाता है, थकान आ जाती है, दिक्कतें आती हैं, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता और हम सोचते हैं शायद मेरे लिए ये है ही नहीं। यहीं पर कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा शुरू होती है। जापानीज प्रोवर्ब का कहना भी यही है कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कमिटमेंट और लगातार मेहनत ही किसी काम को आगे ले जाती है। आज हम सिर्फ काम शुरू नहीं करते, उसका अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, गाइस बिग थिंग्स कमिंग, न्यू प्रोजेक्ट लैंडिंग, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग सून। और प्रोजेक्ट अभी लैपटॉप में फोल्डर में बना पड़ा है, और फोल्डर का नाम क्या है, final_final_new_last_version। आई एम श्योर इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे। हाइप बुरी चीज नहीं है, अपने काम के बारे में बताना जरूरी है, लेकिन कहावत हमें याद दिलाती है कि रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट का ढोल मत बजाइए, क्योंकि जब शुरुआत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ होती है तो लोगों की उम्मीद भी उतनी बढ़ जाती है, और फिर अगर काम बीच में धीमा पड़ गया तो ड्रैगन का हेड और स्नेक की टेल बन सकती है। चलिए आज रेडियो पर एक ऑनेस्ट सा टेस्ट करते हैं, मैं कुछ बोलूंगी, आप बस मन में ही जवाब दीजिएगा। जिम कितनी बार मेंबरशिप ली, बुक पढ़ी, कितनी बुक्स शुरू करी बट खत्म नहीं करी, ऑनलाइन कोर्स, कितने कोर्सेज आधे पढ़े हुए हैं, सेविंग्स कितने महीने डिसिप्लिन रहा सेविंग्स का, हेल्दी ईटिंग
कितने दिन तक सैलेड ने समोसे को हराया। और सबसे बड़ा सवाल, कोई ऐसा सपना है जो बहुत इंथुजियाज्म से शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? अगर जवाब हाँ है तो कोई बात नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों, क्योंकि स्नेक की टेल का मतलब ये नहीं है कि आपको वही एंड एक्सेप्ट करना है। आपकी कहानी दोबारा शुरू हो सकती है, आप ही कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर दिन बिल्कुल पिच परफेक्ट रहेंगे। कभी एक दिन मिस होगा, कभी दो दिन, कभी प्लान फेल होगा, कभी मन भी नहीं करेगा। लेकिन डिफरेंस यहां है कि आप वापस आते हैं या नहीं। एक दिन एक्सरसाइज मिस हुई, अगले दिन कीजिए। एक दिन राइटिंग नहीं हो पाई, अगले दिन लिखिए। बिजनेस में सेटबैक आया, प्लान देखिए, सुधारिए और फिर से चलिए। क्योंकि सक्सेस अक्सर एक बड़े हीरोइक मोमेंट में नहीं बनती, छोटे छोटे कामों को बार बार करने से बनती है। और दोस्तों, ये प्रोवर्ब सिर्फ प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के लिए नहीं है, ये रिश्तों के लिए भी है। पहली मुलाकात में सब बहुत रोजी, बहुत अच्छा होता है। बर्थडे याद, टाइम पर मैसेज करना, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया बाबू ने? फिर कुछ साल बाद, हाँ हाँ ठीक है। और फिर और कुछ साल बाद, सीन सीन सीन करके कोई रिप्लाई भी नहीं। रिश्ते भी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। एक बार प्यार करना आसान है, रोज प्यार से और कंसर्न से पेश आना असली काम है। करियर में भी, हेल्थ में भी, पढ़ाई में भी, किसी कला को सीखने में भी, खुद को बदलने में भी, शुरुआत आपको अटेंशन दे सकती है लेकिन कंटिन्यूटी आपको रिजल्ट देती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, खुद से सिर्फ ये मत पूछिए कि मैं कितने जोश से शुरू कर रहा हूं, ये भी पूछिए कि मैं मुश्किल आने के बाद कितने दिन तक बना रहूंगा। दोस्तों, ड्रैगन का हेड होना अच्छी बात है। बड़ी शुरुआत कीजिए, सपने बड़े रखिए, जोश रखिए, अनाउंसमेंट भी कर लीजिए अगर मन करे तो। लेकिन टेल को भी ड्रैगन के लेवल का बनाने की कोशिश तो कीजिए। वो कहते हैं ना, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। क्योंकि दुनिया आपकी शुरुआत को कुछ दिन याद रखेगी लेकिन आपका अंत ही तय करेगा कि कहानी याद रही या भूल गई। जापनीज कहावत का सार बहुत सिंपल है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टेडी, फिनिश वेल। और मेरी तरफ से एक लाइन और, जोश से शुरू करना टैलेंट है लेकिन जोश खत्म होने के बाद भी चलते रहना असली कमाल है। मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, सिर्फ एस एन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। आज का सवाल आपके लिए, आपकी लाइफ में वो कौन सा काम है जो ड्रैगन के हेड के साथ तो शुरू हुआ था लेकिन स्नेक की टेल बन गया? और क्या पता आज ही उसकी टेल को फिर से ड्रैगन बना दिया जाए। मिलते हैं फिर, तब तक शुरुआत खूबसूरत रखिए, सफर लगातार रखिए और एंडिंग जबरदस्त रखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक दर्जी बस में सफर करने के लिए चढ़ा, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और सुना और फिर बोल लगा, ऐसा करो तुम हाथ काटो, गला मैं आके काटूंगा। पूरी बस साफ हो गई।
2: वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।

बन जाएगी। ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट रोकने क्या छूट।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर आपकी आरजे तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की में एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शुरू होती है एक चांद से लेकिन खत्म होती है पेड़ के नीचे। जी हाँ, सोचिए आपको अगर नासा का स्पेसक्राफ्ट मिल जाए और कोई कहे इसमें क्या ले जाना है, आप क्या कहेंगे और आप क्या ले जाएंगे? कैमरा, गोल्ड, कोई स्पेशल मशीन या फिर बीज? 1971 में नासा के अपोलो 14 मिशन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन बीजों की कहानी आज भी जिंदा है। साल था 1971, अपोलो 14 मिशन मून की तरफ जा रहा था। 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, एलन शेफर्ड और एडगर मिशेल मून के सरफेस पर गए, और तीसरे एस्ट्रोनॉट स्टुअर्ट रूसा मून के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट में रहे। रूसा पहले यूएस फॉरेस्ट सर्विस में स्मोक जंपर रह चुके थे, यानी जंगल की आग बुझाने वाले ट्रेन फायर फाइटर्स की तरह, और उनके साथ एक बहुत ही अजीब सा पैसेंजर था, ट्री सीड्स, जी हाँ बीज, लगभग 400 से 500 बीज, पाइन, साइकमोर, स्वीट गम, रेडवुड और डगलस जैसे पेड़ों के। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ एस्ट्रोनॉट, दूसरी तरफ मून, और एक छोटे से कंटेनर में पेड़ों का फ्यूचर। इन बीजों को मून पर उगाना नहीं था, ये बीज मून की मिट्टी में नहीं डाले गए, इन्हें स्पेसक्राफ्ट के साथ मून के ऑर्बिट तक ले जाया गया और वापस अर्थ पर ही लाया गया। मकसद था देखना कि स्पेस की जर्नी के बाद इन बीजों का क्या होता है, और कंपैरिजन के लिए कुछ वैसे ही बीज अर्थ पर ही रखे गए थे। यानी एक ग्रुप गया मून के चक्कर लगाकर आया, और दूसरा ग्रुप यहीं अर्थ पर रहा, और फिर दोनों को कंपेयर किया गया। कितना सिंपल सा आइडिया, लेकिन कितनी खूबसूरत कहानी बन गई इसके पीछे। अब कहानी में ये ट्विस्ट था कि जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर वापस आया, बीजों के कंटेनर को खोलने और साफ करने की प्रक्रिया में कंटेनर टूट गया, सारे बीज इधर उधर बिखर गए, कुछ वैक्यूम के कांटेक्ट में भी गए, और साइंटिस्ट्स को लगा शायद अब ये बीज काम के नहीं रहे। लेकिन प्रकृति ने कहा, एक मिनट, इतनी जल्दी हार मान ली? बीजों को जर्मिनेट करने की कोशिश हुई, और सरप्राइज, बीज उगने लगे। फॉरेस्ट सर्विस ने उन्हें ग्रो किया, और जो पेड़ उन बीजों से निकले उन्हें कहा गया मून ट्रीज। नासा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनमें से कई सीडलिंग्स बाद में अमेरिका और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए, खासकर 1976 के यूएस बाइसेंटिनियल के आसपास। अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मून ट्रीज एक्चुअली मून पर नहीं उगते। नाम मून ट्री है, लेकिन पेड़ तो अर्थ पर ही उगते हैं। बस उनकी कहानी में मून का एक सफर जुड़ा हुआ है, एक छोटा सा बीज जो अर्थ पर एक आम सा बीज था, स्पेस में गया, मून का चक्कर लगाया और वापस आकर एक पेड़ बन गया। दोस्तों, कभी कभी लगता है साइंस भी कहानियां लिखती है, बस अपने ही स्टाइल से। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है और सोचा हो इसकी कहानी क्या होगी? हम अक्सर पेड़ देखते हैं, छांव मिलती है रुक जाते हैं, फल मिलता है तो तोड़ लेते हैं, पत्ते गिरते हैं तो सफाई कर देते हैं, फूल दिखता है तो झट से तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई पेड़ आपको बताए मैं चांद के पास से होकर आया हूं, तो
आप शायद उसके नीचे थोड़ा और देर खड़े रहेंगे और यही तो मून ट्रीज की खूबसूरती है। वो सिर्फ पेड़ नहीं, वो एक दौर की याद है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की कहानी है और इंसान की उस आदत की निशानी है कि हम जहां जाते हैं वहां से कुछ सीख कर वापस आना चाहते हैं। सबसे खूबसूरत बात पता है, ये कहानी 1971 पर खत्म नहीं हुई। नासा ने बाद में मून ट्रीज की लोकेशंस को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन शुरू में पेड़ों की कोई पूरी सिस्टमैटिक लिस्ट नहीं बन पाई। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मून ट्रीज के बारे में जानकारी शेयर की और धीरे धीरे उनकी कहानियां दोबारा सामने आती गईं। यानी कुछ पेड़ हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिले, लोगों ने एक्चुअली उन्हें ढूंढा, पहचाना और याद रखा। कितनी अजीब बात है ना, इंसान मून पर गया लेकिन वापस आकर उसने पेड़ों में अपनी कहानी छोड़ दी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मून ट्री की कहानी पुरानी हो गई, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के साथ एक नई जनरेशन के ट्री सीड्स भी स्पेस में गए, यानी मून ट्रीज का दूसरा चैप्टर भी शुरू हो चुका है। पहले बीज अपोलो के साथ गए थे, अब नई पीढ़ी आर्टेमिस के साथ। सोचिए एक बीज की कहानी कितनी दूर तक जा सकती है। मुझे इस कहानी में सबसे खूबसूरत चीज साइंस से भी ज्यादा ये लगी कि इसका मैसेज क्या है। हम अक्सर सोचते हैं बड़ा काम मतलब बड़ी चीजें, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, मून लैंडिंग, लेकिन कभी कभी एक बहुत बड़ा सपना एक बहुत छोटे बीज में छुपा होता है। एक बीज को देखिए, ना उसमें आवाज है, ना शोर है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो बस चुपचाप मिट्टी में पड़ा है और फिर वही बीज एक दिन पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है आपके सामने, छांव देता है, हवा देता है, फल देता है, फूल देता है, सुंदरता देता है और अपने साथ एक कहानी लेकर खड़ा रहता है सालों तक। दोस्तों, अगली बार जब किसी पेड़ के नीचे खड़े हों, तो एक पल के लिए ऊपर देखिए। हो सकता है वो मून ट्री ना हो, लेकिन वो भी किसी कहानी का हिस्सा जरूर है। किसी ने बीज बोया होगा, किसी ने पानी दिया होगा, किसी ने उसे बचाया होगा और आज वो किसी और को छांव दे रहा है। अपोलो 14 के वो बीज हमें एक सिंपल सी बात याद दिलाते हैं, सफर चाहे कितना भी दूर हो, वापस आकर कुछ उगाना चाहिए। और शायद जिंदगी में भी हम सबको अपना एक छोटा सा मून ट्री जरूर लगाना चाहिए, ऐसा कुछ जो हमारे बाद भी, बहुत सालों बाद भी जिंदा रहे। मैं हूं आपकी तरानों की हम सफर आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की, ओनली ऑन एस एन रेडियो एंड रेडियो तांत्या भील 90.8 FM। अब मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको कभी किसी एक चीज को मून तक भेजने का मौका मिल जाए तो आप क्या भेजेंगे? एक फोटो, एक लेटर, कोई याद, कोई एक इंसान, या आप भी एक बीज भेजेंगे? मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, तब तक पेड़ लगाइए, कहानियां बचाइए और आसमान की तरफ देखना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, चाय की दुकानों पर आजकल चाय के कप इतने छोटे होने लगे हैं कि लगता है चाय नहीं पिला रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सिनेमा और मीडिया की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अक्सर हम रेडियो पर उनसे सिनेमा के बीते हुए सुनहरे दिनों की कहानियां सुनते हैं। कभी किसी भूले बिसरे कलाकार की यादें, तो कभी पर्दे के पीछे की अनकही दास्तानें। लेकिन आज सौभाग्य से वही आवाज, वही दृष्टि और वही संवेदना हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे आज के अतिथि हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुरक्षित बैंकिंग कैरियर को छोड़कर क्रिएटिविटी का जोखिम चुना, जो लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं, पटकथा और संवाद लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं, फिल्म इतिहासकार भी हैं, रेडियो और टेलीविजन के अनुभवी शोधकर्ता भी हैं, और आज की पीढ़ी के लिए एक बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर भी हैं। बीते हुए दिन के जरिए जिन्होंने सिनेमा की स्मृतियों को दस्तावेज की तरह सहेजा है और सैकड़ों कलाकारों की जिंदगी को उनकी अपनी जुबानी हम तक पहुंचाया है, आज हमें अत्यंत प्रसन्नता है और साथ में गर्व भी है कि शिशिर कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आलोक जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। आपने तो बेशुमार सवाल किए होंगे, मेरे ख्याल में सैकड़ों नहीं लाखों में किए होंगे तरह तरह की हस्तियों से, तो मैं तो इस आज जो हमारी बातचीत हो रही है इस अनुभव के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूं कि आज जरा रोल बदल गया है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप माइक के दूसरी तरफ हैं, तो ये कैसा लग रहा है शर्मा जी, थोड़ा ये बताइए हमें तो।
2: सर, एक शब्द में कहूं तो अटपटा। ये नकारात्मक अटपटा नहीं है, अटपटा से लगता है कि शायद मैं परेशान हूं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा बस, क्योंकि कभी मौका हमेशा उधर उस तरफ ही कर रहा है। अच्छा, बढ़िया,
1: अच्छा लग रहा। अच्छा अच्छा, चलिए सर, ये है। लेकिन मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है दिल के अंदर कि मैं जिनको हमेशा सुनता रहता हूं आज उनसे सवाल पूछ पा रहा हूं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है या एक बड़ा मजेदार अनुभव है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है, नवादा और देहरादून से लेकर मुंबई तक का सफर रहा है। आप फिल्मों से इतने जुड़े हुए हैं, आपने तरह तरह के फिल्मी जॉनर्स देखे हैं, तो अगर इस पूरे सफर को जो आपको नवादा और देहरादून से मुंबई तक लेकर आया, इसको अगर एक फिल्म इस पे बनाए हैं तो उसको क्या जॉनर देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी यात्रा में उतार चढ़ाव भी आए हैं, हर तरह के मोड़ आए होंगे, सब चीजें आपने देखी हैं, एक जर्नलिस्ट का भी दिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी सफर आपने देखा है और फिल्मी इतिहासकार तो आप है, तो कुछ बताइए कैसा अगर इस फिल्म बनाए तो इसका जॉनर क्या रखेंगे, आप ही बताइए।
2: आपने मेरे सफर को किस जॉनर का है पूछा, तो एकला चलो रे ही कहूंगा मैं, एकला चलो रे, वो है ना, मैं चला था अकेला चला था जानी बे मंजिल मगर, बस वो चीज है।
1: अच्छा अच्छा, वो मजरू साहब का शेर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां, मतलब आपका ये कारवां काफी लंबा होता गया। ओके ओके, वेरी गुड। तो
2: और होता जा रहा है सर,
1: होता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसमें बहुत बहुत सारे मोड भी आए हैं, आपने बहुत चेंजेस भी किए अपने उसमें, कभी कुछ करा कभी कुछ किया। तो चलिए तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप यादों में थोड़ा गोता लगाइए। 18 साल की बैंकिंग नौकरी छोड़कर आपने कलम को चुना, तो क्या ये अचानक लिया गया फैसला था या बहुत पहले से आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं ये करूं ऐसा करूं बॉम्बे आकर? तो इसके बारे में बताइए, कैसे आप बॉम्बे आए, क्या हुआ सब बात?
2: देखिए सर, देहरादून में रहते हुए ही मुझे 20 साल की उम्र में पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी मिल गई थी।
1: जी
2: ठीक है ना
1: जी।
2: अब वो वही पे ब्रांच थी देहरादून के अंदर ही, मुझे ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर पोस्टिंग, घर से जाना घर से आना, लेकिन मेरा रुझान पूरी तरह से कला की तरफ था, नाटकों की तरफ, रंगमंच। मैं देहरादून का काफी प्रेस्टीजियस ग्रुप है कला मंच,
1: अच्छा
2: मैं उससे हूँ। अच्छा। कई नाटकों में अभिनय किया, और लेकिन सर घुटन होती थी छोटे शहर की कि करने को कुछ नहीं था। मैं अब मेरे से जो सीनियर्स थे मैं उनको देखता था कि बस नाटक कर लिया, अपने नौकरी कर रहे हैं, नाटक वाटक किए, शाम को घर चले गए, आगे धीरे धीरे फिर रिटायर हो गए। मुझे ये था बैंक की नौकरी जो थी वो मेरा वो नौकरी वाला टेम्परामेंट कभी रहा नहीं, लेकिन वो अचानक बस मिली गई थी चलते फिरते। तो सर मैंने ये प्लान किया हुआ था, मेरी ये योजना थी कि मैं जो जिस घुटन से मैं देहरादून, अच्छा देखिए मेरी घुटन का जो था उसका नतीजा क्या हुआ कि भटकाओ। मैंने सितार सीखा, पेंटिंग सीखी, जी
1: अच्छा।
2: पेंटिंग, और मैंने ये अपना स्कल्पचर सीखा।
1: ओके
2: ठीक है ना, ये नहीं था कि मुझे किसी सीखना ही था, बस भटकाव था कि मुझे कला से किस तरह कैसे जुड़ूं, ये था। तो मैंने ये सारी चीजें और बेसिक चीजें थी उसकी, बेसिक संगीत की, शास्त्रीय संगीत की बिल्कुल बेसिक सारी की सारी जो जानकारी वो हासिल करी, वो शिक्षा ली। ऐसे ही स्कल्पचर का था, मूर्ति कला का, बाटिक पेंटिंग, मतलब जो आता रहा वो करता रहा, और वो मैं कहता हूँ वो भटकाव था मेरा, क्योंकि छोटे शहर में फंसे हुए मैं क्या करूं वाली चीज थी मेरे दिमाग में। एक ये थी, फिर शादी भी हो गई, मेरे दिमाग में ये था कि जिस घुटन में मैं रहा यहाँ मैं अपने बच्चों को नहीं रहने दूंगा, उनको आगे जो है बच्चों को आगे खुला आकाश मिले। और उसके लिए सर फिर मुंबई तो था ही, क्योंकि मैं रंगमंच से था तो मुझे ये था कि मुंबई, और फिर हमारे पंजाब नेशनल बैंक के, आप भी पीएनबी से ही हैं, मैं हमारे पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑल इंडिया कंपटीशन होता था सांस्कृतिक कार्यक्रम वो प्रतियोगिताएं, 12 जोन थे, तो मैं वहां से आया करता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अंचल दिल्ली में होता था ये, और यहाँ से जो जाते थे जो पश्चिमी अंचल यानी कि वेस्टर्न जोन ये वाला जो है गुजरात और महाराष्ट्र वाला, मुंबई से जो लोग आते थे, जो टीम आती थी, मैं उनके साथ ज्यादा रहता था वहां पे, क्योंकि ऐसा लगता था ये मुंबई से आए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आसमान से उतरे देवता हैं। वो छोटे शहर का जो एक ग्लैमर था जो दिल दिमाग में, तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, और फिर 1995 में मैं ट्रांसफर लेके यहाँ आ गया। उसके मुख्य जो मेरी वजह थी आने की वो ये थी कि मैं अपने बच्चों को वो घुटन, उस घुटन से बाहर निकालना है, ये ना ये था। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता था मैं नौकरी करता रहूंगा, ठीक है कुछ छोटा मोटा कुछ करते रहे, लेकिन वो होता नहीं है, छोटा मोटा नहीं हुआ करता, आपकी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया मुझे लगने लगा कि भाई मैं अगर नौकरी ही करनी थी मुझे तो देहरादून क्या बुरा था कि मोटरसाइकिल पे किक मारी और 15 मिनट में आप ब्रांच में पहुंच गए। यहाँ आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में किस तरह से चढ़े लटक के जाएं, जैसे भी आपको 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो ब्रांच में पहुंचने में लगता है।
1: जी।
2: ये सारी चीजें। तो सर बस वो 2000 में फिर मैंने बैंक, हमारा स्पेशल वीआरएस आया था वो मैंने ले लिया। 18 साल की नौकरी थी, 1982 में ज्वाइन किया था और 2000 में जी।
1: छोड़िए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने स्टेज भी किया हुआ है, वो देहरादून में किया हुआ है, स्टेज किया हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था आपने स्टेज भी किया हुआ है।
2: और सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
1: जी,
2: जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं।
1: अच्छा, ये तो प्ले भी बड़ा मशहूर। हाँ, प्ले भी
2: नाटक ही, नाटक ही है। ये नाटक मैं लखनऊ गया था किसी काम से 3-4 दिन के लिए, तब तो उत्तर प्रदेश ही था, अब तो उत्तराखंड हो गया अपना, देहरादून ही राजधानी हो गया। मैं लखनऊ गया हुआ था उन दिनों, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था किसी काम से। शाम को मैंने ये कौन सा है वहां, मैं एक ही बार गया, वो टैगोर है कौन सा, रविंद्रालय के बाहर मैंने बहुत बड़ा बैनर देखा, तो बड़ा अटपटा सा नाम लगा, इतना लंबा नाम नाटक का, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। एक बार लगा कि शायद ये पंजाबी नाटक हो, तो खैर मैं रुक के मैंने पढ़ा, तो तब मुझे समझ में आया कि ये नया नाटक है कोई। वो थे हबीब तनवीर साहब, उनकी टीम थी,
1: राइट,
2: हबीब तनवीर। और हबीब तनवीर साहब का वो नाटक था जो पब्लिश होने से पहले, वो शुरू पहले ही से कर रहे थे, तब तक ये पब्लिश नहीं हुआ था।
1: अच्छा,
2: नाटक
1: ओके।
2: अब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो नाटक, देहरादून लौटा मैं 2 दिन बाद, आते ही वो अब नेहरू युवा केंद्र में हम लोग शाम को मिलते थे, कलामंच के हमारे सीनियर्स भी थे काफी सारे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी अब नाटक होगा यहाँ तो सिर्फ जिस लाहौर नहीं वेख्या, मैं अभी देख के आया, बड़ा जबरदस्त नाटक है। और सर जब पूछताछ की तो कहीं था ही नहीं उपलब्ध, लेकिन ये जरूर है कि ये पता चला कि हबीब तनवीर के असगर वजाहत के 5 नाटक आ रहे हैं, उनमें एक ये है, असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ है। तो सर वो महीने भर के बाद जब वो किताब आई, मैं रेगुलर लगातार उनके टच में था, दिल्ली वो हिंदी बुक डिपो,
1: ओके,
2: रात की बस पकड़ी, अगले दिन सुबह पहुंचा, वो वहां से लेके 5 नाटकों की जो किताब है वो वापस देहरादून पहुंचा शाम तक। अगले दिन फिर जो है ये हम लोगों ने रिहर्सल शुरू की इसकी। हाँ, तकलीफ कुछ चीजों की ये थी कि एक तो हम लोगों की भाषा बहुत खराब थी।
1: अच्छा,
2: दरवाजा खून, ठीक है ना, इस तरह से जो है वो नुक्ते का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। इस पे हमारा 2 महीने काम हुआ।
1: ओके,
2: हमारी जुबान सुधारी गई। एक थे उस्ताद जी, उन्होंने पूरा उसमें, फिर मैंने सर वो वाला भूमिका की थी जो सिकंदर मिर्जा जो लखनऊ से लाहौर जाते हैं।
1: ओके ओके
2: सर, वो ये तो मतलब हाँ। और दूसरा ये था कि पहली टीम हमारी थी जो पब्लिश होने के बाद, ये नाटक के प्रकाशन के बाद हमारी पहली टीम थी जिसने ये किया। असगर वजाहत साहब उन दिनों यूरोप में कहीं थे, तो उनके असिस्टेंट, मैं नाम बोल रहा हूँ, अभी पता नहीं, सुख सरदार जी थे, वो आए थे उसमें।
1: ओके,
2: बहुत सारे नाटक किए सर। धून रंग शिविर हुआ, हाँ मैं ये भी बता दूं, धून रंग शिविर हम लोग उसमें देहरादून की 4-5 संस्थाएं जो मेन थी वो, और दिल्ली से NSD के दिनेश खन्ना आए थे।
1: अच्छा,
2: दिनेश खन्ना के देखरेख में 3 नाटक हुए थे, उसमें से 2 में मैं था। और मैंने वो डॉक्टर वीजी शर्मा थे, शर्मा तमिलनाडु तमिलियन थे, डॉक्टर वीजी शर्मा थे या खैर वो क्राफ्ट्स वाले, उनके साथ भी मिलके मैंने काम किया। तो इस तरह से सब मैंने काफी काम किया है देहरादून में, कई नाटकों में किया। तो खैर
1: ये बड़ा मजेदार है कि आपकी एक लखनऊ ट्रिप ने आपको स्टेज से जोड़ दिया। ये तो ये मतलब हुआ कि आपकी, आपने एक वहां नाटक देखा और आप उससे इतने मुतासिर हुए कि आप एक ही दिशा ही बदल गई। बहुत ही एक अच्छा काम। और ये नाटक भी बहुत फेमस है जो आप, जिसका नाम आपने लिया, असगर वजाहत साहब का, बहुत फेमस नाटक है।
2: एक बात कहना चाहूंगा सर, ये नाटक तो बाद में हमने किया, मैं 12वीं जब मैंने किया था उसके बाद ही कलामंच से जुड़ गए थे हम। क्योंकि हमारे गुरु थे अजय चक्रवर्ती जी, अजय चक्रवर्ती सर। अच्छा। स्कूल में हमारे टीचर थे वो, और बहुत अच्छे वो रंग वो जो थे निर्देशक थे।
1: अच्छा।
2: रंगकर्मी बढ़ जाने वाले और निर्देशक वो कलामंच के सदस्य थे। तो अजय चक्रवर्ती सर ने, हम शायद 11वीं में थे, हाँ 12वीं में तो हम बोर्ड का एग्जाम होता है तो इसलिए 11वीं में हम थे, तब उन्होंने जो एनुअल फंक्शन में हमारा एक नाटक करवाया था, चिराग जल उठा।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक है, टीपू सुल्तान की कहानी जो अभी है, और उसमें उनका चचेरा भाई है अनवर, वो धोखा देता है अंग्रेजों से मिल जाएगा, बड़ा हिट नाटक है वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: उसमें फिर मैंने अनवर का किया था रोल, तो लेकिन वो इतना अच्छा रहा वो नाटक की चक्रवर्ती सर कलामंच में ले गए हम लोगों को, उसमें 5-7 कलाकार हम स्कूल वाले थे उस अच्छा। नाटक में तो शुरुआत मेरी, मैंने 79 में साल 79 में मैंने 12वीं किया था, और उसी 12वीं के बाद ही हम लोग

0: फेज आया। इसके नाम पे हम रुक के एक हबीब तनवर साहब, असगर वजाहत साहब के नाम पे एक गाना सुन लेते हैं और एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं, फिर आगे अपनी बातचीत जारी रखते हैं।
1: जी जी जी जरूर जरूर।

0: हाँ शर्मा जी, वेलकम बैक। आपकी थोड़ा सा हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। आपकी कहानियां पत्रिकाओं में भी छपी, आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई, तो अब जब ये कहानियां आप खासतौर से रेडियो के लिए लिखते हैं, तो इसमें आप क्या अलग किस तरह से ट्राई करते हैं? उसके लिखने का जो शिल्प है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टोरी राइटिंग? कुछ उसके बारे में बताइए।
1: नहीं सर, रेडियो के लिए नहीं लिखी मैंने।
0: अच्छा
1: ये नॉर्मल जो कहानी है वो ही है ये। और
0: अच्छा
1: मुझे मालूम नहीं था कि मैं लिख सकता हूँ।
0: ओके
1: लिखता था किसके लिए, जो हमारे बैंक में जो वो हिंदी दिवस सितंबर में, उस
0: हाँ
1: हिंदी सप्ताह, उसमें कहानी प्रलेखन प्रतियोगिता होती थी।
0: हाँ होती
1: तो
0: थी।
1: यहाँ आके ही शुरू किया था मैंने। देहरादून में रहते हुए दो कहानियां लिखी थी,
0: अच्छा
1: और लेकिन वो ऐसी थी, मतलब ठीक है। यहाँ पे मैंने उन्हीं में से एक कहानी मैंने बैंक में भेज दी। ये
0: अच्छा
1: जो अपना हिंदी दिवस का जो था कहानी प्रतियोगिता,
0: हाँ जी
1: उसे पहला इनाम मिल गया। और वो
0: ओके
1: कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं थी कि सर हिंदी भाषियों में मैं अकेला था हिंदी भाषी, और फिर रंगकर्म से जुड़ा हुआ वो सब। ये छपी, धीरेंद्र अस्थाना जी हैं दरअसल लेखक बनाने वाले मुझे। धीरेंद्र अस्थाना जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो साहित्यकार हैं, और उनकी कहानी है तो वो जापान कौन सी यूनिवर्सिटी है उसमें भी लगी। और सारा समय, या हाँ जब मैं आया था तो वो देहरादून से ही थे धीरेंद्र अस्थाना जी, लेकिन बहुत सीनियर थे हमसे। तो मैं उनके नाम एक चिट्ठी लेके आया था, अवधेश कुमार जी, एक बहुत जाने माने रंगकर्मी, और चौथा सप्तक उनकी जो है कविताओं की पुस्तक भी आई थी। अवधेश जी ने वो चिट्ठी चिट्ठी दी थी धीरेंद्र जी के नाम। तो मैं यहाँ आया, धीरेंद्र जी से मिला। वो उन दिनों जनसत्ता जो अखबार था, उसकी उसकी जो रविवार ही पत्रिका, सबरंग,
0: हाँ सब रंग
1: सबरंग,
0: जी
1: हाँ। तो उसी साल में मैंने अपनी कहानी यहाँ, क्योंकि मैं आया ही था, सन 95 की बात है, और आया मई में था, मैं उनसे मिला था। तो धीरेंद्र जी ने कहा कि हाँ मिलते रहना, वो जैसे शुरू शुरू में होता है कि हाँ भी मिलते रहना।
0: हाँ
1: अब उसके बाद, जब उसके बाद फिर संपर्क में रहे हम लोग, और फिर जब सितंबर में जब इसे पहला पुरस्कार मिला, तो मैंने धीरेंद्र जी को बताया, कह लगे मुझे देना वो कहानी। उन्हें बड़ी पसंद आई उस
0: अच्छा
1: मोड़ पर, हाँ, उन्होंने वो अपनी सबरंग में छाप दी।
0: ओके
1: अच्छा, उसे काफी पसंद किया गया।
0: ओके
1: फिर उसके बाद 3 साल लगातार, मतलब ये 95, 96, 97, या शायद बीच में एक आध गैप आ गया होगा, जो भी, मुझे तीन मेरी कहानियां बैंक में मैंने जब लिखी, तो उसमें उन्हें तीनों को तीनों बार तो पुरस्कार मिला।
0: बढ़िया
1: तो वो तीनों कहानियां धीरेंद्र जी छापते रहे। उसके बाद जनसत्ता बंद हुआ तो ये दिल्ली चले गए थे। जनसत्ता बंद हुआ तो दिल्ली चले गए। दिल्ली में इन्होंने जागरण सखी, एक
0: ओके
1: पत्रिका आती है, उसके लिए मुझसे लिखवाना शुरू किया। मैंने इंटरव्यूज किए यहाँ काफी लोगों के, और जागरण की उदय उदय उसकी रविवार या शायद मासिक पत्रिका थी उदय, उसमें मेरी एक कहानी उन्होंने तब छापी। तो सर, मैं अपने आप को कहानीकार इसलिए नहीं कहता कि, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस मुझे लिखने के लिए लिखना है। मेरी कुल जमा 8 कहानियां हैं अभी,
0: ओके
1: और इससे पहले वाली नहीं होगी तो कम से कम 6-7 साल हो गए। हाँ, कोरोना के टाइम पे उस समय मैंने लिखी थी वो।
0: आपकी
1: और
0: एक कहानी वो भी तो है, वो लाल गाउन वाली स्त्री।
1: वही वही वही
0: हाँ तो उसके बारे में बताइए। ये नाम बड़ा जोरदार है, लाल गाउन वाली स्त्री। इसमें इसके पीछे क्या सोच है आपकी?
1: वो मैं बताता हूँ। और ये छपी भी सर आपके जयपुर से ही आती है, माही संदेश
0: अच्छा
1: पत्रिका एक,
0: हाँ
1: उसमें छपी थी ये, क्योंकि
0: ओके
1: मैं माही संदेश के लिए फिल्मों पे लिखता रहा काफी टाइम तक, काफी समय
0: अच्छा
1: लिखा। खैर, ये ऐसा कुछ नहीं है सर, बस ख्याल आ गया। हमारी ये हमारी बिल्डिंग है, इसके बगल वाली जो जो बिल्डिंग है, हाँ, इनके बीच में एक खाली पैच पड़ा हुआ है जमीन का।
0: अच्छा जमीन
1: अब उसमें झाड़ झंखाड़ उग जाता है, या कभी वो लोग आके वो सारा कूड़ा करकट, कहीं किसी के घर में रेनोवेशन हुआ या कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुई, वो मलबा वो इस तरह से डालते रहते हैं, और फिर
0: ओके
1: बीच बीच में इसमें कब्जे की कोशिशें भी होती रही। उसका हमें ये नहीं पता कि ये हमारी है या बगल वालों की है,
0: जी
1: पर हम इसको किस पे कब्जा नहीं होने दिया, बगल वालों ने भी और हमने भी, हमारी जो दो बिल्डिंग्स के बीच में ये है, तो ये अभी खाली पड़ी है। नहीं है इसमें सर, पेड़ था एक,
0: ओके,
1: काफी सारे पेड़ हैं, लेकिन मेरी खिड़की से ठीक सामने एक पेड़ दिखता था और उसके ऊपर एक लाल रंग का, एक दिन देखा एक लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ है।
0: ओके, अच्छा,
1: मैं देखता था, मुझे लगता था कि ये हो सकता है, वो यही हुआ होगा कि कहीं से उड़ के आ गया, लोगों ने फैलाया होगा अपने जैसे धो के कपड़े फैलाए, वो हवा में उड़ा होगा और यहाँ आके लटक गया उसके ऊपर। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मुझे कहानी लिखवाने के लिए ही जो है वो आके कहीं से टंगा होगा वो कपड़ा। ये कहानी सर, क्योंकि कोरोना शुरू हुआ तो ये है, तो थोड़ा सा शुरुआत तो इसकी है वो हॉरर कह लें या उस तरीके से थ्रिलर कह लें, लेकिन आखिर में वो व्यंग्य कथा निकलती है।
0: व्यंग कथा
1: आप कहें अगर तो संक्षेप में सुना दूं, नहीं तो वो
0: हाँ नहीं, मैं समझ में आ गया, लेकिन मेरे इस बात की दाद देता हूं आपकी कि आपने आउट ऑफ एक छोटे सी एक सीन को एक कहानी में बदल दिया और उसका नाम भी इतना अच्छा रख दिया कि वो लाल गाउन वाली स्त्री जिसको लोगों को
1: चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और मेरी खिड़की के ठीक सामने इसी ऊंचाई पे वो टंगा हुआ था।
0: ओके,
1: मेरे यहाँ से कम वो 20 मीटर होगा।
0: ओके,
1: ठीक है सर।
0: ओके,
1: वो पेड़
0: पहुंचा।
1: अचानक विचार आया, कोरोना था, खुराफात, काम धंधे कुछ थे नहीं, हालांकि मैं तो अपने वीडियोस बना रहा था। उसे मैं जब भी देखता था तो मुझे बड़ा, ये कहते हैं कि हमारा जो मीरा रोड का इलाका है ये बड़ा दलदली हुआ ही करता था, दलदली था ये कई सालों पहले। अब तो सर ये इसने मात दे दी बांद्रा और ये मेट्रो भी आ गई हमारे यहाँ बगल में ही बिल्कुल हमारे। तो वो जो मीरा रोड का इलाका ये कहते थे कि यहाँ सारी खाड़ी थी और ये सब, और वहां उन दिनों जिन्हें तड़ी पार कहते हैं, जिन्हें जो अपराधी जिन्हें तड़ी पार किया जाता है, वो सारे मीरा रोड पे आके पनाह लेते थे। यहाँ दूर दूर कुछ गांव थे, चार पांच। तो कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ कत्ल कर दिए गए और इस दलदली जमीन में फेंक दिया गया उन्हें। अब सर इतना ही काफी। अच्छा हाँ, मेरा जो प्रॉपर जॉनर जो जैसे बात है जॉनर या मेरा जो असली इंटरेस्ट है जिसमें रुचि मेरी है सर, वो है हॉरर थ्रिलर।
0: अच्छा,
1: ठीक है ना। और मतलब वो वाली एंटिटीज जो दुनियावी नहीं है, वो मेरा है, मुझे वो अंदर से कुछ है, मुझे पुराने महल ये सब मुझे बहुत अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
0: पैरानॉर्मल, हाँ मैं समझ गया,
1: पैरानॉर्मल जिसको कहते हैं ये एक्टिविटीज। तो फिर हंसी मजाक में ये भी होती थी कि ये इस पे यहाँ पे जो है भूत प्रेत भी बहुत हैं, ये सारी चीजें जब हम आए थे शुरू शुरू में हंसी मजाक में बात होती थी। तब मुझे वो ख्याल आया, तब मैंने ये कहानी लिखी थी कि कोरोना ने लोगों को कैसे, किस तरह से एक स्ट्रांग लोगों को कोरोना अपने साथ ले गया, तब ये कहानी थी। अचानक दिमाग में आया, मैंने कहा वो आधी रात को आवाज आती है औरत की, किसी की आई कि सर साहब जी, और खिड़की खोल के देखी तो हवा में तैर रही है वो। मैंने कहा ये कौन, हाँ हवा में, मतलब मैं तो हाँ व्यंग्य जरूर था कि मैंने देखा श्रीमती जी तो सो रही हैं घोड़े बेचू नींद और ये इस तरीके से कुछ है। फिर से आवाज आई, जब मैंने देखा तब दिमाग में आया भाई मैं तो सेकंड फ्लोर पे हूँ, ये कौन है 12-15 फुटी चिमनी देवी, इस तरीके की है व्यंग्य उसमें हास्य व्यंग्य। तो ये होता है सर। तो वो खैर ये जो प्रेतात्मा है जिसे किसके बारे में लोगों को कभी कभी दिखती भी थी, वो अचानक वो मेरे पास आती है उस दिन कि देखो जी ऐसा है तुम तो उल्लू की तरह रात भर जागते हो, मैं औरों को तो डिस्टर्ब कर नहीं सकती, लेकिन ये है कि मुझे 70-80 साल पहले मैं यहाँ आई थी रहने, सब जंगल झाड़ झंकाड़ थी, ये करके वो बताती है। और उसके बाद कहती है कि मैं इसलिए आई कि आप सब लोगों को बता देना मैं दिखती भी रहती थी और मुझे आप सबसे मोह भी हो गया इतना टाइम से, लेकिन मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ वही जा रही हूँ, मतलब कि देखो किसी ने मेरे लिए मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल रही है और मैं जा रही हूँ और सबको बता देना मेरी तरफ से जो है।
0: अच्छा,
1: और ये कह के उसे हल्की सी खांसी उठती है, सूखी खांसी।
0: ओके ओके,
1: फिर थोड़ा सा धसका उसका और तेज होता है और फिर वो कहती है जिनपिंग जिंदाबाद और कह के वो हवा में गायब हो जाती है। किस तरीके की कहानी है सर। एक चीज और मैं बताऊं सर, वो ये व्यंग्य था कि कोरोना ने प्रेतात्माओं तक को मुक्ति दे दी।
0: ओके ये
1: वो मतलब है जिनपिंग।
0: ओके ये
1: जिनपिंग जिंदाबाद।
0: हाँ
1: चीन से शुरू हुआ था कोरोना।
0: चीन से शुरू, मैं समझ गया, मतलब ये पंचलाइन थी आपकी। वाह, तो ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ रुक के हम एक या तो 20 साल बाद का गाना सुन लेते हैं या वैकुंठी का गाना सुन लेते हैं। आपकी कहानी की स्टोरी भी कुछ कुछ वैसी है।
1: जी जी
0: है ना।
1: अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा सर, एक बार और आप मतलब देखिए अभी ये बोलने का वो फ्लो है वो तो आपके हाथ में कैंची, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जब ये कहानी मेरी छपी माही संदेश में, और सर उसके मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर वो पेड़ गिरा।
0: ओके
1: वो पेड़ गिरा, वो जड़ से उखड़ गया और वो झाड़ झंकाड़ में खो गई। हाँ ये वाला पेड़ बिल्कुल है ही नहीं।
0: तो ये संयोग है, कोइंसिडेंस है या कुछ पैरानॉर्मल ताकत है?
1: पता नहीं सर, नहीं वो पैरानॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये है कि अगले दिन सुबह जब मैं सो के जब उठा मुझे फिर गहरी नींद आ गई। सुबह उठा तो मैंने देखा कि वो लाल रंग का गाउन टंगा हुआ था पेड़ पे।
0: वो गायब है
1: उस कहानी में, कहानी की बात कर रहा हूँ वैसे तो टंगा हुआ ही था, कहानी की बात कर लू
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें हैं, तो सर हो सकता है कि कुछ हो इससे। लेकिन ये छप के आई और छपने के 15-20 दिन के अंदर वो पेड़ गिरा और वो ऐसा झाड़ झंखाड़ में खोया नीचे कि वो लाल कपड़ा कहाँ चला गया, क्या है कुछ नहीं। अब कौन जाके देखे,
0: सही बात,
1: इतने गंदगी में झाड़ झंखाड़ में पता नहीं सांप बिच्छू क्या क्या होंगे। एनीवे
0: चलिए तो फिर रुक के यहाँ अपन गाना सुन लेते हैं शर्मा जी, और इसी किसी जोनर का गाना सुन लेते हैं जो आपने इतनी, आपने तो एक पूरी स्टोरी सी सुना दी हमारे को और मजा आ गया, क्योंकि इसके पीछे जो अब हमें भी कोई अगर ऐसा लाल कपड़ा कहीं दिखेगा तो हमारे दिमाग में भी यही कहानी रहेगी, लाल गाउन वाली
1: लाल गाउन वो लाल गाउन वाली स्त्री
0: वाली।
1: ये मेरे कहानी संग्रह अभी छप के आया है, उसमें मेरी आठों कहानियां हैं, उनका मैंने शीर्षक इस कहानी को जो है इसी का मैंने उससे भी शीर्षक दिया हुआ है।
0: चलिए जी सर, तो अब अपन एक गाना सुन लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर आगे चलते हैं
1: जी।

0: हाँ शर्मा जी, वेलकम बैक। तो
1: जी
0: आपने
1: धन्यवाद।
0: अब कहानी लेखन का जो फेज था उसको से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने टीवी धारावाहिकों और फिल्मों के लिए भी संवाद लिखे हैं, तो
1: जी
0: अब कुछ ये बताइए, जब आप संवाद लिखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा संवाद क्या होता है, जो याद रह जाए या किरदार में घुल जाए, किस तरह से? क्योंकि आपको पता है, दीवार के डायलॉग हैं, इफ्तिखार के डायलॉग हैं, ये बहुत लोग इनको रिपीट करते हैं, शोले के डायलॉग हैं, तो किस तरह से, हाउ डू यू व्यू इट, कैसे आपका ख्याल है इसके बारे
1: देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, सबसे पहले तो सहज होना चाहिए किसी
0: में? ओके।
1: भी संवाद को। फ्लॉरी, हर हर किसी किरदार के ऊपर फ्लॉरी संवाद नहीं चलते हैं, भारी भरकम संवाद हर किसी किरदार पे नहीं फिट होते। वो किरदार के हिसाब से, उस चरित्र के हिसाब से संवाद होते हैं। सहजता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज सर ये है कि अगर कोई अभिनेता संवाद लेखक बनता है या संवाद लिखता है, तो वो
0: अच्छा,
1: सबसे अच्छा लिख सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि संवाद बोलने में, जैसे मैं लिखता हूं, मैं उसे पढ़ता हूँ, बुदबुदाता हूँ, क्योंकि मैंने रंगमंच किया, तो मुझे मालूम है कि जुबान नहीं अटकनी चाहिए। सहजता के
0: बिल्कुल
1: साथ संवाद, मेरी नजर में सबसे अच्छा संवाद वो है जो सहजता के साथ आपका शुरू से आखिर तक जुबान से बाहर आए। अगर वो फ्लॉरी है, समझे ना, फ्लॉरी
0: मैं
1: जो
0: समझ
1: जैसे
0: गया।
1: मेरे पास में
0: ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए,
1: ऑर्नामेंटल जो कहेंगे, वो
0: ऑर्नामेंटल,
1: फुसाया
0: मैं समझ
1: हुआ।
0: गया बिल्कुल। बहुत
1: हाँ
0: गहरी बात कह रहे हैं आप, बहुत गहरी बात
1: हाँ
0: कह रहे
1: जी
0: हैं। और जितने भी डायलॉग बहुत फेमस हुए हैं,
1: हाँ
0: चाहे
1: जी
0: मोगाम्बो खुश हुआ या कोई भी, वो बहुत ही सिंपल से डायलॉग थे, एक या दो चीज थी जो फेमस हो गई अचानक। बिल्कुल मैं
1: जी
0: समझ
1: अगर वो
0: बिल्कुल
1: ऑर्नामेंटल है, अगर वो
0: आप
1: ऑर्नामेंटल है, तो भी उसमें बोलने में सहजता होनी चाहिए,
0: बोलने में से अच्छा थे, बिल्कुल सही बात।
1: बोलने में सहज हो
0: और
1: बस।
0: वो एक्टर की एबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है, वो किस तरह निकालता।
1: जी
0: तो अब
1: जी
0: ये फिल्म सिकंदर के संवादों का आपने अंग्रेजी से हिंदी उर्दू में रूपांतरण किया है, ट्रांसलेशन किया है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: क्या कभी लगा कि जो भाव है वो भाषा से आगे निकल जाता है? ये किस तरह से आप करते हैं ट्रांसलेशन वगैरह, क्योंकि इसकी जो वो है अंदर की जो फीलिंग्स है वो भी तो आनी चाहिए ट्रांसलेशन के अंदर। आप किस तरह से आपने किया था इस सिकंदर वाली बात?
1: सर, ये फिल्म जो थी शायद 2007 या 8 में, ये प्रोड्यूसर इसके सुधीर मिश्रा जी थे, और
0: अच्छा, सुधीर
1: पीयूष
0: मिश्रा
1: झा ने
0: जी।
1: ये डायरेक्ट हाँ जी
0: अच्छा
1: पीयूष झा
0: अच्छा
1: ने ये डायरेक्ट की थी, स्क्रिप्ट भी
0: ओके।
1: उन्हीं की थी।
0: अच्छा
1: अब ये थी अंग्रेजी में, कश्मीर
0: अच्छा
1: के बैकड्रॉप पे थी,
0: ओके
1: जिसमें वो
0: ओके।
1: आतंकवाद भी है, जिस ये इसमें वो दो बच्चे थे, एक परजान दस्तूर और एक वो आयशा कपूर,
0: अच्छा
1: ब्लैक थी ना शायद फिल्म, जिसमें वो रानी मुखर्जी के बचपन का रोल किया था उसने, ब्लैक
0: ओके ओके। हाँ, ब्लैक
1: जो,
0: थी
1: हाँ
0: ना, अमिताभ वाली। हाँ।
1: जी हाँ जी, ये दो बच्चे उसमें तब तक थोड़े बड़े हो गए थे ये, और फुटबॉल भी थी इसमें, इस कहानी में। तो सर अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी में उसके लिए जरूरी है कि वो अंग्रेजी सिर्फ इस काम आती है हमारे, मेरे मेरे जो इसका

0: आई शुडंट बी अलाइव, आम अलाइव, आई शुडंट बी अलाइव, गोल्ड रश, गोल्ड रश अलास्का, ये अंग्रेजी के कार्यक्रम थे उसके, बड़े जाने माने कार्यक्रम थे, वो हिंदी में मैंने किए बहुत सारे टीएलसी पे, ऐसे हनीमून एडवेंचर्स, या वो मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो जगह जगह जो चीज बनता है कई कंट्रीज में उस पे बनाया, एक योगा पे बनाया लिखा। डिस्कवरी के लिए दो बहुत प्रेस्टीजियस, बहुत इस तरह के दो कार्यक्रम मेरे पास आए थे, जिनमें से एक तो था ये जो ट्विन टावर गिरा था अमेरिका में।
1: अच्छा।
0: वो जब 10 साल पूरे हुए, शायद 2001 में गिरा था, 2011 की बात है जब पूरे हुए, तो स्टीवन स्पिलबर्ग ने 6 एक-एक घंटे के 6 एपिसोड्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई।
1: अच्छा।
0: उसका नाम था ग्राउंड जीरो, क्या था, रीबिल्डिंग ऑफ करके कुछ था, ग्राउंड जीरो मतलब वहां पे आज क्या है, कैसे बना। वो मैंने हिंदी में किए थे, वो 6 एपिसोड्स का जो कार्यक्रम था वो मैंने किया था हिंदी में। एक और आया था जो मैंने कह दिया था उन्हें कि जी इससे दूसरा का, दूसरा वाला जो एपिसोड है, एक एपिसोड आपका आ गया लेकिन यहाँ ये टेलीकास्ट नहीं हो सकता, वो इस्लाम को लेके था। तो उसमें बहुत संभल के चलना पड़ा मुझे, पहले ही एपिसोड बहुत संभल के, क्योंकि वो अंग्रेजी में तो बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल तलवार लेके निकले हुए हैं वो अंग्रेज जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए। अब सर यहाँ नहीं हो सकता ना, यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर मत के लोग हैं, भाई किसी को ठेस तो नहीं पहुंचनी चाहिए।
1: सही बात।
0: तो इसलिए वो मैंने उनको करके दिया था, वो उर्दू में ही था ज्यादा, लेकिन मैंने कह दिया था एजेंसी को कि ये दोबारा ये टेलीकास्ट होने वाला ही नहीं है। और वाकई उस एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आया ही नहीं मेरे पास, वो टेलीकास्ट भी नहीं हुआ।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ये तो देखिए नॉन फिल्मी हो गया। अभी डिस्कवरी नहीं सॉरी, ये आपका इसके लिए एक 92.7 बिग एफएम, उसका कार्यक्रम, हाँ जी उसका कार्यक्रम जो मैंने लिखा, मैंने रिसर्च वगैरह सब मेरी थी उसमें, स्क्रिप्ट ये थी, वो सुहाना सफर विद अनु कपूर।
1: ओके अच्छा। सुहाना सफर अनु को वो तो बड़ा फेमस था, उसमें भी आप, आपकी स्क्रिप्ट थी। ओके ओके
0: जी हाँ जी, मैंने स्क्रिप्टिंग की उसकी। और ऐसे ही एक शुरू हुआ था बाद में, द 90 शो विद अनु मलिक।
1: अच्छा अच्छा।
0: वो भी मेरी थी।
1: ओके।
0: और उसके जो जो प्रोड्यूसर थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो जयपुर की है, नितिन गोस्वामी।
1: अच्छा।
0: आप लोग शायद जानते भी होंगे नितिन गोस्वामी, दोस्त है मेरे, पड़ोसी रहते हैं नितिन। तो वो, लेकिन ये जो अनु मलिक वाला था वो फिर सर वो 9 महीने चला वो, और अचानक वो मी टू वाला जो एक आंदोलन शुरू हुआ,
1: हाँ।
0: उसमें वो प्रोग्राम भी, वो कार्यक्रम भी बंद कर दिया था।
1: अच्छा।
0: अनु कपूर, अनु मलिक साहब का
1: नाम की भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, राइट
0: जी। तो ये था, तो ये तो, ये तो सिनेमा से जुड़े हुए। हाँ ये जरूर है कि द 90s शो विद अनु मलिक जो है वो मेरे जो प्रॉपर जो जॉनर होता है कि मैं किस जॉनर का, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला हूँ, लेकिन ये मुझे नितिन ने कहा कि रिसर्च है भाई आप कर रहे हो, तो किया मैंने, और जरूरत भी थी, काम काम चलता रहे वाली बात थी। तो अनु मलिक वाला जो है वो मेरा जॉनर था नहीं, क्योंकि वो नई फिल्में थी मेरे लिए, पर फिर भी वो मैंने किया। और मुझे इसलिए भी आनंद आया क्योंकि मैं अनु मलिक के पिताजी सरदार मलिक साहब का इंटरव्यू कर चुका था, और मुझे अनु मलिक का जो जो धुने हैं, जो गीत, जो मैंने कभी सीरियसली गंभीरता से लिए ही नहीं, मैंने 70 के बाद के जो जो संगीत है मुझे लगता था ये सारे नए हैं, सिर्फ उनके सुनता था जो पहले से चले आ रहे हैं, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, तो मेरे फेवरेट।
1: हाँ।
0: वो जरूर मैं कलेक्शन मेरे रिकॉर्ड्स। हाँ जी। लेकिन जब मैंने अनु मलिक का, अनु मलिक के जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की और उनके गाने सुनने शुरू, मुझे लगा हुआ कि जबरदस्त, भले ही वो आधुनिक गीत संगीत उस तरह का हो कि, लेकिन मिठास इतनी जबरदस्त, वो थोड़ी सी मेरे जो पूर्वाग्रह थे वो भी ढह गए इस मामले में कि नहीं भाई। खैर ये था। एक शो जो आप कह रहे थे विविध भारती के, वैसे तो मैंने और भी लिखे, लेकिन विविध भारती का जो सबसे ज्यादा जो प्रेस्टीजियस है वो है, सन 57 में विविध भारती की स्थापना हुई थी, 2007 में 50 साल पूरे हुए, और उसमें मैंने 3 घंटे का वो शो, उसके रिसर्च, उसके स्क्रिप्ट,

0: सब लिखा था, वो था विविध भारती, इसका सफर विविध भारती करके कुछ था, वो 3 घंटे का शो।
1: अरे वाह,
0: तो वो है सर। जी जी जी
1: तो चलिए विविध भारती के नाम पे और जो उनकी मधुर संगीत तो विविध भारती से प्रसारित होता है, हम रुक जाते हैं, एक गाना लेते हैं, फिर मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ आपका जो सबसे प्राइम ऑक्यूपेशन या प्राइम फीचर है उसके बारे में बात करने चाहता हूं मैं, बीते हुए दिन के बारे में। तो हम बस थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बीते हुए दिन के बारे में बात करते हैं।
0: जी जी जी जरूर।

0: शुरू से ही शुरुआत हो गई थी
1: शुरुआत
0: जब से होश संभाला उस तरफ का जो। फिर ऐसे ही अचानक कुछ ऐसा हुआ, मुझे एक संगीत, एक तरह का, एक खास तरह का संगीत बहुत अच्छा लगता था। उस समय मुझे नहीं मालूम कौन संगीतकार कौन गीतकार क्या कुछ नहीं, लेकिन मुझे बताया कि ये जो गाने हैं ये ओपन ईयर के हैं।
1: ओके ओके
0: और ये तब हुआ कि 1969-70 की बात है, हम एक शादी में देहरादून में कहीं थे और ये बाहर बच्चे खेल रहे थे, और कहीं किसी घर में वो अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो,
1: हाँ
0: संबंध का गाना।
1: हाँ
0: तो
1: अंधेरे
0: गाने ने
1: में
0: ऐसा जादू किया मेरा, मैं तो
1: अरे
0: सुनता रह गया। वो खेल रहे थे सब, मैं वहां खड़ा होकर सुनता रहा। अच्छा, उस जमाने में कुछ ऐसा भी नहीं था, आज तो सब कुछ है आपके पास, इंटरनेट भी है, सारी चीजें। थे भी छोटे, बहुत छोटे, मेरी उम्र कितनी रही होगी इस समय, 9-10 साल।
1: ओके
0: तो वहां से तो ये एक तो नैयर साहब के प्रति दीवानगी वहां से शुरू हुई मेरी, तो ये पैशन। फिर सर वो प्रिया मैगजीन और कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी, मैं उसमें वो रखता था अपने कलेक्शन में, या जो फिल्मोग्राफीज आती थी वो फाड़ फाड़ के अपने कलेक्शन में वो बनवाता था।
1: फिल्मफेयर आती थी और भी दो तीन फिल्मी मैगजीन्स आती थी, मुझे याद है।
0: हाँ जी, अभी तो नाम भी भूल रहा हूँ मैं, उनमें जो
1: नाम
0: फिल्मोग्राफी आती थी। और वहीं पे एक नाम मुझे बड़ा जो, हरीश रघुवंशी, संकलक, संकलन करता हरीश रघुवंशी।
1: ओके ओके
0: हरीश सर जो है बाद में वो हमारे पैटर्न बने
1: ओके ओके
0: जब मैं मुंबई आ गया। हाँ, तो मेरा मेरा ये शुरू ऐसे हुआ कि सन 2000 दिसंबर में मैंने बैंक छोड़ा। तो 2001 में, 2 में जो है फिर मैं थोड़ा बहुत करने भी लगा, हालांकि पहले भी मैंने कुछ किए थे रोल्स ऐसे, लेकिन उसके बाद फिर मैं टीवी सीरियल्स कुछ किए, मैंने करता रहा। लेकिन मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि ये तो जिंदगी कुछ भी नहीं है कि आप रोज धक्के खाते रहो, ठीक ना। और दूसरा क्या है कि ये टीवी या सिनेमा ये अभिनेता का माध्यम नहीं है, वो रंगमंच ही है। लेकिन अब एक और मुसीबत थी कि भाई मेरे साथ तो पत्नी और बच्चे भी थे। तो लेकिन इस बीच धीरेन्द्र जी ने ही 2003 में सारा समय शुरू हुआ। धीरेन्द्र जी दिल्ली में थे, मैंने बताया ना वो जागरण,
1: धीरेन्द्र
0: धीरेन्द्र अस्थाना जी, ये
1: जी
0: फिर जलसत्ता बंद होने के बाद ये दिल्ली चले गए, 3-4, 4-5 साल वहां रहे। और फिर इनका मुझे फोन आया, नहीं पता था कि मेरा पुरानी फिल्मों को लेके मैं मेरा बड़ा जबरदस्त झुकाव है, और मैं रिकॉर्ड्स भी इकट्ठे करने लगा। नौकरी लगी तो सन 82 में, उसके बाद से मैंने रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा, रिकॉर्ड्स दिल्ली जा जाके लेके आता था। बहुत बड़ा कलेक्शन है इस समय मेरे पास पुराने गाने पर, और पुराने रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट अलमारियां भरी हुई हैं जी। तो 2003 में जो वो सारा समय के जो ये ब्यूरो चीफ होके दिल्ली से यहाँ आ गए, नया शुरू हुआ था सारा समय वीकली, इन्होंने मुझे कहा कि अब तेरे पास समय भी है तो एक काम कर। अच्छा, तब तक मैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का और राइटर्स एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हो चुका था, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हो चुका था और राइटर्स एसोसिएशन का भी मेंबर हो गया था। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था चीजें, सिंटा से मुझे बड़ी मदद मिली। धीरेन्द्र जी ने कहा तो एक काम कर, ये पेपर आ रहा है, मैं तो, और 16 48 पन्नों का पेपर था, 16 पन्ने तो सिनेमा से ही रिलेटेड थे, जो जिसका सारा धीरेन्द्र जी को देखना था। अब सर मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, मुझे जितने नंबर हुआ करते थे वो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के ऑफिस में जाता था, वहां आज भी हैं, वहां पे वो पुराने जो कर्मचारी हैं वो, उनसे मैं कहता था, वो मेरे सामने रजिस्टर निकाल के रख देते थे कि ये लो जी आप ढूंढ लो इसमें से। उसमें से मैं पुराने पुराने रजिस्टर्स में से निकाल निकाल के और नंबर नोट करता था डायरी में, फिर उन लोगों को फोन करता था,
1: फोन करते हो
0: और सारा समय का नाम सुन के जो है मुझे बुला भी लिया जाता था सब जगह, और
1: बुला
0: मैं बता भी देता था जी। तो इस तरह से सारा समय का मेरा जो कॉलम था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा कॉलम था लोग, एक कॉलम था बाकलम खुद, ये जो जो आज के टाइम के उस मतलब जो काम कर रहे थे, रिटायर्ड नहीं, जो काम कर रहे थे लेकिन लेखक, क्रिएटिव लोग, लेखक, डायरेक्टर, गीतकार, इसमें उनसे बातचीत हुआ करती थी। क्या
1: ठीक है
0: बोलूं क्या याद करूं जो था उसमें पुराने रिटायर्ड लोगों को। और सर वो समय मैं, मेरी ये खुशकिस्मती है, इंटरनेट आ रहा था और पुरानी पीढ़ी एक एक करके जा रही थी
1: ओके
0: धीरे धीरे सर, वो पुराने जो रिटायर्ड। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों का इंटरव्यू कर लिया, और वो एक मजाक भी बन गया था मेरे साथ, जो है मुझे कई बार लोग

0: जानने वाले हंसते थे, मतलब मेरे साथ ये कहते थे कि तू ये मत बताना किसी को कि मतलब तू तेरा नाम सुनते ही भागने ना लग जाए, क्योंकि होता
1: अच्छा
0: ये था सर, इतने बुजुर्ग, उनका इंटरव्यू लिया, अब पता चला कुछ दिन के बाद वो नहीं रहे। तो ये
1: अच्छा
0: कहते थे कि अगर तू ये मत
1: अच्छा
0: कहना जी आपका आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि सारे जा रहे
1: अच्छा
0: थे, तो जिसका इंटरव्यू कर रहा है उसके बाद वो, ये एक मजाक की बात थी, लेकिन ये सच्चाई है कि इस एज में भी लोगों ने, मैं दो ढाई सौ लोगों को ढूंढा, पूरा मुंबई छान मारा मोटरसाइकिल से, चेंबूर से लेके और बांद्रा और कहाँ कहाँ बताऊँ, अपना मरीन ड्राइव, मतलब सब जगह मैं गया, कुछ होंगे इक्का दुक्का, नहीं तो सभी का इंटरव्यू किया मैंने उस जमाने में जो थे। हाँ
1: अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, और
0: जी
1: वो भी ऑफ द कफ है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था पूछूं। आप ये बताइए, जितने आपने इंटरव्यूज किए हैं और यूट्यूब पे भी डाले हैं, इनमें कोई एक खास एक या दो नाम जो आपके जहन में हमेशा रहते हैं कि ये इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया हुआ, उसने बहुत जवाब बढ़िया दिए हैं? और इसके अगेंस्ट दूसरा मुझको ये भी बताइए कि कोई ऐसा इंटरव्यू हो जिसमें आप परेशान हो गए हो, जो तैयारी करके गए हो इंटरव्यू के लिए, वो सब धरी की धरी रह गई हो, उसने बात ही कुछ और शुरू कर दी हो, ऐसा एक अटपटा सा माहौल बन गया हो। ये दोनों बात बताइए, एक तो सबसे बढ़िया और एक सबसे खराब एक्सपीरियंस, कुछ बताइए इसके बारे में। ये तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे।
0: देखिए, अच्छे तो लगभग सभी हो जाते
1: जी,
0: थे, अच्छे होते थे, और उसका कारण आनंद जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैंने
1: अच्छा,
0: आनंद जी को फोन किया, कल्याण जी, आनंद जी, आनंद जी,
1: अच्छा,
0: कि आ तो जाओ भैया इंटरव्यू करने, लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी। बहुत गहरी
1: अच्छा,
0: बात कह दी थी उन्होंने। होता
1: अच्छा,
0: क्या है कि सर मेरा तो चलिए ये काम है, मैं इसी इसी काम यही काम कर रहा हूं मैं, लेकिन
1: जी
0: होता क्या है कि आम लेखक चला गया, कोई पत्रकार चला गया, अब से वो तैयारी करके तो जाओ, कम से कम कुछ दे उनके बारे में पहले कुछ
1: हाँ हाँ
0: तैयारियां तो कर लो।
1: पहले रिसर्च करके जाओ, बिल्कुल सही बात है।
0: वो अलग बात है कि आनंद जी का फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया, वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। खैर हाँ, मैं बीच में एक चीज बता दूं कि वही जो इंटरव्यूज थे मेरे, वही बाद में उन्होंने मेरे ब्लॉग बीते हुए दिन की शक्ल में आए वो,
1: हाँ अच्छा,
0: ठीक है ना, और वही फिर बीते हुए दिन जो है फिर वो यूट्यूब चैनल, और अब तो ये है कि वो वाले तो हैं ही, अब तो मैं वैसे भी इंटरव्यू करता रहता हूँ बीच बीच में, पहले घर जाता था लोगों के, अब मैं फोन पे कर लेता हूँ। खैर तो ये सब चल रहा है,
1: तो आपके
0: किया
1: कितने
0: कि
1: YouTube
0: सबसे
1: चैनल है, कितने फॉलोअर्स है, कुछ हमें बताइए ना इसके बारे में। आपके तो बहुत व्यू
0: सर
1: हुए हैं इसमें।
0: फॉलोअर्स तो मेरे 90,000 पहुंचने वाले हैं
1: अच्छा, वाह।
0: जी। नहीं, ये बहुत कम है
1: और
0: अगर देखा जाए, ये बहुत कम है देखा जाए, लेकिन क्या है कि मेरा जो आपका हर किसी का एक दर्शक वर्ग होता है, मेरा दर्शक वर्ग सर वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर, हालांकि वो छोटी उम्र के लड़के भी हैं जो बहुत, जैसे मैं जब छोटा था तब भी मैं उस जमाने की फिल्में, जब मैं पैदा भी नहीं
1: हाँ,
0: हुआ,
1: देखते
0: तो
1: देखते,
0: ऐसे आज भी है, आज भी है, और
1: और
0: वो जी, लेकिन लेकिन क्योंकि दर्शक वर्ग एक खास तरह का है, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें से भी ज्यादातर जो है वो, उन्हें इंटरनेट का या इन चीजों का नहीं, हाँ मोबाइल जरूर अब हाथ में आ गया तो अब
1: हाँ
0: देख
1: तो
0: लेते हैं
1: देख लेते हैं।
0: जी, लेकिन ये जो है एवरेज हर एक महीने में 400 से 500 मेरे जुड़ जाते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स,
1: हाँ, नेचुरली। तो
0: तो
1: आपके
0: ये है,
1: YouTube चैनल दो हैं या एक
0: नहीं एक ही है सर,
1: है? एक ही है, बीते हुए दिन।
0: YouTube चैनल एक ही है, और मेरे जो ब्लॉग हैं वो दो हैं, बीते हुए दिन सिनेमा से संबंधित है, मतलब सिनेमा का इतिहास से संबंधित, और जो एक है मेरा व्यंग्योपासना,
1: अच्छा,
0: वो मेरा जो है वो नॉन फिल्म, मेरी कहानियां हैं उसमें, मेरे व्यंग्य हैं, और एक आध कविता भी, गान गीत वीत भी मैंने लिखा, इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू हैं, जैसे सलमा सिद्दीकी जी का मैंने इंटरव्यू किया था, और वो
1: अच्छा,
0: बड़ा
1: समझ
0: इस
1: गया।
0: तरह का इंटरव्यू, सलमा सिद्दीकी, कृष्णचंद्र, दोनों ने विद्रोह करके शादी कर ली थी, उनके उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था, इन्होंने अपनी पत्नी बच्चों को,
1: अरे,
0: सलमा
1: कृष्णचंद्र
0: सिद्दीकी,
1: जो ऑथर थे उनकी बात कर रहे हैं
0: जी
1: आप?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: उसने सलमा सिद्दीकी से शादी कर ली थी? अरे वाह,
0: जी हाँ, तो उसका उसका नाम ही, टाइटल ही ये है कि एक आग का दरिया है ये।
1: वाह।
0: फिर ये नहीं है कि कौन सा किताब लिखी क्या लिखी, आ जाता है बीच में कहीं कहीं, लेकिन उनका वो वाला सफर कि किस तरह से उनका विरोध हुआ, किस तरह से जो भी है, किस कैसे शादी करवाई गई, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने, वो सारी चीजें हैं।
1: कृष्ण चंद्र भी गजब के ऑथर थे, मुझे भी एक किताब याद आ रही है, एक वायलेंस समंदर के किनारे मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, याद है मुझे उसके में। अच्छा तो अब करीब करीब हम बकौल अमीर सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। अब ये बताइए कि आपकी जो किताबें हैं, जैसे बीते हुए दिन आपकी एक किताब भी है, इसको क्या आप एक तरह की टाइम मशीन मानते हैं, बिल्कुल हमें अपने पिछले जमाने में ले जाती है, किस तरह से क्या देखते हैं इस किताब के बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए उसका स्वागत तो बहुत हुआ और बहुत खरीदी भी जा रही है, तो उससे यही लगता है कि इंटरनेट या आभासी दुनिया, ये जो है अपनी आभासी दुनिया ही कहेंगे ना, वर्चुअल वर्ल्ड,
1: वर्चुअल वर्ल्ड,
0: ब्लॉग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ये भले ही लोग कितना देख लें या कुछ कर लें, लेकिन जो आनंद हार्ड कॉपी में है, भले ही वो सजा के रखने के लिए भी हो, अलमारी में रख दीजिए हमारे पास, आप पढ़े भी ना कोई, लेकिन उसका एक अलग ही आनंद है,
1: अलग ही आनंद।
0: तो मुझे भी लगता है कि ये चीज ऐसी है सर, जिसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ब्लॉग की ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं, कितनी बिकेंगी, 2,000-4,000, वहां तो इतने जो है वो एक ही दिन में हो जाते हैं इतने व्यूज मेरे, पर इसका आनंद एक अलग है इन किताबों का। और मेरी दो आई है दरअसल, दो क्या चार आई है, बीते हुए दिन एक, बीते हुए दिन भाग दो, और दो हिंदी और अंग्रेजी, तो चार हो गई इस तरह से। और अब तीसरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक में जो है उसमें अभिनेत्रियां हैं, तीस अभिनेत्रियां, दो में अभिनेता पुरुष हैं, अभिनेता, और तीन में बाकी लोग हैं, संगीतकार हैं, गायक गायिकाएं हैं, तो उस तरह से जिसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ छपवाने की।
1: चलिए तो आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, लेकिन अब मेरे को बस मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ और रूटीन बातों को हटा के, शिशिर जी आपने जैसे अंग्रेजी में यू हैव डॉन्ड सो मेनी हैट्स, आपने इतनी रोल्स निभाए हैं, तरह तरह के काम किए हैं, अब इस फेज ऑफ लाइफ में अब क्या लगता है आपको कि क्या और करना बाकी है?
0: सर अब मैं कुछ वो नहीं सोचता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे संतुष्टि किसमें
1: है। वेरी गुड,
0: और मैं परम संतुष्ट हूँ अब इसमें कि मैं अपने घर के अंदर हूँ, मुझे कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है, अब इंटरव्यू भी जो है मैं फोन पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं बड़ा परम संतुष्ट हूँ, मेरा मेरी मेरी जिंदगी जो है मेरे अपने हाथ में है, मैं अपने हिसाब से है, मेरा दिन जब चाहता हूँ खाता हूँ, जब चाहता हूँ सोता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो सर ये बीते हुए दिन ने मुझे एक पहचान दी है, यूट्यूब चैनल ने भी, और इसने ब्लॉग, बल्कि ब्लॉग पे मेरा थोड़ा जोर कम है क्योंकि वो किताबों के लिए हो गया है, मैंने उसमें कई इंटरव्यूज अभी जो टाइप किए हुए हैं वो डाले भी नहीं है, अभी उन पे वीडियो बना लिए, तो यूट्यूब चैनल जो है वो काफी क्योंकि देखा जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, सर्कुलेशन काफी अच्छा है उसका, तो वो चीज है अपनी जगह सर, मैं मतलब मैं पूरी तरह से मैं और मेरे बीते हुए दिन, बस बाकी भूतकाल की बातें हो गई सर, वो सितार और बाटिक पेंटिंग और वो सारी चीजें, वो भटकाव था,
1: ठीक है ठीक,
0: लेकिन उसने ये जरूर
1: की, आपने मीडिया में अपना एक ही गाय पा लिया है, आप जिंदगी में सब कुछ जो कुछ रचनात्मक संतुष्टि जिसको कहते हैं, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो कहें, वो आपको मिल चुका है, अब जो मिल रहा है वो बस बोनस है, एक बात यही है,
0: बस ये कह सकते हैं आप, मतलब मैं आराम से अपने हिसाब से जी रहा हूँ अब, और घर से बाहर मेरा निकलना, मैं कई कई दिन हो जाते हैं सर मैं अपने नीचे नहीं उतरता बिल्डिंग से, मतलब तो फ्लैट से बाहर नहीं जाता, क्योंकि नहीं है, अगर सो रहे हैं तो
1: जरूरत नहीं है, सही बात।
0: और फिर अपना हाँ ये जरूर है कि मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो चुका है इस दौरान किताबों का, सिनेमा से संबंधित, अब और कुछ नहीं है तो मैं वो पढ़ता रहता हूँ कि भाई अब किसका छापूं, किसका लिखूं, रिसर्च में लगा रहता हूँ कि हाँ भाई फलाने जी की, अब मैं बल्कि 10 दिन हो गए मुझे, मैंने एक मायापुरी सेक्शन शुरू किया था, फिल्मों की कहानी और पात्रों का परिचय, तो 1939 की वो पुकार, 1940 की औरत, और फिर वो वही रह गया था,
1: उन पिक्चर हाँ पे लिख रहे हैं आप तो भाई।
0: अब मैं कर रहा हूँ सिकंदर, सिकंदर अब 41 की उस पे कर रहा हूँ काम। तो सर वो बहुत बहुत काम हो जाता है सर, बहुत काम हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हो
1: सिकंदर क्या वो सौरभ मोदी वाली पिक्चर है क्या ये?
0: सौरभ मोदी वाली 1941 की सिकंदर।
1: ओके वही वो तो बहुत बहुत मास्टरपीस मानते हैं उसको हम।
0: हाँ जी हाँ।
1: चलिए तो शर्मा जी आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी, ये एक खूबसूरत यात्रा थी, नवादा से मुंबई तक की, बैंक की फाइलों से सिनेमा की रील तक की, और बीते हुए दिनों से आज के डिजिटल दौर तक की। आपके अनुभवों में अनुशासन भी है, संवेदना भी, इतिहास की गहराई भी और भविष्य की दिशा भी। आज की बातचीत से एहसास और मजबूत हुआ है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, वह हमारी स्मृतियों और समय का दस्तावेज भी है। हम खुद को सचमुच सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आप जैसे बहुआयामी और समर्पित व्यक्तित्व से इतनी आत्मीय बातचीत का अवसर मिला। श्री कृष्ण जी शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आने, अपने अनमोल अनुभव साझा करने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद आलोक जी और समीर जी और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम।
1: तो श्रोताओं इसके साथ हमें आज के कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई आवाज के साथ। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: मंगल पांडे।
2: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी। कहानी जय है बड़ी पुरानी, मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभक्त था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जय कहानी।
3: दादी जी,
4: अरे

0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे।
1: ओह,
0: अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
2: ओह,
0: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
1: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: ओह, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
1: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जाती।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे।
2: ओह।

0: इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
1: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
0: दादी फिर क्या हुआ?
2: फिर
0: दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
1: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
3: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
4: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
8: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
3: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
6: अरेस्ट करो,
1: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
3: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: 咁反击佢 ，Tico na manta hai， durant hospital pejo。
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ, माँ।
3: लो, देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यहीं ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यहीं टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
3: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
6: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
7: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
6: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
7: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
3: अरे
7: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
3: क्या हुआ? ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
6: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
6: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो,
4: मुझे मत मारो।
3: कुछ मत करो।
4: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
6: जल्दी।
4: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
7: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
4: अरे मेरे पास छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
6: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
7: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
4: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: हाँ।
3: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
3: हेलो।
6: हाँ बेटा बोलो।
3: पापा। पापा।
6: हाँ बोलो
3: बेटा। जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
6: कौन घुसा है?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है? ठीक है।
3: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
6: घर में चोर घुसाएगा।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
8: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था।

0: मैं तो डरी गई थी।
1: ऐसे बच्चे होने चाहिए, देखो ना सबकी जान
0: बच गई। बहादुर है मेरी बच्ची।
2: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: उसे रुलाएगा, आंखों में आंसू लाएगा। भालू कचालू को ये डर था।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
3: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
2: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोइनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा का।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुख की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुख।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ, ये देखिए।
0: हाँ,
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए।
0: हाँ,
1: अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर।
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूँ।
1: तो फिर ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: चुप्पन, अरे ओ चुप्पन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो चुप्पन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग। इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बाबत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले आ।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग
0: जी,
1: आप जब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे, पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर। युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
1: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा,
0: जाती
1: नहीं तो ठंड लग जाएगी।
0: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो।
1: माँ
0: माँ वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
1: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
2: हेलो, कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
0: माँ जाती हूँ।
3: इधर से आइए जी।
4: जी हाँ, आइए आइए
5: जी।
4: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
5: नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: बोधा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
1: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
4: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
1: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है, ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ उसकी निगरानी में बने हैं।
4: हाँ हाँ याद आया,
1: वो भी यहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आप स्वयं बात कर लीजिए।
4: हाँ हाँ ठीक है, बुला ला।
5: आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं?
4: हाँ इरादा तो है, अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं, अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
5: जी
1: आओ बेटा।
4: जी
1: ये मेरे पति हैं, व्यापारी शिमुख।
6: नमस्कार।
4: प्रसन्न रहो। अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
6: जी सब मातृ देवी की कृपा है।
4: अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
6: जी
4: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
6: जी
4: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
6: जी
4: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है, ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
0: और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
4: लो भाई हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है।
6: जी मैं समझ गया, काम कब से शुरू करना है?
4: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
6: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्कार।
4: नमस्कार,
1: नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया।
4: अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, भाई उदंग ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग।
5: नमस्कार।
1: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
5: हाँ ये तो ठीक ही सुना है आपने,
1: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
5: नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है, ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
1: ओह।
5: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
1: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
5: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते, हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
1: अच्छा।
5: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं, फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सकें।
1: और क्या क्या है आपके लोथल में?
4: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
5: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
7: जरा सुनिए,
4: क्या बात है?
2: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे नहीं?
4: हाँ हाँ, लेकिन उदंक।
2: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं। चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
4: अच्छा बोधा।
1: जी पिताजी।
4: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
1: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
5: हाँ चलिए।
1: अच्छा लोथल में तो बहुत कुछ है।
5: साफ सुथरा रखते हैं।
1: अच्छा तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
5: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
1: अच्छा।
5: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
1: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
5: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
1: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
5: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
1: लेकिन वो तो बस ऐसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
5: ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
1: क्या मालूम।
4: बोधा, अरे बोधा तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
5: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
4: अच्छा अच्छा, आप मातृ देवी के दर्शन करना चाहते हो तो चले।
5: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप।
4: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
5: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
4: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
1: पिताजी,
4: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
5: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
4: फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
5: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए मुझे ही लीजिए।
4: हाँ?
5: मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी के तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
4: यानी आप विवाहित नहीं है?
5: नहीं।
4: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
5: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
4: अच्छा अच्छा
5: जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से।
4: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं?
5: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
4: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
1: पिताजी।
4: अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो।
1: क्या बात है?
4: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
2: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
4: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
2: क्या सच? क्यों बोधा?
4: लगता है बोधा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है।
2: मातृ देवी की कृपा है। चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा।
1: चलो माँ।
2: आओ बेटा, आइए।

कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, भगतराव आदि प्रमुख हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहाँ गोदी थी, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहाँ ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था। उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था, जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके। इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में

सुमेर सभ्यता पनप रही थी। खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिलमन को आज का बाहर

चालू ने मिलाया हाथ, दोनों दोस्त बने खेलने लगे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत।

0: ये है मुझे परेशान करने की सजा।
1: माँ के आते ही गया दोनों का ध्यान भटक।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के नाते मुझे आप ही दो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
0: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया।
0: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।

0: હું છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ
2: ખેતીવાડી,
0: આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના સમય પર હાજર થતો રહું છે. આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે કૃષિમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતીની વાતો. તો કિસાન ભાઈઓ, જેવી રીતે હાવ જગ્યા જગ્યા પર ફૂલનો ઘણો ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો છે અને મંદિરોમાં, કાર્યક્રમોમાં અને વિવાહમાં પણ ફૂલની ઘણી માંગ રહેશે. તો કિસાન ભાઈઓ, એ એક નગદી ફસલ છે અને એની ખેતી કરીને આપણે ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ શકીએ. કેવી રીતે કમાઈ શકીએ એ બધી વાતો આપો સાંભળવાના છે કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકો દેખી. હાથે હાથ એક એવા કિસાન ભાઈ દેખી જ્યાં ગેંદાની ખેતી કરીને ઘણો અસલ અને મોટો લાભ કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર ની કરી અને હા મળી કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતી.
3: हमारे देश में गेंदे के फूल की एक अलग ही जगह है. जी हाँ, धार्मिक कामों की बात हो या फिर सामाजिक अवसरों की बात हो, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है. ये बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है. और साथ ही बता दें, इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक तरोताजा बना रहता है. और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है. इसकी खेती का स्तर काफी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में. तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे. आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यवसायिक खेती के बारे में. गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है. और बता दें आपको कि 12 मासी इसकी खेती की जा सकती है. ऐसे में किसान अगर इसकी व्यवसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं. तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें.
4: भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है. धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है. भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है. गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है. कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है. गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं. इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसकी खेती इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं. बात करें इसकी उत्पत्ति की तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मैक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया. आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है.
3: मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं. पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है. साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं. आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं.
4: अपने औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है. आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है. मोचाने पर सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं. इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है.
5: गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में
2: उपयोग किया जाता है काफी तौर पे, और इसको मुख्य तौर पे माला बनाने में काम में लिया जाता है, मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। और अगर इसकी आजकल देखे जाएंगे तो गेंदे के पुष्पों से गुलाल बनाने की विधि भी स्टैंडर्डाइज की जा रही है। और आप देखेंगे ये जो है गेंदा, इसमें एक और मुख्य तौर पे मैं बताना चाहूंगी, ये कैरोटीनॉइड रिच होता है, इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है। तो इसको मुर्गी आहार में मिलाया जाता है और इसकी अंडे का जो पीलापन होता है, एग योक बोलते हैं, उसका पीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग यह है कि ल्यूटिन को कहते हैं कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम में मदद करता है, जिससे और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, तो उससे बचाता है।
3: चाहे फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यावसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं।
4: गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बड़बार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं, और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं।
2: जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर एक पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में, लगभग 5-6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मेक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है, उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो चुका है। और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफी इसका प्रचलन हो रहा है।
4: गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव, जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवंबर दिसंबर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए।
2: इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है। और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में, और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है।
4: गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई

0: डिस्टेंस होता है, जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते थे, और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पुक्सा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा।
1: कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है।
2: इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आप सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में ये अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल

0: करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फास्फोरस लगता है। और इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए।
1: किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
2: गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है।
0: इसमें दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा, जिसको जाफरी भी कहा जाता है, वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है।
2: वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कोच आते हैं।
0: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि, और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक है, वहाँ से भी वैरायटीज निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहाँ हरियाणा में यहाँ से 2 वैरायटीज निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी।
1: गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
2: रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रुपाई के 60 पर गेंदा में फूल आता है, जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए।
0: गेंदे में शीर्ष नोचन भी किया जाता है, चिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे ही किया जाता है, क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। अगर शीर्षनोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी आंतरिक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है, जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षनोचन की क्रिया को करते हैं, उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, और इसमें हम 4 से 5 बाई तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पे निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड जाती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर।
1: फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है।
2: अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है, जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक चूर्णी फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़ कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें।
0: अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीजन में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफी ज्यादा आते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोस्टॉक रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे देश की सरकार और साथ ही कृषि विभाग नित नए प्रयास करते रहते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और समय समय पर हमारे किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसके बारे में भी आपको जागरूक करते हैं।
1: समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बंपर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहा है। गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है, जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी देने वाली फसल है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों को फूलों की खेती में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। सरकार किसानों को गेंदे की खेती करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
2: किसान भाइयों, हमारी जो जनपद में योजना संचालित है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत जो फूलों की खेती करके किसान भाई एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसानों को गेंदा, गुलाब इत्यादि फूलों की जो खेती है करते हैं उनको 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते हैं। साथ साथ ही जो इनपुट लगता है एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर, इसको भी हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई गेंदा या फूलों की खेती करके जो हमारी खेती है उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो फूलों की डिमांड है जो वर्ष भर बनी रहती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ही जो किसान भाई कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें प्लांट टू प्लांट दूरी ज़्यादा है, तो उसमें इंटरकल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने के बीच में जो जगह है उसमें इंटरकल्टीवेशन भी करके, एक तो सबसे बड़ी बात है गेंदा करने से क्या होता है, हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपए रेट है, तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृहत स्तर पर करेंगे, तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है। अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर किस हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें, और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-68-35-90-89।
0: उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी।
1: वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गांव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के हवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है।
3: मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पे अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो दो तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो हमें इसमें 20,000 रुपये की लागत आई 2 एकड़ खेत में हमारे। उसके बाद 3 महीने में हमारी फसल तैयार हुई और उसमें हमें मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का। तब से हम साहब गेंदा कर रहे हैं।
1: मान सिंह बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सफल किसान हैं। इन्होंने 3 एकड़ खेत में गेंदे की फसल तैयार की जिसमें इन्हें 30,000 की लागत लगी। इन्होंने कड़ी मेहनत कर गेंदे की खेती में सफलता हासिल की है। गेंदे की फसल से लाभ होता देख अब मान सिंह परंपरागत खेती करना छोड़ केवल गेंदे की खेती ही करने लगे हैं। अपने खेत में प्राप्त उपज को बरेली के मंडी में जाकर अच्छे दामों पर उसे बेचते हैं। इनके अनुसार गेंदे की क्वालिटी के आधार पर बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है।
4: पहले गेहूं धान कर रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूं, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूं धान बोई 1000 रुपए 900 रुपए क्विंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूं था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं, इससे ज्यादा गेहूं से ज्यादा मार्जिन, धान से ज्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्या जो है हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इन्होंने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। एक एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में, मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग मान लो एक एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा, और 30 से 35 हजार की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी खाद पानी दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज्यादा कर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मंदिर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है।
1: अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सह फसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
5: आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। 6 डिग्री के आसपास आपको रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10-12 दिन तक चल सकता है।
1: गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हों तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
5: जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसको इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं।
0: तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सह फसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है, और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यावसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे।
6: तो किसान भाइयों, हमने अपनी बात थाम ली, गल रसिया न फूल नी खेती नी वाती हो, एतरे गेंदा न फूल नी खेती नी वाती हो। इनो फूल नो हार बने से अने हार नी बाजार मा घनी मांग से। किसान भाइयों, आज ना समय मा आपु को समय पर अगर फूल नी माला लेवा जाई तो आपु समय पर माला नी मले, केम की इनी मांग घनी ज्यादा बढ़ी गई से। जगह जगह पर हाव फूल हार नो उपयोग था मंडी गयो से किसान भाइयों, अने आज ना तारीख मा इनी बाजार मा तो मांग से, अने बीजा बीजा क्षेत्रों मा पण इनी अलग अलग मांग रहे से। तो किसान भाइयों, आप ये जानियो कि गलरसियानी खेती तकनीकी तरीका देखी केवी रीते करी सकी अने केवी रीतने दवा पानी लागे, ये बड़ी बात आज हम तुम्हारी बस मालीन आया। किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामली हाव आधुनिक तकनीकी देखी दूध डेरीनी व्यवसाय केवी रीते करी सकी अने इनामा आपड़ा किसान भाई केवी रीते अगाड़ी बढ़ी सके, ये बात आपो हामली।
7: आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक अत्याधुनिक डेयरी फार्म में, जिसे स्थापित किया है एक बेहद ही होनहार युवा उद्यमी ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की है, उच्च शिक्षा हासिल की है, MBA किया है और साथ ही लंदन से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने चुना अपने करियर के लिए डेयरी फार्म को। ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को नहीं होगी जो ये जानते हैं कि आज की तारीख में डेयरी क्षेत्र भारत में एक उभरता हुआ क्षेत्र है। क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन वहीं यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। ऐसे में दूध और डेयरी उत्पादों के लिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में हमारे आज के युवा पशुपालक किस तरह से डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजना का लाभ लेते हुए आप भी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।
8: भारत के सीने में आज भी ग्रामीण संस्कृति धड़कती है और ग्रामीण संस्कृति के सीने में धड़कती है कृषि पशुपालन। खेती और पशुओं से इंसानों का नाता सदियों पुराना है, करीब 13,000 साल ईसा पूर्व का। यही वो दौर था जब जानवरों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। आज भी ये व्यवसाय खूब फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है। 20वीं पशुगणना बताती है कि भारत में अलग अलग जातियों के 85 करोड़ से भी अधिक पशु हैं। इनमें दुधारू गाय और भैंसों की संख्या 13 करोड़ 63 लाख से ऊपर है। अगर सिर्फ गायों की बात करें तो आंकड़ा 8 करोड़ 13 लाख है और यहाँ के 3.48% लोग पशु उत्पादन के काम में लगे हैं। 1951 के दौरान भारत में दूध उत्पादन करीब 1 करोड़ 70 लाख टन था, जो 2013-14 में करीब 14.25 करोड़ टन हो गया। आज हम सालाना 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इस उत्पादन में गायों का योगदान 52% है, बाकी 48% में 45% भैंसों का और 3% हिस्सा बकरियों का है। आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी वृद्धि दर 6% से भी अधिक है। यही वजह है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% तक चला गया है। ये आंकड़े हमारे देश को दूध के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा देते हैं। ज्यादा उत्पादन की वजह से ही हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। 1950-51 में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता महज 130 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 444 ग्राम हो गई है। इसका मतलब हुआ कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से भी ऊपर है। दूध हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आप शहरों में रह रहे हो या गांवों में, सफेद रंग के इस द्रव की जरूरत हर जगह है, हर किसी को है। यही जरूरत दूध उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं की नई उम्मीदें जगाती है और इन्हीं उम्मीदों को दूहने के लिए पशुपालकों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है। इस वर्ग में युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। जिनके पास संसाधनों की कमी है वो सामान्य तरीकों से काम चला रहे हैं और जिनके पास संसाधन है उनकी दिलचस्पी हाईटेक विधियों में है। अब यहाँ से एक सवाल जन्म लेता है कि आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई इंसान पशुपालन जैसे व्यवसाय को भला क्यों अपनाना चाहेगा। ऐसे ही सवालों को लेकर हम नोएडा के एक डेयरी फार्म जा पहुँचे। ये अत्याधुनिक फार्म लंदन से लौटे एक नौजवान दुष्यंत भाटी का है। वो MBA करने के लिए 7 समंदर पार गए थे। डेयरी फार्म का आइडिया वहीं से आया।
7: डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बहुत से युवा आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल डेयरी उद्यमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, दुष्यंत भाटी जी। आइए उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर जानते हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में जब हमने जाना तो बहुत ही खास बात ये हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी आप उच्च शिक्षा हासिल करके आए हैं, लंदन में आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद कैसे ख्याल आया कि डेयरी क्षेत्र से जुड़ा जाए और इसे एक उद्यम की तरह शुरू किया जाए।
9: जी मैम नमस्कार, आज हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया, एजुकेशन मेरी बेसिक जो प्राइमरी हुई है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इंडिया में अपने अंडर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी लंदन से MBA से। तो वहाँ पर मैंने जितना भी अपने जितने डेयरी फार्म्स थे, जो इस तरीके के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज थी, मैंने उनको स्टडी किया। उसके बाद मैंने देखा करके कि भाई अपने इंडिया में भी इस तरीके का एक लेवल हमें लाना चाहिए।
8: दुष्यंत ने लंदन में डेयरी फार्म की स्टडी जरूर की थी, लेकिन एक MBA छात्र के लिए ये नया क्षेत्र था। यही वजह है कि डेयरी फार्म को इन्होंने भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनाया, प्राथमिकता डेवलपर बनने की रखी, फिर इनका मन बदल गया और भविष्य की योजना वर्तमान बन गई। इन्होंने काम शुरू करने से पहले NDRI करनाल से प्रशिक्षण लिया, कुछ डेयरी कंपनियों के मैनेजरों के साथ वक्त बिताया और पंजाब के किसानों से मुलाकात की।
9: जितनी लैंड की अपनी स्कैर्सिटी आ रही है उसको देखते हुए कि भाई नंबर ऑफ जो लार्ज फार्म्स हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हम लोग आगे जितने भी मिल्क एंड मिल प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करेंगे मार्केट में।
8: इस फार्म में फिलहाल 100 से भी अधिक गायें हैं। आज से 5 साल पहले इसे महज 6 गायों के साथ शुरू किया गया था। हष्ट पुष्ट शरीर और दूध से लबालब भरे थन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ काफी मेहनत की गई है और गायों का बहुत ख्याल रखा गया है।
7: अत्याधुनिक तकनीक से डेयरी फार्म स्थापित करने के बाद भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे में दुष्यंत भाटी जी किस तरह से अपने फार्म में पशुओं के स्वास्थ्य और उनके आहार का ध्यान रखते हैं?
8: यहाँ पर गाय पूरी तरह आजाद है। फार्म में ना तो आपको खूंटा नजर आएगा ना गायों के गले में रस्सी। इनका जब मन करेगा खाना खाएंगी, जब मन करेगा पानी पिएंगी। गाय सफाई को पसंद करती है, इसलिए फार्म में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो शावर और पंखे चल रहे हैं। अक्टूबर में इन्हें बंद करना होगा और सर्दियां आने पर गौशाला में पर्दे लटकाने होंगे। दुष्यंत का मानना है कि बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी चाहिए।
9: गले के टैग्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है कि उनका डेटा हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि उनका मास्टिकेशन कितना है, मास्टिकेशन मींस जुगाली कितनी है और दूध कितना दिया उन्होंने, उनका टेम्परेचर लेवल क्या है, उनकी मूवमेंट कितनी हुई है, कितनी देर उन्होंने फूड का इंटेक किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो हमें कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं, जिससे कि हमें डेटा प्रोवाइड होता है कि हम देख सकें कि भाई गाय को कितना उसने पूरे दिन में अपनी मूवमेंट करी है, कितना हैबिट्स में खाना खाया है, और उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना हमें दूध उसने प्रोड्यूस करके दिया है। और उसी के साथ लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सारा, जिसमें कि गाय को बांधा नहीं जाता है और उसमें उसको खाना 24 घंटे के लिए दिया जाता है। 2 बार हम लोग फीडिंग करते हैं, मिल्क अनलिमिटेड, वाटर अनलिमिटेड है।
8: हर गाय के आहार की गणना की जाती है, उसके खान पान का निर्धारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, वो किस स्टेज में है और दूध कितना दे रही है। हर 15वें दिन डाइट चार्ट बदल दिया जाता है।
7: आपसे मैं पशु के आहार के बारे में और विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस किस तरह का आहार आप उनको देते हैं और क्या उसमें भी मौसम के अनुसार तब्दीली करते हैं?
9: जो आहार बनता है पशु का वो 4 चीजों से बनता है, जिसमें कि हम लोग हरा चारा लेते हैं, भूस लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड डाइट होती है और साइलेज हम लोग प्राइमरी इन 4 चीजों पे रखते हैं, बाकी एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह और होते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द काउ। तो उसके अंदर भी हम मेंटेन करते हैं कि भाई कितना साइलेज देना है, कितना भूस देना है, कितनी फीड देनी है, फीड की जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एज पर द मौसम चेंज करते रहते हैं।
8: कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से पशुओं को चारा मिलता है और पशुओं से फसलों को खाद। दुष्यंत के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है, मगर इतनी भी नहीं कि 100 गायों का पेट भर सके। चारे के लिए उन्हें दूसरे किसानों से संपर्क करना होता है। इस तरह उनका डेयरी फार्म आसपास के किसानों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है।
9: हरा चारा हम लोग किसानों से उगवा लेते हैं, अपने पास भी जमीन है उसमें भी हम उगवाते हैं, और मक्का हम लोग बाहर से प्रिक्योर करते हैं। तो इस तरीके के इनके अलग अलग डाइट्स होती हैं जो हम मौसम के हिसाब से उससे फीड बनवाते हैं। कुछ बाहर की कंपनीज हैं उनसे भी ले लेते हैं, हम लोग अपना भी फीड प्लांट हमारा लगा हुआ है, हम उसे भी बनाते हैं और उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द काउ उसके साथ हम लोग जितने भी तरीके के 28 तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें फीड में डाल के उसको फीड को तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग इन गायों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो फीड डालते हैं, उसके साथ ही पूरा TMR मेंटेन करते हैं। TMR वो चीज़ है जो टोटल मिक्स राशन है, जिसमें कि पूरा एक बैलेंस डाइट दी जाती है थ्रू आउट द ईयर एज पर द वेदर। उसमें ये जितना भी हमें कंसंट्रेशन डालना है, कितना हमें विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। जो अपनी देसी पदार्थ हैं जैसे हल्दी है, सतावरी है, वो भी हम समय समय पर डालते हैं। जैसे कोई गाय ग्याबन है उसके साथ हम लोग उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, वो इस तरीके के जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
8: दुष्यंत MBA है, इसलिए वो खुद ही मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं और कांच की बोतलों में दूध पैक करके बेच रहे हैं। दूध के अलावा दही, पनीर, घी, छाछ और मावा सब कुछ यहाँ बनता है।
7: इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हमें बताएं कि दूध तो है सबसे प्राथमिक जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो मिलता है हमें, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके?
9: दूध के साथ हम लोगों ने फिर पनीर बनाया, फिर घी बनाया और अब हम लोग स्वीट्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है लास्ट ईयर, और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क एंड घी, पनीर, बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं बाय नेक्स्ट ऑफ द मंथ।
8: शुरुआत से ही ये डेयरी फार्म अच्छा कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी के समय बिजनेस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से पटरी पर लौट आया है। अच्छी कमाई की वजह से ही दुष्यंत दूसरे किसानों और नौजवानों को भी डेयरी फार्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 40 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं और उन्हें डेयरी फार्म विकसित करने के तरीके बता रहे हैं।
7: कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए डेयरी फार्म से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
1: दुष्यंत के पिता हरीशचंद भाटी अपने इलाके का जाना माना नाम है। खेती और पशुपालन इनका पुश्तैनी काम रहा है। उनका कहना है कि बेटे को बड़ा आदमी बनना था, इसलिए MBA के बाद नौकरी की बजाय खुद का कारोबार विकसित किया।
0: दुष्यंत भाटी जी की सफलता के बारे में क्या विचार है उनके पिताजी श्री हरीशचंद भाटी जी का, ये उन्हीं से जानते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो हरीशचंद जी, आप अपने क्षेत्र में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और आपके सुपुत्र ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, विदेश में पढ़कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने डेयरी फार्मिंग को चुना। उनकी सफलता को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, जैसे कहावत है कि पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं, तो ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जो एजुकेशन है वो पहले नोएडा में हुई और फिर अमेठी में हुई, फिर ये इंग्लैंड चला गया और इसने वहाँ जाकर के फिर अपने को एक्सपोज किया और फिर मार्केटिंग में और दूसरी क्षेत्रों में इसने बड़ी संभावनाएं संभाली। और जब ये वहाँ से लौटे तब से 6 वर्ष पहले, तब हमने इसको ऑफर दिया था कि भाई आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इसने मना किया और कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो हम लोग किसान लोग हैं गुर्जर जाति से, तो हमारे यहाँ बिजनेस में एक रिस्क होता है और वो लेने के लिए गांव के बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसने कहा कि मुझे बिजनेस करना, तो मैंने कहा कि भाई उसमें आपको क्या संभावना लगती है और नौकरी आप प्रेफर नहीं कर रहे तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा कि नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, बड़ा आदमी बनना है तो आप बड़ा आदमी बन जाइए। तो हमारी कुछ लैंड थी कासना में भी और जहाँ ये खड़े हैं यहाँ भी 60-70 बीघा ज़मीन है। तो हमने इनको कहा कि आप इसमें जो NCR के काम हैं बिल्डर्स लाइन वगैरह के, उसमें आप जाके देखिए। तो इसने स्टडी कराया तो इसका मन बिल्डिंग लाइन में, मकान बनाने में या फ्लैट बनाने में नहीं लगा। फिर ये नेचुरली जो हम लोगों के फोर फादर्स भी करते आए हैं, दूध का काम और इस तरह का काम जो है गाय का भैंस का, तो वो हम लोगों का पुश्तैनी काम था। तो फिर इसने एक उत्तर प्रदेश सरकार के की एक स्कीम थी काम धेनु, और उसमें 1 करोड़ 30 लाख लेके और 1 करोड़ बैंक से 30 करोड़ अपना लगा करके इनिशियली उसको छोटे से रूप में 6 साल पहले पूरा किया। लेकिन क्योंकि फिर इसका माइंड बहुत फर्टाइल था तो वो बहुत छोटी चीज़ हो गई। फिर इसने इसको ऑटोमेटिक प्लांट में कन्वर्ट किया और फिर इसने एक रिसर्च की डेनमार्क में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस कारोबार के बारे में, फिर पंजाब में स्टडी किया और फिर ये मुश्किल मिजाज से ही इसको लगा कि यहाँ काम करना चाहिए, तब इसने इसका काम शुरू कराया और फिर इसको ऑटोमेटिक बनाया। अब ये एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है और जो नोएडा गेटर नोएडा में बोटलिंग से अभी तक वो दूध देता है और इसने एक लाइसेंस भी वर्ल्ड लेवल का ले लिया है, जिससे इसका घी भी अब दुनिया में जाएगा।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। एक उद्योग के रूप में ये 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर या तो छोटे और सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन तबका।
0: डेयरी व्यवसाय का प्राथमिक उत्पाद दूध है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई तरह के डेयरी उत्पाद हैं जिनकी बाजार में बहुत ही अच्छी मांग रहती है। तो आइए जानते हैं कि दूध और इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में किस तरह के विकल्प और किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं।
1: दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादों को बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे आगे है। हमारा देश बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है, खासकर मक्खन, ऑयल, पाउडर के रूप में दूध और क्रीम, घी, लस्सी, पनीर, स्किम दूध पाउडर और पूर्ण दूध का निर्यात कई देशों में हो रहा है। 2022-23 के दौरान भारत से 67,573 टन डेयरी उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनसे 2,27,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
0: डेयरी व्यवसाय पारंपरिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तारीख में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
1: राष्ट्रीय डेयरी योजना के विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के कारण डेयरी फार्मिंग का बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इस क्षेत्र को अच्छा प्रोत्साहन मिला है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। पशुओं की उत्पादकता और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पशु आबादी के कानों में टैगिंग की जा रही है, ताकि पशुओं की बीमारियों का पता लगाने, निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।
3: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजना है खास तौर पर जो चलाई जा रही है, जिसका जो पशुपालक है वो लाभ ले सकते हैं, जो डेयरी उद्यम से जुड़ना चाहते हैं।
2: धन्यवाद मैडम। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म जो लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारतीय ब्रीड्स हैं, भारतीय नस्लें जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनका संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,01,00,000 रुपया का है। इसके लिए आप nddb.coop की साइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इसमें लगभग 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको 200 भारतीय नस्ल के पशु पालने होंगे, जिसमें कि प्रत्येक साल आपको ये मानते हुए कि 50% जानवर आपके गाभिन हो जाएंगे, तो उनसे हम अगर मोर्टेलिटी रेट निकाल भी दें तब भी 90 बछिया आपके पास मौजूद रहेंगी। उन 90 बछियाओं को आपको सेल आउट कर इसके फार्म को आगे बढ़ाना है। ये योजना की सब्सिडी आपको प्रत्येक 4 चरण में, जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे, उसी दशा में आपको 50-50 लाख रुपए की कर 4 बार में आपको योजना की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कर दी जाएगी।
1: बेहतर डेयरी कारोबार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहला है अच्छी नस्ल के सांड से गर्भाधान, दूसरा है आहार, तीसरा साफ सफाई, रोग प्रबंधन और टीकाकरण, और चौथा है पेट के कीड़ों की दवा दिलाना।
3: डॉक्टर विपिन, डेयरी उद्योग जो है इसमें भी कई तरह की नई तकनीकें अब आ गई है, खासतौर पर अगर नस्ल सुधार की बात करें या फिर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं और हैं जिनका लाभ ले सकते हैं पशुपालक?
2: जो मेन तकनीक या अभी हमारे सामने जो निराश्रित गौवंश की समस्या आ रही है, उसके निदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसका लगातार हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे पास वर्गीकृत वीर, जिसको कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन कहते हैं, उसके द्वारा हम अब पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की योजना का संचालन कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि इसकी अगर हम मार्केट कॉस्ट देखें तो लगभग 1,250 रुपये थी, लेकिन विगत वर्ष तक सरकारी लेवी इसकी जो थी वो 300 रुपया ली जा रही थी, लेकिन कृषक भाइयों को और पशुपालक भाइयों को सुविधा देने के लिए इस कृत्रिम गर्भाधान की शुल्क केवल 100 रुपये कर दी गई है। इसमें ये एश्योर्ड है कि आप जो भी जानवर कराएंगे उसमें 90% तक केवल फीमेल काफ ही बॉर्न होगा। जब फीमेल काफ बॉर्न होगा तो मेल काफ की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि मैकेनाइज युग में ट्रैक्टर वगैरह का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मेल काफ की उपयोगिता काफी कम हो चुकी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सालय है उस पर आप जाकर वर्गीकृत वीर से अपने जो भी, अभी हमारे पास केवल गौवंशीय पशुओं का वर्गीकृत वीर उपलब्ध है, बहुत ही जल्दी महीष वंशियों का भी वर्गीकृत वीर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर आगे भी कार्य कर रही है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, जो कि अभी हमारे पास लैब में है, लैब टू लैंड तक आने में उसको थोड़ा सा समय है, लेकिन आगे हम उस तकनीक का भी प्रयोग फील्ड में करेंगे।
1: 70 के दशक में हमारा देश दूध की कमी से जूझ रहा था। प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता घटकर 107 ग्राम रह गई थी। तब देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डेयरी क्षेत्र की जो सफलता आज हम देख रहे हैं उसमें इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में कोशिशें हो रही है। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अलग से डॉक्टर कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाता है।
0: आज के कृषि के कार्यक्रम में कि किस तरह से आज के युवा डेयरी क्षेत्र से बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
4: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई वात हामली गेंदा ना फूल नी खेती नी वातियो अने कार्यक्रम नी बीजी कड़ी में आधुनिक तरीका देखी दूध उत्पादन नी वातियो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा अने खेतीवाड़ी नी समस्याओ अने तीना समाधान नी वातियो पन लावी से अने नवी नवी खेती नी तकनीकी वातियो पन लावी से। किसान भाइयों, हमू आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातियों हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी ना क्षेत्र में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू बस एतरी वात, केम की हाल समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कई था, हामलता रेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाथे।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है फिल्मों की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, किसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलना किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बेहद खास उपलब्धि होती है। लेकिन जब कोई फिल्म एक रीजनल लैंग्वेज, एक लोक संस्कृति और एक पूरे प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाती है, तो वह सम्मान सिर्फ एक फिल्म मेकर का नहीं, पूरे फिल्म जगत का हो जाता है। वह उस भाषा, उस संस्कृति और उस मिट्टी का भी सम्मान मिल जाता है। हाल ही में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में गढ़वाली फिल्म ढोली को बेस्ट गढ़वाली फिल्म के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल से सम्मानित किया गया है और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिनेश पी भोसले हैं। लेकिन दिनेश भोसले की कहानी सिर्फ ढोली की कहानी नहीं है। गोवा से शुरू हुआ उनका सफर थिएटर और ऑडियो विजुअल वर्क से होते हुए फिल्म मेकिंग तक पहुंचा। उन्होंने रेनाउंड फिल्म एडिटर वामन भोसले के साथ काम किया, FTII पुणे में सिनेमा को समझने की कोशिश की और मरमंद, कैलापोर, एनिमी और अमोरी जैसी फिल्मों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। और दिलचस्प बात यह है कि ढोली उनका पहला नेशनल अवार्ड नहीं है, उनकी पिछली फिल्मों को भी नेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो सवाल कई है, एक फिल्म मेकर आखिर गढ़वाली फिल्म बनाने उत्तराखंड क्यों पहुंचता है? ढोली की कहानी क्या है? क्या उन्हें पहले से विश्वास था कि फिल्म नेशनल अवार्ड तक पहुंचेगी? और एक रीजनल फिल्म मेकर के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, राइटर एंड डायरेक्टर श्री दिनेश पी भोसले। दिनेश जी, रेडियो SN पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से आपको और ढोली की पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई।
2: धन्यवाद आलोक जी, मेरा सब श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते।
1: तो चलिए दिनेश जी, शुरुआत करते हैं बातचीत की। आपसे तो एक गुफ्तगु होगी, वो भी आपकी प्रिय सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं ही बहुत ज्यादा बहुत खुश हूं, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले तो ये बताइए दिनेश जी कि ये सवाल आपसे कई बार पूछा भी जाता होगा कि जब नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई तो आपने अपना नाम ढोली के साथ सुना होगा, तो उस मोमेंट या उस लम्हे में आपको कैसा लगा, क्या आपके रिस्पॉन्स रहा था?
2: मैं जब ये टीवी पे देखा, सुना, तो मुझे मेरा इमोशन से ज्यादा ये था कि मेरे जो बाकी लोग थे, जैसे मेरे जो टीममेट्स थे ये फिल्म के, उनका इमोशंस के बारे में ज्यादा ये था, क्योंकि मैंने दो बार फिल्म में लिया था नेशनल, तो मेरा उतना बड़ा इमोशंस बहुत बढ़ के आना नहीं था। तो मुझे बहुत कंसिडरेट करना था कि मुझे मेरी जो ढोली टीम है, जो जिसके मेंबर्स गढ़वाल में या उत्तराखंड में है, उनके बारे में मुझे ज्यादा सोचा आ रहा है कि उनका इमोशंस क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो मुझे ज्यादा ये हो रहा था और वो मुझे ज्यादा जानना था, तो वो मैं देख रहा था कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे।
1: बहुत सुंदर बात है, इसका मतलब है आपको अपनी जो टीम है या जो उत्तराखंड में जिनके साथ आपने शूटिंग वगैरह की थी, उनका ख्याल आपके दिमाग में आया था, उनको कितनी खुशी हो रही होगी। वाह, क्या जवाब है आपका, यू आर ए टीम मैन सर।
2: थैंक यू।
1: तो नेशनल अवार्ड जैसे रिकग्निशन उम्मीद किसी न किसी फिल्म मेकर को कहीं ना कहीं जरूर होता है। आपको क्या शुरू में जब ये फिल्म आप बना रहे थे या जब रिलीज होने वाली थी तो आपको कुछ कहीं से दिमाग के अंदर कहीं ये बात थी कि भाई इसको नेशनल अवार्ड मिल सकता है या पूरी तरह इट वॉज अनएक्सपेक्टेड?
2: नहीं नहीं अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से हम फिल्म बना रहे थे और जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, पूरा स्क्रिप्ट से लेके डिटेलिंग किया था और कैसे करना है और प्रॉपर प्रोफेशनली हमने किया था, टेक्निकली वेरी साउंड फिल्म, और जिस हिसाब से वो मींस माउंटेन टेरेन पे जाके शूट करना बहुत मुश्किल है, पर वो जो वहां जाके हमने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और बाकी लोगों को ट्रेन करके और जितना हमने कोशिश की थी ना और जितना हमने इसको इसके लिए जो तकलीफें ली थी, और हमने ये फिल्म ना एट पार विथ एनी अदर फिल्म हमने फिल्म बनाई थी, तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये नेशनल अवार्ड जीतेगी करके, पर मैं किसी को बताया नहीं था।
1: अच्छा अच्छा ये बात जोरदार है। हाँ मतलब आपके हिसाब से इट इज ये एट पार पिक्चर किसी भी अच्छी टेक्निकली और हर तरह से ये बिल्कुल क्वालिफाई करती थी आपके हिसाब से।
2: जी हाँ जी हाँ, क्योंकि हमने शूटिंग वहां पे किया हमारा उत्तरकाशी में वहां पे, और बाद में डबिंग करने के लिए हमने, क्योंकि आर्टिस्ट सब देहरादून से थे मैक्सिमम, तो हमने डबिंग देहरादून के एक हमारे कपूर करके है रिकॉर्डिस्ट, उनके उनका स्टूडियो है रिकॉर्डिंग, उनके स्टूडियो में हमने सब डबिंग किया और बैकग्राउंड भी स्कोर भी वहां पे किया जहाँ पे हमारे वहाँ के बहुत बड़े नामी संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया था। अच्छा। तो उनका स्टूडियो है, उनके स्टूडियो में हमने बैकग्राउंड सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड किया, पर उसके बाद जो मास्टरिंग जो होता है वो सब हमने प्रोफेशनल बड़े रिकॉर्डिस्ट या मिक्सर से बम्बई में किया था।
1: Okay.
2: पूरा उसका VFX से लेके उसका कलर ग्रेडिंग और फाइनल मिक्सिंग वगैरह सब उसका बम्बई में हुआ।
1: तो चलिए इसी जो जिस तरह से आपको कॉपरेशन मिला और जिस तरह से आपने बात बताई गढ़वाली फ्लेवर और उत्तराखंड की सारी बातें इसके फिल्म के अंदर है, इस पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं पहाड़ों की याद करते हुए और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और मैं बात कर रहा हूँ दिनेश भोसले जी से, जिनको अभी अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है, रजत कमल मिला है। तो दिनेश जी, अब ये बताइए, अब उसके बारे में बात करते हैं जिस फिल्म ने आपको ये सम्मान दिलाया है। चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप आखिर ढोली की कहानी आपके पास कैसे आई, और इस फिल्म को बनाने का जो ख्याल है वो किस तरह से जन्म लिया उसने, किस तरह से, हाउ इट ऑल स्टार्टेड?
1: ये ढोली फिल्म बनाने से पहले मैंने 5 और फिल्में बनाई थी, वो अलग अलग लैंग्वेज में। तो हमारी एक मेरी जो एक थर्ड फिल्म थी, जो गोवा की लैंग्वेज में कोकणी में थी, एनिमी करके, एनिमी क्वेश्चन मार्क, और वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर थी।

0: है जो उनको उनके किसी दोस्त ने, डॉक्टर हटवाल कर है हमारे देहरादून में, उनका एक नाटक है जमनदास ढोली, वो उनको शिशिर जी को बताया था, उनके किसी दोस्त ने रिकमेंड किया था, तो वो नाटक के ऊपर ये ढोली फिल्म बनाने की प्लान हुआ था। इट वाज ऑल द एफर्ट्स टेकन बाय शिशिर कृष्ण शर्मा। इस हिसाब से वो मीन्स रास्ता तय हो गया था, और उसके बाद उन्होंने खुद हटवाल जी से बात करके वो नाटक मंगवाया। वो नाटक मंगवाने के बाद हमने उसे पढ़ने के बाद उसको हमने जो भी फिल्म का रूप देना है उसे, उसके फिल्म स्क्रिप्ट को हमने फिल्म स्क्रिप्ट का रूपांतर दिया। तो उसके फिल्म स्क्रिप्ट का रूपांतर देते समय शिशिर जी को उसमें कुछ स्टोरी में चेंजेस करने पड़े, क्योंकि नाटक का स्टोरी अलग होता है और फिल्म के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जो सिनेमेटिक लिबर्टी लेके हमें, और कंसिडरिंग एनवायरनमेंट और कल्चर ऑफ उत्तराखंड गढ़वाल रीजन, हमने वो स्टोरी में चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद एक स्क्रिप्ट बन गई। स्क्रिप्ट बनने के बाद वो शिशिर जी ने इनिशियली इंग्लिश हिंदी में डायलॉग लिखे, क्योंकि उनको खुद को गढ़वाली लैंग्वेज नहीं आती है। तो एक बार हिंदी डायलॉग लिखने के बाद वो स्क्रिप्ट हमारे स्टोरी राइटर हटवाल जी को गई, और डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल उन्होंने बाद में वो जो हिंदी में डायलॉग थे वो गढ़वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट या एडप्ट कर किए उन्होंने, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट बनी।
1: भाई मजा आ गया अब दिनेश जी सुन के, क्योंकि अब हमें ये रियलाइज हो रहा है कि एक फिल्म बनाना कितनी कठिन प्रक्रिया है और कितनी मेहनत लगती है इसमें। मतलब आइडियाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने आप में कितना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सारा। तो मजा आ गया सारी बात सुन के, किस तरह से
0: थैंक
1: आपने एक नाटक की स्क्रिप्ट को बेसिकली एडेप्ट किया अपनी फिल्म के लिए, और उसमें लैंग्वेज के भी चेंजेस किए और भी सारे चेंजेस किए। वाह।
0: यू थैंक यू।
1: तो अब सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे श्रोता हो सकता है ढोली से परिचित नहीं हो, लेकिन आप ही अपने शब्दों में बताइए कि ढोली की कहानी क्या है शॉर्ट में, और इस फिल्म का मूल भाव क्या है।
0: ढोल जो है वो उत्तराखंड स्टेट का राज्य वाद्य है,
1: ओके ओके
0: तो उसमें हर एक उनके त्योहार में ढोल लगता है उनको, और उसको ढोल को वो पवित्र बहुत डिवाइन मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो
1: जी
0: कुछ भी उनके बर्थडे हो, उनके शादी हो, किसी का प्रोमोशन हो गया हो, किसी के घर में बच्चा हो गया हो, कभी डेथ हो गई हो, हर टाइम उन्हें ढोल बजाना पड़ता है, ढोल बजाते हैं वो, और हर हर हर इसके लिए, हर त्योहार या हर वक्त के लिए वो ढोल का बीट्स अलग रहता है, और वो ढोल बजाने से पहले ढोल की पूजा भी की जाती है, सब कुछ होता है, पर वो ढोल जो बजाता है उसको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको ढोली बोलते हैं। उसके लाइफ के ऊपर वो कैरेक्टर है, मीन्स स्टोरी है, और मेन ये जिसका जो फोकस हमने किया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्क्रिमिनेशन द करंट जेनरेशन, अभी का जो जेनरेशन ये डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर आके अपने एजुकेशन से, और जो उनकी उनकी जो आर्ट है उससे उभरते हुए ये ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन सरपास करके ऊपर कैसे आ सकते हैं, वही ये सब्जेक्ट है।
1: वंडरफुल। अच्छा मतलब एक ढोली की कहानी है जो अपने एडवर्स सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करके और आगे लाइफ में बढ़ता है और आगे बढ़ता है।
0: जी
1: ओके
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
1: वंडरफुल,
0: जी हाँ
1: मजा आ गया। तो ये तो, और ये बात भी हमें पहली बार पता लगी कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय या राज्य का जो वाद्य है वो ढोल है। वाह।
0: हाँ
1: और उसकी पूजा होती है, मतलब जब ढोल बजना शुरू होता है उससे पहले पूजा होती है, क्या बात है। तो चलिए इसी बढ़िया सी बात पे रुके, हम एक गाने के लिए एक पॉज लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं दिनेश भोसले जी से, जो जिन्होंने अभी अभी हमें ढोली की कहानी सुनाई है, और इतनी मजेदार कहानी है कि क्या कहूँ आपको। लेकिन चलिए, अब थोड़ा सा हम दिनेश जी से उनकी जिंदगी में के फ्लैशबैक में ले चलते हैं, उनको पीछे ले चलते हैं। दिनेश जी, आपका अपना सिनेमेटिक बैकग्राउंड गोवा और मुंबई से जुड़ा रहा है, और आपकी पिछली फिल्मों की जो बैकग्राउंड है या पृष्ठभूमि भी अलग रही है। फिर गढ़वाली फिल्म बनाने का एक तो आपने डिसीजन कैसे लिया, उत्तराखंड और गढ़वाली कल्चर से आपका कनेक्शन कैसे बना, ये सब कैसे हुआ, हाउ यू शिफ्टेड टू दिस साइड?
1: ये जब तय आपको जो बताया कि कैसे हिस्टोरी बनी, हाँ, क्या बनी, वो जो महिषी शर्मा जी के थ्रू ये सब हो गया। पर अभी क्या होता है, स्टोरी बने, फिल्म बनाना है ना, तो वो जो जहाँ पे आप बनाते हैं, जो मिट्टी में आप बनाते हैं, वो मिट्टी का सब डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए। उनका कल्चर ये सब अगर आपको नहीं मालूम होता है, तो देन वो स्टोरी आप पूरी तरीके से सही तरीके से लोगों के सामने ला नहीं सकते, और वो इलॉजिकल हो जाता है। तो इसलिए मैंने खुद क्या किया, मैंने ये नाटक तो पढ़ा, तो उसके बाद मैं खुद देहरादून आया। देहरादून आके मैं हटवाल जी से बात की, उन्होंने मुझे दो तीन बुक्स दिए, वो बुक्स मैं पढ़े, कुछ बुक्स मैं खरीदा, वो मैं पढ़ा। उसके बाद मैं जो डोली कम्युनिटी है, तो उनकी उन लोगों को मैं मिला, उनके थ्रू मुझे बहुत सी जानकारी मिली। और हमारे साथ एक जुड़े हैं प्रेम जी, प्रेम हिंदवाल जी, जो खुद एक बहुत अच्छे ढोल वादक है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया। जो वो सब बातें मुझे जानने के बाद, पूरी तरह से इनका कल्चर, देन ढोल कैसे बजाते थे, हर अलग अलग वातावरण में या अलग अलग जो फेस्टिवल को या त्योहार को कैसे ढोल बजाया जाता है, या कोई अगर किसी का देहांत होता है तो कैसे ढोल बजाया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, एक गांव अगर ये पहाड़ी के ऊपर है, तो दूसरा गांव दूसरे पहाड़ी के ऊपर, और बीच में वैली है, तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ढोल ही है। तो इनको अगर उस पार अगर बताना है कोई यहाँ पे डेथ हो गई है, तो एक अलग बीट है, वो बीट बताने के बाद उस पार पता चलता है कि ये गांव में किसी की डेथ हो गई है, और वो अगर कोई है वो आते हैं यहाँ पे, उसके कम्युनिकेशन होता है, और देन जैसे भी उनकी अर्थी निकलती है, तो वहां पे अलग तरीके से वापस बीट स्टार्ट हो जाता है। या शादी में भी उनका अलग बीट है, जैसे अगर शादी में दूल्हा दुल्हन शादी होके निकलती है घर से, तो वहां अलग बीट बजता है, और अगर वो ढलान के नीचे चल के आ रही है तो अलग बीट है। या अगर वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है नदी पार करके, अलग बीट है, और बस में बैठ के अभी बस निकलने वाले, तो अलग बीट है। तो ये सब हमने बहुत जानकारी की थी, और ये सब डिटेल्स हमने फिल्म में लाने की कोशिश की।
0: भाई दिनेश जी, ये तो अद्भुत है, आपने आज हमारी बहुत लर्निंग कर दी कि कितनी तरह की बीट से, और ऑब्वियसली पहाड़ियों पे जो कम्युनिकेशन का है, जैसे पहले सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, इससे साउंड के थ्रू पहले जमाने में भी ये होता था, एक एक एक आवाज से दूसरी आवाज तक मैसेज पहुंचता था बिल्कुल से, और राजाओं के जमाने में भी यही होता था, ढोल से पता लगता था कोई शत्रु की सेना आने वाली है, राइट। तो चलिए, अब मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ढोली की जो शूटिंग है उत्तरकाशी और रसी गंगा वैली में की है, आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये पहाड़ों पे शूटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? क्या लोकेशन की और एनवायरनमेंट ने फिल्म मेकिंग में चुनौती आती है, कोई दिक्कत आती है, या एक कहानी को और ज्यादा ऑथेंटिक बना देती है?
1: एक्चुअल लोकेशन पे अगर आप शूट करें, जो जरूरत है आपकी कहानी को, तो वो उसको ऑथेंटिसिटी देती है, और बहुत अच्छा लगता भी हो। तो ये जो हमने गांव शूट किया था, वहां पे हमें जो चाहिए था एज पर द स्टोरी, वो परफेक्ट सब मिल रहा था। पर पहाड़ियों पे शूट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे शूट करना मीन्स वहां पे क्या होता है, हर 10 मिनट में लाइट का जो ये होता है कंडीशन वो चेंज हो जाता है, कभी ब्राइट हो जाता है, कभी अति ब्राइट हो जाता है, कभी एकदम डाउन हो जाता है. तो ये जो एक मीन्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. और बिकॉज इट इज अ रीजनल फिल्म, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स थे, तो और उसका ज्यादा ये रहता है कंट्रोल करना, और बस थोड़ी मुसीबत हो जाती है. दूसरा क्या होता है वहां पे, आपको क्या लाइट्स या जो भी है इक्विपमेंट वो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि उनका एक जगह पे आके आपको रुकना पड़ता है और बाकी एरिया ऊपर जाने के लिए चल के जाना पड़ता है.
0: ओके.
1: क्योंकि नैरो लेंस रहते हैं, और नैरो लेंस और नीचे एक डीप वैली रहती है, तो आपको नैरो लेंस से वो सामान लेके आधा घंटा चल के जाना पड़ता था. तो वो तो इनिशियली हम लोगों को भी चलने को बहुत तकलीफ हो रही थी, डर डर के हम चल रहे थे, पर एक 7-8 दिन में हम उनके साथ ही, हम उनके जैसे ही हो गए. तो उसमें भाग के करना, पर वो वहां पे शूटिंग करना बहुत मुश्किल है. मीन्स पहाड़ों में शूटिंग करना, एक तो आपके पास बहुत बजट होना चाहिए और सब इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पर ये रीजनल लैंग्वेज होने के खातिर उसका ये कंसेप्ट. पर वो जो आपको वहां शूट करने के बाद आपको जो लुक मिलता है ना, जबरदस्त लुक मिलता है फिल्म का लुक, क्योंकि वो ओरिजिनल, और उसमें आपने लॉजिकली या जो ऑथेंटिसिटी मिलती है वो आप कहीं पे जो आपको अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, जहां जाके शूट, कन्वीनियंट जगह पे जाके शूट किया, वही ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी. तो वो हमने बहुत ये किया, मीन्स वो उस हिसाब से वो लोकेशन हमारा बहुत अच्छा था, असली गंगा वैली.
0: नहीं, ये बात आपने बहुत जोरदार बताई कि पहाड़ों पे जो लाइट की कंडीशन है वो तो कई बार चेंज होती रहती होगी, तो नेचुरली आपको कंटिन्यूटी की जो समस्या है वो सारी चीजें पड़ा. और ये भी बताया आपने कि वहाँ आप हैवी इक्विपमेंट्स, आप गाड़ी एक लेवल तक ही जा सकती है, उसके ऊपर आपको चल के जाना पड़ेगा. आई मीन आपने बिल्कुल हमारे को वहां ले गए एक तरह से, कि समझ में आया हमें कि कितनी फिल्म में हम तो 3 घंटे देख के फिल्म को आ जाते हैं, लेकिन उसको बनाना कितना मुश्किल काम है. सही बात. तो एक रीजनल फिल्म का नेशनल अवार्ड्स तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है दिनेश जी. तो कुछ आप बताइए, आपके हिसाब से ढोली में ऐसा क्या था जिसने लैंग्वेज के बैरियर को भी क्रॉस कर लिया और नेशनल अवार्ड की जो जूरी है उसको भी उसने इम्प्रेस कर लिया, ऐसी क्या खास बात थी ढोली में?
1: ढोली में कहीं पे भी जो नकली बोलते हैं ना, एक नहीं था आर्टिफिशियल, कुछ नहीं था. जो था मीन्स आपको जो रियल है वो रियल हमने दिखाया था. एंड जो शूट करने के लिए मीन्स, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कई फिल्म में आपने देखा होगा कि हीरो ढोल बजाता है और ढोल कोई और बीट बज रहा है और सिर्फ ढोल बजाने का नाटक कर रहा है. पर हमने क्या किया था, हमारे जो कैरेक्टर ढोली कैरेक्टर का जो प्ले कर रहा था आर्टिस्ट, उसको हमने कम से कम 1 महीना ढोल बजाने का ट्रेनिंग दिया था.
0: ओके.
1: और उसको परफेक्ट ढोली बनाया था हमने कि वो हर बीट बजा सकता था.
0: नहीं, बहुत सही बात है. और ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी बता दी कि मैं समझ गया कि ढोली ने ट्रेन ढोली था, ऐसा नहीं था कि वो एक्ट कर रहा था ढोल बजाना. वाह, बहुत ही बढ़िया बात है. क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, एक वो पिक्चर आई थी जयाप्रदा ऋषि कपूर की, उसमें वो ढप बजाता है. कोई रियल में वो नहीं बजाता है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, मुझे याद है लेकिन सरगम बिल्कुल.
1: सरगम फिल्म मेरे चाचा की ही थी, वामन जी मेरे चाचा है.
0: अच्छा, वामन जी की है. चलो, वामन जी के बारे में तो मुझे अभी बात कर रही है आपसे, अभी उनका जिक्र आ गया. वामन जी के बारे में तो मुझे आपसे काफी बात करनी है. ओके. चलिए, तो सरगम पे नाम पे एक अपन गाने के लिए रुक जाते और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं.

0: हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं दिनेश जी भोसले से और बात हो रही है ढोली की और उसमें ढोल बजाने वाले की। तो अब मैं दिनेश जी एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हालांकि आपने उसका जवाब अब काफी पहले दे चुके हो आप मुझे, कि आपकी फिल्म से कई लोग जुड़े हैं जैसे शिशिर शर्मा जी, उनका भी स्टोरी डेवलपमेंट, हिंदी डायलॉग, तो इन सब में बड़ा एक सहयोग रहा है आपके साथ। तो कुछ उनके बारे में बताइए, किस तरह से वो आपके, आपने बता ही दिया है काफी किस तरह से जुड़ गए वो, लेकिन पहले तो ये बताइए आप दोनों का मिलान कैसे हुआ, कुछ ये बता दीजिए।
1: मैं एक हिंदी फिल्म कर रहा था 2012 में, तो
0: ओके
1: तभी हमें डायलॉग राइटर्स की जरूरत थी। तो हमारे जो सिनेमाटोग्राफर थे महेश अणे, उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया, तो वहां उनसे हमारे पहले बार पहचान हो गई। तो वो फिल्म में हमारे मेरे हिंदी फिल्म में वो डायलॉग राइटर थे, उससे हमारी पहचान हो गई। उसके साथ हम जो एनिमी फिल्म बनाए थे उसमें उनको हमने एक मेन विलेन का कैरेक्टर दिया था, नेगेटिव कैरेक्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर रहता है, तो उसके बाद दूसरी फिल्म में वो हमारे थे, और बाद में तीसरी ये फिल्म जो ढोली बनी उसमें हमारा ये थर्ड ये है। पर इसके साथ क्या हो गया, शिशिर जी जो ज्वाइन होने के बाद वहां जब हम उत्तराखंड देहरादून में गए, तो वहां से और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए, जैसे डॉक्टर हटवाल, देन अतुल बिश्नोई जी जो वहाँ के एक्टर भी हैं और वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, तो वो भी जुड़ गए। उसके बाद प्रेम हिंदवाल जो अच्छे ढोल वादक है वो हमारे साथ जुड़ गए, देन सुनील सिंह करके युवा है वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर जैसे साथ कास्टिंग डायरेक्टर करके हमारे साथ जुड़ गए, और ये और बहुत से लोग जुड़ गए। जैन इसमें और एक इम्पोर्टेंट सदस्य हमारे ये यूनिट के थे, हमारे एडिटर वीरेंद्र गारसे। वीरेंद्र गारसे जो है वो हमारे मेरे चाचा के असिस्टेंट थे, तो वो मेरे फर्स्ट फिल्म से हमारे साथ है, तो मेरी फर्स्ट फिल्म है, डेब्यू फिल्म थी, वहां से वो हमारे साथ थे। तो वो भी ढोली में जब हम फिल्म बना रहे तो वो भी स्क्रिप्ट टीम में बैठे थे, तो मैं शिशिर जी और वीरेन तीनों मिलके फाइनल स्क्रिप्ट की थी। तो ये ऐसा करके हमारी एक टीम बन गई जो देहरादून में।
0: हाँ, तो लोग आते गए, कारवां बनता गया और नेशनल अवार्ड तक पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है। अब थोड़ा सा मैं दिनेश जी आपको पीछे ले चलना चाहता हूं दोबारा एक बार। दिनेश भोंसले नाम के उस यंगस्टर्स की कहानी मुझे बताइए जिसे एक दिन फिल्मों की दुनिया ने अपनी ओर खींच लिया। सिनेमा से आपका पहला रिश्ता कैसे बना, क्या ये बचपन से ही था या कुछ खास ऐसी बात हुई कि सिनेमा की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए?
1: मेरे बचपन में अगर बताया तो मैं मुझे मालूम है कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो कैरोसिन के दिए पे ऊपर या पेट्रोल मैक्स पे घर में लोग रहते थे। और दूसरा ये है कि अगर कोई मनोरंजन का साधन है तो वो एक सिर्फ रेडियो था, और मेरे वार्ड में, जो वार्ड बोलते हैं हमने, तो वो एरिया में सिर्फ एक ही घर में रेडियो था, और रेडियो भी ऐसे आप अभी जैसा नहीं, तो शाम को कुछ गीत बजते थे ऐसा कुछ था, तो वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था और बाकी ऐसा कुछ था नहीं। और साल में हमारे यहाँ रामनवमी हो जाती होती है गांव में अभी भी, तो वहां पे तीन नाटक हो जाते थे, तो लोग हर साल उसका ही इंतजार करते थे कि तीन नाटक कैसे मिलेंगे हमें देखने को। तो उसके बाद क्या हो गया था, मैं बचपन में, हम लोगों को थिएटर तो मालूम ही नहीं था कभी, तो हमें जब मैं 8 साल का, 9 साल का या 10 साल का होगा मुझे याद नहीं है, पहला फिल्म जो मुझे अभी थोड़ा सा याद आया है वो भक्त प्रहलाद करके जिसका मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं डरा हुआ था क्योंकि उसमें मुंडी वगैरह काटते हैं तेल में वगैरह उसको करते, तो वो देख के मैंने आंखें बंद कर ली थी, तो वो इतना ऐसा मुझे थोड़ा सा धुंधला सा याद आ रहा है। तो बाकी हमें कोई फिल्म नहीं जा, अगर कोई बाद में क्या, जैसे बड़े हो गए, फोर्थ में वगैरह आ गए, तो जैसे मेरे चाचा की अगर कोई फिल्म आती थी, जैसे अभी जिक्र हुआ सरगम, तो मेरे मामा के साथ हमें भेजा जाता था फिल्म देखने को, मैं भाई बहन सब, तो वो देखते थे। ऐसी फिल्म, ऐसे फिल्मों से रिश्ता हुआ। और बाद में मुझे मालूम भी नहीं था भी, मैं बम्बई में जब आया, जब मैं 8th में था, तो मेरे चाचा के यहाँ आया था, तभी एक्चुअली मेरा ज्यादा ये आ गया कि फिल्म क्या है, कि एडिटिंग क्या होता है। मैं चाचा के साथ स्टूडियो में गया तो पता चला, और धीरे धीरे मेरी उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो ये था कि मेरा इंटरेस्ट था, पर बाकी लोगों को मेरे घर में बाकी लोगों को मुझे उसमें भेजने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंडीशंस एंड सब नेगेटिव ही थे। पर वो वहां से मेरे दिमाग में था कि मैं अगर जाऊंगा तो ये क्षेत्र में ही जाऊंगा। पर वो इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, मरता गया। और क्या होता है कि आपको कोशिश करनी करती रहनी चाहिए, एंड देन ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स।
0: क्या बात कही है आपने दिनेश जी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह क्या बात। तो अब थोड़ा सा जिनके आप चाचा जी के बारे में बात कर रहे थे, वामन भोसले जी के बारे में, अब आपके कैरियर में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एक पड़ाव रहा है, साथ काम किया है आपने। तो उनके साथ काम करने से आपने फिल्म मेकिंग के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण सीखा, कुछ उसके बारे में बताइए। वामन जी के बारे में भी बताइए कि उनकी कौन कौन सी खास खास फिल्में थी, क्या था, कुछ बताइए उनके बारे में।
1: वामन जी जो है मेरे चाचा है, वो बम्बई में आया आपसे आफ्टर पासिंग 10th। तभी 10th पास होना मीन्स बहुत ये था, मीन्स बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं रहता था। तो 10th उनको एग्जाम देने बम्बई में आना पड़ता था, क्योंकि गोवा में ये नहीं था, सेंटर नहीं था। तो 10th में आने के बाद वो यहाँ पे रह गए, क्योंकि काम का कोई सुविधा नहीं था वहाँ पे जॉब का। तो यहाँ पे रह के वो जॉब करने लगे। तो उनको वो जो जॉब कर रहे थे, क्योंकि मेरे बड़े बड़े चाचा के साथ थे वो, जो डाई मेकिंग का, मेरे बड़े चाचा डाई मेकर थे बम्बई में। पर वो पर क्या होगा, उनको वो काम नहीं जम रहा था, क्योंकि वो लोखंड का काम था, काटना तोड़ना फोड़ना, तो उनको जम नहीं रहा था। तो उन हमारे पड़ोस में, मेरे पड़ोसी के जो जमाई थे वो फिल्म एडिटर थे
0: ओके,
1: बम्बई में। तो मेरे चाचा को उतना मालूम था, पर उनको उस हिसाब से जाके मेरे पिताजी ने उनको मिलवाया और उन्होंने उनको ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट। वहां से उनकी वो सीए स्टार्ट हो गए, एडिटिंग से फिल्म में यात्रा स्टार्ट हो गए। और उन्होंने ये जो एडिटर थे जिनके साथ वो असिस्टेंट थे, उनका नाम था डीएन पै, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, ब्लैक एंड व्हाइट, साइलेंट फिल्म से ब्लैक एंड व्हाइट।

0: और सब बड़ी बड़ी फिल्म में बड़े नाम था उनका। तो उनके साथ उन्होंने आराम 12 साल असिस्टेंट काम करने के बाद उनको फर्स्ट टाइम जो ब्रेक मिला वो बड़ी फिल्म थी राज खोसला साहब की 2 रास्ते।
1: अच्छा,
0: वो टाइम की वो बड़ी गोल्डन जो
1: बहुत
0: फिल्म थी और उनका जो करियर ग्राफ है वो ऊपर जाते गया। और वो तभी एक वो आ गया था, अगर किसी को किसी बच्चे किसी स्टार को अपने बच्चे को लॉन्च करना है तो वामन भोसले वामन जी को एडिटर लो, वामन गुरु करके जोड़ी बनी थी तो वो वामन भोसले गुरुदत्त शिराले, तो वो उनको ले लो तो आपको कामयाबी मिलती है। तो उस हिसाब से बहुत से जो एक्टर्स को लॉन्च की थे किए थे तो उनकी फिल्में भी वामन जी ने एडिट की थी। और बहुत से डायरेक्टर है जो बड़े नाम हो जिनका बाद में बहुत बड़ा नाम हो गया, जैसे कि सुभाष जी, सुभाष गई, देन देन महेश भट्ट जी, देन गुलजार साहब, इनके सब की फर्स्ट फिल्म वामन जी ने किया और उसके बाद बहुत सी फिल्में उनकी उन्होंने की है। तो वामन जी के ने बहुत बड़े शेखर कपूर से लेके देन सब बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने एज एन एडिटर काम किया और सब लोग सब डायरेक्टर उनको लेना चाहते थे पर उनके साथ उतना टाइम नहीं था कि सबकी फिल्में करें। और वो मुझे लगता है फर्स्ट जो एडिटिंग में नेशनल अवार्ड मिला था वो उनको मिला था, जो अच्छा। फिल्म का टाइटल था इनकार।
1: इनकार,
0: वो मुंगड़ा मुंगड़ा वाली इनकार। उन्होंने अराउंड 278 फिल्में की है एडिटिंग।
1: मुझे यार ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के टाइटल्स आते थे तो वामन भोसले का नाम भी आता था उसमें। बहुत उसी जगह
0: जी हाँ जी।
1: और आपकी बात से ये बात भी साफ हो गई है दिनेश जी कि एडिटर का काम कितना इम्पोर्टेंट है फिल्म मेकिंग में।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: है ना। क्योंकि आपने बताया कि नए जब स्टार किड्स लॉन्च होते थे तो उनको उनको उनके लिए वो इनका सहयोग मांगते थे। ये तो चलिए इसी बात पे हम वामन भोसले जी की बात पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर अपने इस जर्नी को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक दिवेश जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी फिल्म्स मर्मबंद, कैल्पोर, एनिमी और अमोरी के बारे में। तो आपने ढोली तक का सफर तय किया है, तो अगर पूरी सिनेमेटिक जर्नी को देखें तो कौन से दो तीन पड़ाव आपको सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट लगते हैं आपकी फिल्म के?
1: मुझे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का था जो तो मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म मर्मबन बनाई थी। मर्मबन जो है वो मराठी में थी फिल्म, और वो तब बनाई थी कि मेरे पास 5,000 थे और मैंने 55 लाख की फिल्म बनाई थी। वो मेरा सपना था कि मैं फिल्म बनाऊं, और वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट था कि प्री लिबरेशन ऑफ गोवा, मीन बिफोर 1960s, गोवा में थिएटर का जो ये था, थिएटर नाटक का जो नाटक क्षेत्र था, उसके बारे में था कि जैसे वहां पे फीमेल कैरेक्टर्स वे प्लेड बाय मेल कैरेक्टर, ऐसे उसके बारे में था कि जैसे वहां पे फीमेल कैरेक्टर्स वे प्लेड बाय मेल कैरेक्टर, ऐसे एक एक्टर की जीवन गाथा थी वो। तो वो फिल्म हमने बनाई थी 2006 में, और ये बजट में बनाई थी और गोवा में शूट की थी, और वो पूरा पीरियड हमने एस्टेब्लिश किया था। और अभी के जैसा तभी नहीं था, तभी फिल्म पे शूट किया जाता था, अभी डिजिटल कैमरा थे। क्रिटिकली मींस बहुत ये किया, एक्लेम मिला उसको, प्लस अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे महाराष्ट्र स्टेट जी गौरव, जी जो जी आज बोलते हैं, जी टीवी, उनके अवार्ड, देन गोवा स्टेट अवार्ड, बहुत। पर वो क्या मालूम है, उस वक्त अचानक वो ग्लोबल रिसेशन आ गया था, इसलिए हमने वो मींस कमर्शियली सक्सेसफुल हो नहीं सकी। पर उस वक्त अगर अगर वो ग्लोबल रिसेशन नहीं आता था तो वो फिल्म और बड़े मींस आगे जा सकती थी, और वो वेनिस फिल्म फेस्टिवल को भी शॉर्टलिस्ट हुई थी, पर हमारे हमारे कुछ गलती के लिए वो डिस्क्वालीफाई की गई।
0: अच्छा, मैं बस इसी में एक ही बात आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ, थोड़ा सा मुझे बताइए मर्मबंध का जो अर्थ है वो क्या है?
1: मर्मबंस मींस इमोर्टल बंस,
0: इमॉर्टल बंध,
1: नहीं
0: अच्छा
1: नहीं इमोर्टल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स,
0: बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, हाँ
1: या
0: बंध मतलब बॉन्ड, ठीक है मैं समझ गया, जैसे
1: इमोर्टल
0: बाजू
1: बॉन्ड्स।
0: बंद होता है, बाजू बंद होता है वैसे। हाँ
1: वैसे बॉन्ड होते हैं ना, हम बोलते हैं ना बॉन्ड, मेरा और
0: हाँ
1: मेरे
0: बॉन्ड,
1: फ्रेंड का एज अ फ्रेंडली बॉन्ड,
0: हाँ
1: वैसा।
0: इमॉर्टल बॉन्ड।
1: हाँ
0: तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप डिजिटल सिनेमा को काफी नेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिल रही है, तो गढ़वाली जैसी भाषाओं में फिल्मों के सामने आपकी नजर में सबसे बड़ी अब आजकल चैलेंज क्या है? फाइनेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, थिएटर का, ऑडियंस का, या ओटीटी का, क्या सोचते हो आप इसके बारे में?
1: अभी ये फिल्म जो हमने डोली बनाई, उसके बाद हमने जब रिलीज करने का अभी प्लान चल रहा था, तो मैं ये गरवाली फिल्म रिलीज करने वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है अनिल ध्यानी जी करके, वो दिल्ली में बेस्ड है, तो उनको मिला मैं और उनसे जानकारी कि कैसे फिल्म करे, क्या कैसे कैसे करे रिलीज करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने मुझे कुछ जो बातें की, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे थिएटर जो है ना सिर्फ सिटी में है, जैसे अगर उत्तरकाशी में फिल्म रिलीज करनी है तो वहां पे थिएटर है नहीं, या और कहीं पे वहां पे उनका टाउन है वहां पे करना है तो वहां थिएटर नहीं है। और दूसरी बात बहुत ये हो गई है कि वहां पे गढ़वाली जो फिल्म फिल्म जो रिलीज की जाती है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर उनका ये कहना था कि थिएटर वाले 50% ऑक्यूपेंसी मांगते हैं, वो तो ओके है, वो कोई भी थिएटर वाले मांगते हैं, पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो बोलते हैं कि कुछ फिल्म मेकर्स ने ये गलत मीन्स रास्ता चुना है, जो खुद लोगों को फुकट में टिकट देते हैं और गाड़ी में बिठा लेके आते हैं और थिएटर में बिठाते हैं, और तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो टिकट खरीद के आने वाले जितने थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फिल्म फाइनेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें आपको एक कंडीशन है कि आपकी फिल्म कम से कम 5 थिएटर में 1 वीक चलनी चाहिए। इसलिए ये सब ऐसे गलत रास्ते कुछ लोग पकड़ रहे हैं, तो ये बहुत सा मींस नेगेटिव असर हो रहा है ऑन फिल्म बिजनेस इन गढ़वाली लैंग्वेज। तो ये
0: मैं समझ गया ये कल। हाँ, बहुत ये तो कॉम्प्लीमेंट्री लोगों को भीड़ इकट्ठी करना, और थिएटर ही कम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो
1: रहा है। इंटीरियर्स में तो थिएटर ही है नहीं, जैसे उत्तरकाशी में बहुत लोग इंतजार करे कि ये फिल्म वहां पे दिखाए, वहां के लोगों का मुझे फोन भी आता है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे वहां पे फिल्म। उनका कहना है कि वहां पे एक थिएटर है, वहां पे हम प्रोजेक्टर लगा के वे करके स्क्रीन लगा, मैं वो बहुत टफ है, क्योंकि जब थिएटर में जो देखने का फिल्म का मजा आता है वो ऐसा छोटा सा प्रोजेक्टर लाके वो मजा नहीं आएगा।
0: तो चलिए अब हम एक

बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं गाने के लिए और फिर हम अपने एक दूसरे सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं जिसमें हमारे साथ कुछ एक्टिव लिसनर्स जुड़ेंगे, तो अब उसके बारे में दिनेश जी से बात करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक दिनेश जी। दिनेश जी, जब हमने अपने लिसनर्स को बताया और हमारे ग्रुप में डाला कि ढोली के डायरेक्टर आ रहे हैं, तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए। कुछ ने कहा कि हम भी उनसे सवाल करना चाहते हैं, ये करें, तो अब सबके लिए तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक हमारे यंग लिसनर्स हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, और उनका नाम है तनुषा, तनुषा नागरथ। शायद बहुत
1: हाँ
0: लोगों को उनको पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन आज उनका नाम पता लग जाएगा कि उनका पूरा नाम है तनुषा नागरथ। उन्होंने बात एक अच्छा सा सवाल पूछा है आपसे, और वो सवाल ये पूछा है आपकी फिल्म के बारे में ही है कि चलिए नेशनल फिल्म को मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ये सबका एक ड्रीम होता है कि आपको नेशनल अवार्ड मिले। लेकिन अगर अवार्ड को अपन एक तरफ रख देते हैं, तो ढोली की जो जर्नी है उससे अगर कोई एक बात कोई लेके जाना चाहे, एक मेमोरी, एक सीन या एक कोई इमोशन अपने साथ घर लेके जाना चाहे, तो वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पूरी फिल्म से?
1: क्या होता मालूम है, फिल्म जब बनाते हैं ना तो हम लोग ऐसा किसी को क्या लेना चाहिए क्या है वो कभी दिमाग में रखते नहीं, क्योंकि हर एक का एक हर एक आदमी का एक कैरेक्टर अलग रहता है। हो सके तो जैसे फिल्म देखने के बाद मेरे एक फिल्म है आमोरी करके, उसमें फिल्म हर एक को ना अलग अलग एंगल से दिखती है। जैसे ढोली जो है ना अलग अलग, पर उसमें पॉजिटिव बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्लाइमेक्स में हमने जो दिखाया है ना, क्लाइमेक्स में जो ये लड़के का जो जो डिस्क्रिमिनेशन से जाके अब ऊपर आया है, वो ना सिर्फ वो कैरेक्टर को ही नहीं पर हर एक के लाइफ में हमने अगर ये सीख ली ना तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया जवाब। मतलब चैलेंजेस को जिस तरह से ओवरकम किया और लाइफ में आगे बढ़ा
1: हाँ
0: है, वो बहुत एक
1: हाँ
0: बड़ा
1: हाँ
0: टेक अवे है इस फिल्म का। वाह।
1: या
0: तो तनुषा जी, थैंक यू
1: थैंक
0: फॉर योर क्वेश्चंस। और अब एक हमारे दूसरे बहुत ही एक्टिव और बहुत बढ़िया लिसनर है, रविशंकर जी। उनका एक सवाल है, क्या आपने अपने आप को फिल्म के टीनेजर के रूप में सोचा था? आपने विजुलाइज किया था कि ये टीनेजर हूं मैं? क्यों, तभी क्या लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है इस फिल्म में? किस तरह से टर्निंग पॉइंट आया था उसकी लाइफ में?
1: ये जो कैरेक्टर जो है इसमें जमनदास, या मैं एज अ डायरेक्टर आई हैव टू बी विथ एवरी कैरेक्टर। जब कैरेक्टर लिखते हुए वो कैरेक्टर मुझे खुद होना पड़ता है, तभी हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, ताकि वो कैरेक्टर को हम जिंदा कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है जो जिसने वो टर्न ओवर टर्न टर्न टर्निंग पॉइंट उसका लाइफ था, लाइफ का था जब वो इज अ टीनेजर, क्योंकि उसी वक्त उसके फादर की डेथ हो जाती है और फादर डेथ से पहले उसे रिक्वेस्ट करता है।

0: है कि तुम गांव छोड़ के शहर जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई गया है, पहले पिताजी को लगता है कि बड़ा भाई गलत कर रहा है, और अभी
1: अच्छा
0: उसको लग रहा है कि डेथ पे है, तो कि यहाँ रह के कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ही वॉज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ दैट कल्चर, या जो सालों सालों से चल रहा जो उनका ये था रीति रिवाज, उसका फॉलोअर था। इसलिए वो बड़े बेटे को बोलता है कि मत जाओ ये छोड़ के, यहाँ पे हमारा सब कुछ है। तो बड़ा जाता है, देन एट द डेथ बेड पे उनको लगता है, ये रियलाइज इस डेथ कि बड़ा लड़का ठीक था, और इसको बोलता है कि तुम अभी जाओ यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड देन लड़का बोलता है नहीं, मैं जाने वाला हूँ नहीं छोड़ के, जो है मुझे यहाँ करना है, यहाँ ही हासिल करना है और लोगों को दिखाना है। ये है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसमें।
1: बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपने तो एक ऐसे फिल्म की स्टोरी के धागे हमारे सामने छोड़ दिए कि हमें लग रहा है कि हम इस पिक्चर को जल्दी से जल्दी देखें किसी तरह।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, आपने ऐसे
0: बिल्कुल
1: सूत्र छोड़ दिए हमारे सामने कि हमें बड़ा मन कर रहा है इस पिक्चर को देखने का। तो दिनेश जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करने का, लेकिन कुछ समय सीमा होती है। तो अब इस पॉइंट पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे समीर गोयल साहब, जो हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी हैं और एक आला दर्जे के वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। मैं समीर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बात तो उनके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछें, और दूसरा दिनेश जी को हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया अदा करें रेडियो की तरफ से।
2: दिनेश जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे सभी लोगों ने सुना। जाहिर सी बात है, जो भी बात मैं सुन रहा था लगातार, तो सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आपके पास भी इतना वक्त नहीं होगा और
0: जी
2: हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चों जैसे सवाल भी हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट और पर्टिनेंट सवाल है वो कोशिश कर रहा हूँ आपसे पूछने की। हम लोग किसी जमाने से सभी लोग मानते हैं कि सिनेमा या फिल्म जो होती है वो हमारे जीवन का आईना होती है, हमारे समाज का आईना होती है। जैसे आपने अभी ढोल के बारे में बोला, बहुत खूबसूरत बात आपने बताया कि अलग अलग वक्त पर ढोल अलग अलग ताल में बजता है। अपने आप में यही कितनी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत कि भाई डोली विदा होती है तो ऐसे, किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे, बस में बैठती हैं तो ऐसे, कितने जबरदस्त वेरिएशन है। पॉइंट यह है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आवे कि किस तरीके से वेरिएशन आता है। मेरा जो सवाल है सर, वो थोड़ा आर्टिस्टिक ही है। बात हो रही है ढोल को सुनने की। मैं थोड़ा स्वार्थी होकर ये सवाल पूछूंगा दिनेश सर, बिकॉज हम लोग रेडियो में डील कर रहे हैं। मैं आवाज को सुनने का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है कि जब हम आवाज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनती है। और मुझे ऐसा ही लगता है जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्म बनाता होगा तो उसे कुछ तो सुनाई देता होगा, कुछ तो पिक्चराइजेशन उसके दिमाग में होता होगा, और फिर वो उसको कैनवस पर उतारने की कोशिश करता है। तो आज की डेट में दिनेश सर, मेरा सवाल यह है, सुनने का क्या महत्व बचा है? आई मीन टू से, रेडियो का रेलिवेंस कितना है? आपने भी अभी जिक्र किया था कि किसी जमाने में आप रेडियो सुना करते थे, आज की डेट में रेडियो का रेलिवेंस क्या है? दिनेश सर, हमें गाइड कीजिए।
0: पहले जो मैं बोला था कि रेडियो सुनते थे, क्योंकि वो स्कार सिटी था, रेडियो किसी के था नहीं, और जाके और बाकी कोई सुविधा या बाकी कोई और एंटरटेनमेंट सुविधा नहीं थी, तो रेडियो वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। तो हम वहां जाके वो रेडियो सुनते, पर आज क्या हो गया कि रेडियो के साथ आपको इतने अलग अलग चैनल आ गए हैं, बहुत से चैनल आ गए, मीन्स FM रेडियोस, और जो आप बोल रहे अलग, तो कंपटीशन बहुत टफ हुआ है मीन्स फॉर रेडियो। और पर क्या होता है कि लिसनर्स जो है ना वो रेडियो बहुत सुनते हैं, जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि रेडियो सुनने का एक अलग ये है, जैसे कि जैसे आप काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं, जैसे कि वीडियो में ऐसा नहीं होता है, आपको दोनों लिसन भी करना पड़ता है और व्यू भी करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आप बैठ के अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो भी रेडियो पर सुन सकते हैं, घर घर में काम करे तो भी रेडियो सकते हैं, खेत में काम कर रहे रेडियो सुन सकते हैं। और रेडियो एक पहले जैसा एक ही काम का नहीं रहे, रेडियो में अभी अलग अलग तरह से आपका एंटरटेनमेंट, जो आप गाने भी बजाए, जैसे अगर अभी ये कार्यक्रम आप कर रहे उसमें से क्या हो रहा है, गाने तो सुनने को मिल रहे और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग कुछ नया सीखने को लोगों को मिल रहा है। तो रेडियो तो चलेगा ही आगे जाके, ऐसा नहीं कि रेडियो डाउन होगा, पर चलेगा, क्योंकि हम जैसे हम आगे जा रहे हैं तो उसको नया नया इनोवेशन लेके आना पड़ता है। जैसे वो रेडियो के लिए नहीं, फिल्मों में भी हमें नया नया इनोवेटिव कुछ लेके आना पड़ता है तभी लोगों को वो अप्रिशिएट करे या अट्रैक्ट करे। वैसे रेडियो में भी नया नया नए नए कुछ आइडियाज लेके आते हैं, इसलिए तो लोग लिसनर्स बढ़ते जाते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, क्योंकि आप सीजनड कलाकार रहे हैं, कलाकार मतलब आर्टिस्ट जिनके दिमाग में कुछ चलता है, जिन्होंने फिल्में बनाई, तो इस वजह से आपसे एक लर्निंग लेने की कोशिश के चलते ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। मैं हूँ आलोक जी हैं और हमारे साथ कुछ और हमारे दोस्त हैं जो मिलके रेडियो को, हमारा मिशन है रेडियो को वापस से जिंदा करना, वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आना। मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन बहुत है। दिनेश सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, आज आपने सुना दिनेश भोसले साहब को, जो बहुत सीजनड फिल्म मेकर हैं, बहुत बहुत सारे प्रतिभाशाली और टैलेंटेड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने तमाम फिल्में बनाई हैं, आपने इस पूरे प्रोग्राम में सुना ही, तो हमें भी इनसे कुछ तो सीखने को मिला, कुछ तो एनलाइटनमेंट हमें भी मिला, हम किस तरीके से सोचें। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत करबद्ध आभार मैं प्रकट करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, हम ऑनर्ड हैं। थैंक यू
0: समीर जी, थैंक यू आलोक जी मुझे मंच में लाने के लिए।
1: थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। और दोस्तों, जिन्होंने ढोली नहीं देखी है जरूर देखिएगा। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सिनेमा और मीडिया की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अक्सर हम रेडियो पर उनसे सिनेमा के बीते हुए सुनहरे दिनों की कहानियां सुनते हैं। कभी किसी भूले बिसरे कलाकार की यादें, तो कभी पर्दे के पीछे की अनकही दास्तानें। लेकिन आज सौभाग्य से वही आवाज, वही दृष्टि और वही संवेदना हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे आज के अतिथि हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुरक्षित बैंकिंग कैरियर को छोड़कर क्रिएटिविटी का जोखिम चुना, जो लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं, पटकथा और संवाद लेखक

0: जो एक ग्लैमर था जो दिल दिमाग में, तो उनसे मेरी दोस्ती हुई और फिर सर 1995 में मैं ट्रांसफर लेके यहाँ आ गया। उसका मुख्य जो मेरी वजह थी आने की वो ये थी कि मैं अपने बच्चों को वो घुटन उस घुटन से बाहर निकालना है ना, ये था। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता था मैं नौकरी करता रहूंगा, ठीक है कुछ छोटा मोटा कुछ करते रहे, लेकिन वो होता नहीं है, छोटा मोटा नहीं हुआ करता। आपकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो फिर एक टाइम ऐसा आया मुझे लगने लगा कि भाई मैं अगर नौकरी ही करनी थी मुझे तो देहरादून क्या बुरा था कि मोटरसाइकिल पे किक मारी और 15 मिनट में आप ब्रांच में पहुंच गए। यहाँ आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में किस तरह से चढ़ें, लटक के जाएं, जैसे भी, आपको 1 सवा घंटा 1.5 घंटा तो ब्रांच में पहुंचने में लगता है।
1: जी
0: ये सारी चीजें। तो सर बस वो 2000 में फिर मैंने बैंक, हमारा स्पेशल VRS आया था वो मैंने ले लिया। 18 साल की नौकरी थी, 1982 में ज्वाइन किया था और 2000 में जी छोड़
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने स्टेज भी किया हुआ है, वो देहरादून में किया हुआ है, स्टेज किया हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था आपने स्टेज भी किया हुआ है।
0: सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं,
1: जी
0: जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं।
1: अच्छा, ये तो
0: ये
1: एक
0: जो
1: प्ले
0: नाटक
1: भी है
0: है,
1: बड़ा मशहूर। हाँ, प्ले भी बड़ा
0: नाटक ही
1: मशहूर है।
0: नाटक ही है
1: हाँ।
0: ये नाटक। मैं लखनऊ गया था किसी काम से 3-4 दिन के लिए, तब तो उत्तर प्रदेश ही था, अब तो उत्तराखंड हो गया अपना, देहरादून ही राजधानी हो गया। मैं लखनऊ गया हुआ था उन दिनों, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था किसी काम से। शाम को मैंने ये कौन सा है वहां, मैं एक ही बार गया, वो टैगोर है, कौन सा,
1: हाँ, रविंद्र रविंद्रालय रविंद्रालय।
0: रविंद्रालय,
1: हाँ, मैं भी लखनऊ
0: रविंद्रालय
1: काफी
0: के,
1: जाता
0: हाँ
1: हूँ।
0: जी, रविंद्रालय के बाहर मैंने बहुत बड़ा बैनर देखा तो बड़ा अटपटा सा नाम लगा, इतना लंबा नाम नाटक का, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। एक बार लगा कि शायद ये पंजाबी नाटक हो, तो खैर मैं रुक के मैंने पढ़ा तो तब मुझे समझ में आया कि ये नया नाटक है कोई। वो थे हबीब तनवीर साहब, उनकी टीम थी हबीब तनवीर, और हबीब तनवीर साहब का वो नाटक था जो पब्लिश होने से पहले, वो शुरू पहले ही से कर रहे थे, तब तक ये पब्लिश नहीं हुआ था
1: अच्छा,
0: नाटक। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो नाटक, देहरादून लौटा मैं 2 दिन बाद, आते ही वो नेहरू युवा केंद्र में हम लोग शाम को मिलते थे, कलामंच के हमारे सीनियर्स भी थे काफी सारे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी अब नाटक होगा यहाँ तो सिर्फ जिस लाहौर नहीं वेख्या, मैं अभी देख के आया, बड़ा जबरदस्त नाटक है। और सर जब पूछताछ की तो कहीं था ही नहीं उपलब्ध।

0: लोगों ने रिहर्सल शुरू की इसकी। हाँ, तकलीफ कुछ चीजों की ये थी कि दो ढाई तो हम लोगों की भाषा बहुत खराब थी,
1: अच्छा
0: दरवाजा खून, ठीक है ना, इस तरह से जो है वो नुक्ते का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। इस पे हमारा 2 महीने काम हुआ,
1: ओके
0: हमारी जुबान सुधारी गई। एक थे उस्ताद जी, उन्होंने पूरा उसमें, फिर मैंने सर वो वाला भूमिका की थी जो सिकंदर मिर्जा जो लखनऊ से लाहौर जाते हैं सर,
1: ओके
0: वो ये तो मतलब। हाँ, और दूसरा ये था कि पहली टीम हमारी थी जो पब्लिश होने के बाद, ये नाटक के प्रकाशन के बाद हमारी पहली टीम थी जिसने ये किया। असगर वजाहत साहब उन दिनों यूरोप में कहीं थे, तो उनके असिस्टेंट, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी पता नहीं, सुख सरदार जी थे, वो आए थे उसमें। बहुत
1: ओके
0: सारे नाटक किए सर। दून रंग शिविर हुआ, हाँ मैं ये भी बता दूं, दून रंग शिविर हम लोग
1: हाँ
0: उसमें देहरादून की 4-5 संस्थाएं जो मेन थी वो, और दिल्ली से एनएसडी के दिनेश खन्ना आए थे, दिनेश
1: अच्छा,
0: खन्ना के देखरेख में 3 नाटक हुए थे,
1: अरे वाह,
0: उसमें से 2 में मैं था। और मैंने वो डॉक्टर वीजी शर्मा थे, शर्मा
1: हाँ
0: तमिलनाडु तमिलियन थे, डॉक्टर
1: हाँ
0: वीजी शर्मा थे या खैर वो क्राफ्ट्स वाले, उनके साथ भी
1: अच्छा
0: मिलके मैंने काम किया। तो इस तरह से सब मैंने काफी काम किया देहरादून में, कई नाटकों में किया। तो खैर
1: तो ये बड़ा मजेदार है कि आपकी एक लखनऊ ट्रिप ने आपको स्टेज से जोड़ दिया। ये तो ये मतलब हुआ कि आपकी आपने एक वहां नाटक देखा और आप उससे इतने मुतासिर हुए कि आप की दिशा ही बदल गई। बहुत ही एक अच्छा काम। और ये नाटक भी बहुत फेमस है, जो आप जिसका नाम आपने लिया, असगर वजाहत साहब का, बहुत फेमस
0: जी, एक
1: नाटक
0: बात कहना चाहूंगा सर, ये नाटक तो बाद में हमने किया, मैं 12वीं जब मैंने किया था उसके बाद ही कलामंच से जुड़ गए थे हम, क्योंकि
1: ओके अच्छा
0: हमारे गुरु थे अजय चक्रवर्ती जी, अजय चक्रवर्ती सर स्कूल
1: अच्छा
0: में हमारे टीचर थे वो, और बहुत अच्छे वो रंग वो जो थे निर्देशक थे,
1: अच्छा
0: रंगकर्मी बड़े जाने वाले और निर्देशक, वो कलामंच के सदस्य थे। तो
1: ओके
0: अजय चक्रवर्ती सर ने, हम शायद 11वीं में थे, हाँ 12वीं में तो हम बोर्ड का एग्जाम होता है तो इसलिए 11वीं में हम थे, तब उन्होंने जो एनुअल फंक्शन में हमारा एक नाटक करवाया था चिराग जल उठा,
1: अच्छा
0: ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक है, टीपू सुल्तान की कहानी वो जो अभी है, और उसमें उनका चचेरा भाई है अनवर, वो धोखा देता है अंग्रेजों से मिल जाएगा, बड़ा हिट नाटक है वो। उसमें
1: अच्छा
0: फिर मैंने अनवर का किया था रोल, तो लेकिन वो इतना अच्छा रहा वो नाटक कि चक्रवर्ती सर कलामंच में ले गए हम लोगों को, उसमें 5-7 कलाकार हम स्कूल वाले थे उस नाटक में।
1: अच्छा
0: तो शुरुआत मेरी, मैंने 79 में, साल 79 में मैंने 12वीं किया था, और उसी 12वीं के बाद ही हम लोगों ने ये नाटक किया, तो आप समझिए कि 79 में हमने ज्वाइन कर लिया था कलामंच, इसी नाटक से जो स्कूल में कराया था। उसके बाद कई नाटक किए सर, लेकिन ये जो है, ये वाला जिस लाहौर ने देखा, ये फिर सन 91, 90 या 91 की बात है जब मैं लखनऊ गया था, उस दौरान मैंने कई सारे नाटक किए, कईयों में काम किया। तो अबू हसन हो गया, पर नाम भी याद नहीं आते हैं
1: चलिए
0: सर।
1: सर, कोई
0: खैर
1: बात नहीं। तो इसी
0: जी,
1: इसी नाटक के नाम पे, और ये जो खूबसूरत आपकी जिंदगी में एक फेज आया, इसके
0: हाँ
1: नाम
0: जी
1: पे हम रुक के एक हबीब तनवर साहब, असगर वजाहत साहब के नाम पे एक गाना सुन लेते हैं और एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं, फिर आगे अपनी बातचीत जारी रखते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जरूर जरूर।

0: मैंने बैंक में भेज दी। तो ये
1: अच्छा
0: जो अपना हिंदी दिवस का जो था कहानी प्रतियोगिता,
1: हाँ जी
0: उसे पहला इनाम मिल गया। और
1: ओके
0: वो कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं थी कि सर हिंदी भाषियों में मैं अकेला था हिंदी भाषी,
1: अच्छा
0: और फिर रंगकर्म से जुड़ा हुआ वो सर। ये छपी धीरेंद्र अस्थाना जी है दरअसल लेखक बनाने वाले मुझे। धीरेंद्र अस्थाना जी एक बहुत बड़ा नाम है,
1: अच्छा
0: वो साहित्यकार हैं और
1: हाँ

0: की कोशिशें भी होती रही,
1: ओके
0: उसका हमें ये नहीं पता कि ये हमारी है या बगल वालों की है, पर हम इसको किस पे कब्जा नहीं होने दिया, बगल वालों ने भी और हमने भी, हमारी जो दो बिल्डिंग्स के बीच में ये है तो ये भी खाली पड़ी है। नहीं है इसमें सर, पेड़ था एक,
1: ओके
0: काफी सारे पेड़ हैं, लेकिन मेरी खिड़की से ठीक सामने एक पेड़ दिखता था और उसके ऊपर एक लाल रंग का, एक दिन देखा एक लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ है।
1: ओके अच्छा,
0: मैं देखता था, मुझे लगता था कि ये हो सकता है, वो यही हुआ होगा कि कहीं से उड़ के आ गया, लोगों ने फैलाया होगा अपने जैसे धो के कपड़े फैलाए, वो हवा में उड़ा होगा और यहाँ आके लटक गया उसके ऊपर। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मुझे कहानी लिखवाने के लिए ही जो है वो आके कहीं से टंगा होगा वो कपड़ा। ये कहानी सर, क्योंकि कोरोना शुरू हुआ तो ये है, तो थोड़ा सा शुरुआत तो इसकी है वो हॉरर कह लें या उस तरीके से थ्रिलर कह लें, लेकिन आखिर में वो व्यंग्य कथा निकलती है।
1: व्यंग्य कथा
0: आप कहें अगर तो संक्षेप में सुना दूं, नहीं तो
1: वो हाँ नहीं मैं समझ में आ गया, लेकिन मेरे इस बात की दाद देता हूं आपकी कि आपने आउट ऑफ एक छोटे सी एक एक सीन को एक कहानी में बदल दिया और उसका नाम भी इतना अच्छा रख दिया कि वो लाल गाउन वाली स्त्री जिसको लोगों को
0: चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और मेरी खिड़की के ठीक सामने इसी ऊंचाई पे वो टंगा हुआ था।
1: ओके,
0: मेरे मेरे यहाँ से कम वो 20 मीटर होगा।
1: ओके
0: ठीक है सर,
1: ओके,
0: वो पेड़
1: पहुंचा।
0: अचानक विचार आया, कोरोना था, खुराफात, काम धंधे कुछ थे नहीं, हालांकि मैं तो अपने वीडियोस बना रहा था उसे, मैं जब भी देखता था तो मुझे बड़ा, ये कहते हैं कि हमारा जो मीरा रोड का इलाका है ये बड़ा दलदली हुआ ही करता था, दलदली था ये कई सालों
1: अच्छा,
0: पहले, अब तो सर ये इसने मात मात दे दी बांद्रा और ये मेट्रो भी आ गई हमारे यहाँ बगल में ही बिल्कुल हमारे, तो वो जो मीरा रोड का इलाका ये कहते थे कि यहाँ सारी खाड़ी थी और ये सब, और वहां उन दिनों जिन्हें तड़ी पार कहते हैं, जिन्हें जो अपराधी जिन्हें तड़ी पार किया जाता है, वो सारे मीरा रोड पे आके पनाह लेते थे,
1: बना लेते
0: यहाँ दूर दूर कुछ गांव थे चार पांच। तो कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ कत्ल कर दिए गए और इस दलदली जमीन में फेंक दिया गया उन्हें। अब सर इतना ही काफी। अच्छा हाँ, मेरा जो प्रॉपर जॉनर जो जैसे बात है जॉनर, या मेरा जो असली इंटरेस्ट है जिसमें रुचि मेरी है सर, वो है हॉरर थ्रिलर।
1: अच्छा
0: ठीक है ना, और मतलब वो वाली एंटिटीज जो दुनियावी नहीं है, वो मेरा है, मुझे वो अंदर से ही कुछ है, मुझे पुराने महल ये सब मुझे बहुत अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
1: पैरानॉर्मल, हाँ मैं समझ गया,
0: पैरानॉर्मल जिसको कहते हैं ये एक्टिविटीज। तो फिर हंसी मजाक में ये भी होती थी कि ये इस पे यहाँ पे जो है भूत प्रेत भी बहुत हैं, ये सारी चीजें जब हम आए थे शुरू शुरू में हंसी मजाक में बात होती थी, तब मुझे वो ख्याल आया, तब मैंने ये कहानी लिखी थी कि कोरोना ने लोगों को कैसे, किस तरह से एक स्ट्रांग लोगों को कोरोना अपने साथ ले गया, तब ये कहानी थी। अचानक दिमाग आया, दिमाग में आया, मैंने कहा वो आधी रात को आवाज आती है औरत की, किसी की आई कि सर साहब जी, और खिड़की खोल के देखी तो हवा में तैर रही है वो। मैंने कहा ये कौन, हाँ हवा में, मतलब मैं तो हाँ व्यंग्य जरूर था कि मैंने देखा श्रीमती जी तो सो रही हैं घोड़े बेचू नींद और ये इस तरीके से कुछ है। फिर से आवाज आई, जब मैंने देखा तब दिमाग में आया भाई मैं तो सेकंड फ्लोर पे हूँ, ये कौन है 12-15 फुटी चिमनी देवी, इस तरीके की है व्यंग्य हो उसमें हास्य व्यंग्य। तो ये होता है सर, तो वो खैर ये जो प्रेतात्मा है जिसे कि इसके बारे में लोगों को कभी कभी दिखती भी थी, वो अचानक वो मेरे पास आती है उस दिन कि देखो जी ऐसा है तुम तो उल्लू की तरह रात भर जागते हो, मैं औरों को तो डिस्टर्ब कर नहीं सकती, लेकिन ये है कि मुझे 70-80 साल पहले मैं यहाँ आई थी रहने, सब जंगल झाड़ झंकार थी, ये करके वो बताती है। और उसके बाद कहती है कि मैं इसलिए आई कि आप सब लोगों को बता देना मैं दिखती भी रहती थी और मुझे आप सबसे मोह भी हो गया इतना टाइम से, लेकिन मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ वही जा रही हूँ, मतलब कि देखो किसी ने मेरे लिए मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल रही है और मैं जा रही हूँ और सबको बता देना मेरी तरफ से जो है।
1: अच्छा
0: और ये कह के उसे हल्की सी खांसी उठती है, सूखी खांसी,
1: ओके ओके,
0: फिर थोड़ा सा धसका उसका और तेज होता है और फिर वो कहती है जिनपिंग जिंदाबाद और कह के वो हवा में गायब हो जाती है। किस तरीके की कहानी है सर? हाँ, एक चीज और मैं बताऊं सर, हाँ, वो ये

0: व्यंग्य था कि कोरोना ने अब प्रेतात्माओं तक को मुक्ति दे दी, ये खबर
1: ओके,
0: वो मतलब है जिनपिंग,
1: ओके ये
0: जिनपिंग जिंदाबाद।
1: हाँ,
0: चीन से शुरू हुआ था कोरोना,
1: चीन से
0: शुरू,
1: मैं समझ गया, मतलब ये पंचलाइन थी आपकी। वाह, तो ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ रुक के हम एक या तो 20 साल बाद का गाना सुन लेते हैं या वैकुंठ का गाना सुन लेते हैं। आपकी कहानी की स्टोरी भी कुछ कुछ वैसी है,
0: जी।
1: है ना,
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: एक बात और
1: बिल्कुल।
0: बताना चाहूंगा सर, एक बार और,
1: जी
0: आप
1: जी
0: मतलब देखिए अब ये बोलने का वो फ्लो है वो तो आपके हाथ में कैंची, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जब ये कहानी मेरी छपी माही संदेश में, और सर उसके मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर वो पेड़ गिरा,
1: ओके,
0: वो पेड़ गिरा, वो जड़ से उखड़ गया और वो झाड़ झंखाड़ में खो गई। हाँ ये वाला पेड़ बिल्कुल है ही अब
1: तो ये सहयोग
0: नहीं
1: है,
0: है,
1: कोइंसिडेंस है या कुछ पैरानॉर्मल ताकत
0: पता नहीं सर,
1: है?
0: नहीं वो पैरानॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये है कि अगले दिन सुबह जब मैं सो के जब उठा, मुझे फिर
1: हाँ
0: गहरी नींद आ गई, सुबह उठा तो मैंने देखा कि वो लाल रंग का गाउन टंगा हुआ था पेड़ पे।
1: वो गायब है।
0: उस कहानी में, कहानी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो वो टंगा हुआ ही
1: हाँ
0: था, कहानी की
1: हाँ
0: बात कर रहा हूँ। तो
1: जी
0: ये सारी चीजें हैं, तो सर हो सकता है कि कुछ हो इससे, लेकिन ये छप के आई और छपने के 15-20 दिन के अंदर वो पेड़ गिरा और वो ऐसा झाड़ झंखाड़ में खोया नीचे कि वो लाल कपड़ा कहाँ चला गया, क्या है कुछ नहीं, अब कौन जाके देखे
1: हाँ सही बात है।
0: इतने गंदगी में झाड़ झंखाड़ में, उसमें पता नहीं सांप बिच्छू क्या क्या होंगे। एनीवे
1: चलिए तो फिर रुक के यहाँ अपन गाना सुन लेते हैं शर्मा जी, और इसी किसी जोनर का गाना सुन लेते हैं जो आपने इतनी, आपने तो एक पूरी स्टोरी सी सुना दी हमारे को और मजा आ गया, क्योंकि इसके पीछे जो
0: जी
1: अब हमें भी कोई अगर ऐसा लाल कपड़ा कहीं दिखेगा तो हमारे दिमाग में भी यही कहानी रहेगी, लाल गाउन वाली।
0: लाल गाउन, वो लाल गाउन वाली स्त्री,
1: लाल गाउन वाली
0: ये
1: स्त्री।
0: मेरे कहानी संग्रह अभी छप के आया है, उसमें ही मेरी 8 कहानी है, उनका मैंने
1: अच्छा
0: शीर्षक इस कहानी को जो है इसी का मैंने
1: अच्छा
0: उससे भी शीर्षक दिया हुआ है।
1: ठीक है, चलिए
0: जी सर
1: तो अब अपन एक गाना सुन लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ शर्मा जी, वेलकम बैक। तो
1: जी
0: आपने
1: धन्यवाद।
0: अब कहानी लेखन का जो फेज था उसको से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने टीवी धारावाहिकों और फिल्मों के लिए भी संवाद लिखे हैं, तो
1: जी
0: अब कुछ ये बताइए, जब आप संवाद लिखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा संवाद क्या होता है, जो याद रह जाए या किरदार में घुल जाए, किस तरह से? क्योंकि आपको पता है, दीवार के डायलॉग हैं, इफ्तिखार के डायलॉग हैं, ये बहुत लोग इनको रिपीट करते हैं, शोले के डायलॉग हैं, तो किस तरह
1: देखिए,
0: से, हाउ डू यू व्यू इट, कैसे आपका ख्याल है इसके बारे
1: मैं तो ये समझता हूं, सबसे पहले तो सहज होना चाहिए किसी
0: में? ओके
1: भी संवाद को। फ्लॉरी

0: स्टोरी हर हर किसी किरदार के ऊपर फ्लावरी संवाद नहीं चलते हैं, भारी भरकम संवाद हर किसी किरदार पे नहीं फिट होते, वो किरदार के हिसाब से उस चरित्र के हिसाब से संवाद होते हैं। सहजता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज सर ये है कि अगर कोई अभिनेता संवाद लेखक बनता है या संवाद लिखता है तो वो सबसे अच्छा लिख सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि संवाद बोलने में, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं उसे पढ़ता हूँ, बुदबुदाता हूँ, क्योंकि मैं इतना मैंने रंगमंच किया तो मुझे मालूम है कि जुबान नहीं अटकनी चाहिए। सहजता के साथ संवाद, मेरी नजर में सबसे अच्छा संवाद वो है जो सहजता के साथ आपका शुरू से आखिर तक जुबान से बाहर आए। अगर वो फ्लॉरी है, समझे ना, फ्लॉरी
1: मैं
0: जो
1: समझ
0: जैसे
1: गया।
0: मेरे पास
1: ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए,
0: ऑर्नामेंटल जो कहेंगे वो
1: ऑर्नामेंटल।
0: फुसला
1: मैं समझ
0: हुआ।
1: गया बिल्कुल। बहुत
0: हाँ
1: गहरी बात कह रहे हैं आप, बहुत गहरी बात
0: हाँ
1: कह रहे
0: जी
1: हैं। और जितने भी डायलॉग बहुत फेमस हुए हैं,
0: हाँ
1: चाहे
0: जी
1: मोगाम्बो खुश हुआ या कोई भी, वो बहुत ही सिंपल से डायलॉग थे, एक या दो चीज थी जो फेमस हो गई अचानक। बिल्कुल मैं
0: जी
1: समझ
0: अगर वो
1: बिल्कुल
0: ऑर्नामेंटल है, अगर वो ऑर्नामेंटल है तो भी उसमें बोलने में सहजता होनी चाहिए,
1: बोलने में से अच्छा थे, बिल्कुल सही बात।
0: बोलने में सहज हो
1: और
0: बस।
1: वो एक्टर की एबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है, वो किस तरह निकालता।
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: ये फिल्म सिकंदर के संवादों का आपने अंग्रेजी से हिंदी उर्दू में रूपांतरण किया है, ट्रांसलेशन किया है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: क्या कभी लगा कि जो भाव है वो भाषा से आगे निकल जाता है? ये किस तरह से आप करते हैं ट्रांसलेशन वगैरह, क्योंकि इसकी जो वो है अंदर की जो फीलिंग्स है वो भी तो आनी चाहिए ट्रांसलेशन के अंदर। आप क्या किस तरह से आपने किया था इस सिकंदर वाली बात?
0: सर, ये फिल्म जो थी शायद 2007 या 8 में, ये प्रोड्यूसर इसके सुधीर मिश्रा जी थे और
1: अच्छा, सुधीर मिश्रा जी।
0: पीयूष
1: अच्छा
0: झा ने ये डायरेक्ट की थी, स्क्रिप्ट भी
1: ओके
0: उन्हीं की थी।
1: अच्छा
0: अब ये थी अंग्रेजी में, कश्मीर
1: अच्छा
0: के बैकड्रॉप पे थी
1: ओके
0: जिसमें वो
1: ओके
0: आतंकवाद भी है, जिस लिए इसमें वो दो बच्चे थे, एक परजान दस्तूर और एक वो आयशा कपूर,
1: अच्छा
0: ब्लैक थी ना शायद फिल्म जिसमें वो रानी मुखर्जी के बचपन का रोल किया था उसने, ब्लैक
1: ओके ओके हाँ, ब्लैक
0: जो,
1: थी ना, अमिताभ वाली। हाँ
0: हाँ जी हाँ जी, ये दो बच्चे उसमें तब तक थोड़े बड़े हो गए थे ये, और फुटबॉल भी थी इसमें, इस कहानी
1: ओके
0: में।

0: तो सर अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी में उसके लिए जरूरी है कि वो अंग्रेजी सिर्फ इस काम आती है हमारे, मेरे मेरे जो इस काम आई कि मुझे वो किरदार को समझना है,
1: ओके
0: उस किरदार को समझना। वो भाषा जो है वो ठीक है, वो अंग्रेजी में वो चीज आप अगर हिंदुस्तान में बना रहे हैं, वो
1: हाँ
0: हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हैं, अब वो मजबूरी है आपकी कि आप हिंदी में नहीं लिख सकते, आप अंग्रेजी में सोचते हैं अंग्रेजी में। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, मैं भविष्य झा की
1: हाँ
0: बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो आजकल ज्यादातर ये यहाँ का फैशन है कि अंग्रेजी में और रोमन में ही चीजें चलती हैं। तो मैं तो हाँ जी, तो वो मैंने वो अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी में थी, तो सर वो सिर्फ मेरे इस काम आए कि मुझे किरदार को, मुझे उन चरित्रों को समझने में मदद मिली। अब फिर उसमें कौन से चरित्र कश्मीर के हैं, ठीक है ना, और कौन से कौन बाहर से गए हुए हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा फर्क कश्मीर में, हालांकि कश्मीर में वो उर्दू वाला वैसा मामला नहीं है जो बाकी जगहों पे है, उनकी तो एक कश्मीरी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी अलग दिखाने के लिए दोनों को वो फर्क था कि उनके लिए उर्दू और बाकी जो नॉन कश्मीरी कैरेक्टर्स उसमें थे उनके लिए हिंदी। तो ये मैंने किया था, ये था सर। ये अभी लोग थोड़ा सा, आप तो खैर जानते ही होंगे, पर आम लोगों को समझ में नहीं आता है इस चीज का, उन्हें लगता है ये ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी से नहीं, इसको ट्रांसक्रिप्शन, इसको रूपांतरण कहते हैं, अनुवाद नहीं, रूपांतरण। कि
1: बिल्कुल
0: आपने उसका उसका निचोड़, आपने कोई भी एक डायलॉग है उसका निचोड़ आपने अपने दिमाग में बैठाया और उस चरित्र के हिसाब से आपने उसको
1: अपनी
0: अपने
1: भाषा
0: शब्दों
1: में,
0: में,
1: अपने
0: उर्दू में
1: शब्दों में,
0: या हिंदी में
1: हिंदी में लिख दिए। मैं
0: उस
1: समझ,
0: हिसाब से आपने लिख दिया,
1: मतलब
0: तो वो
1: उसके जो
0: है।
1: भाव है।

0: ओके
1: और उसके जो जो प्रोड्यूसर थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो जयपुर के हैं, नितिन गोस्वामी।
0: अच्छा,
1: आप लोग शायद जानते भी होंगे नितिन गोस्वामी, दोस्त है मेरे, पड़ोसी रहते हैं नितिन। तो वो, लेकिन ये जो अनु मलिक वाला था वो फिर सर वो 9 महीने चला वो, और अचानक वो मीटू वाला जो एक आंदोलन शुरू हुआ उसमें वो प्रोग्राम भी, वो कार्यक्रम भी बंद कर दिया था, क्योंकि अनु कपूर, अनु मलिक साहब का
0: नाम की भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, राइट
1: जी। तो ये था, तो ये तो, ये तो सिनेमा से जुड़े हुए। हाँ, ये जरूर है कि द 90s शो विद अनु मलिक जो है वो मेरे जो प्रॉपर जो जॉनर होता है कि मैं किस जॉनर का, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला हूँ, लेकिन ये मुझे नितिन ने कहा कि रिसर्च है भाई आप कर रहे हो, तो किया मैंने, और जरूरत भी थी, काम काम चलता रहे वाली बात थी। तो अनु मलिक वाला जो है वो मेरा जॉनर था नहीं, क्योंकि वो नई फिल्में थी मेरे लिए, पर फिर भी वो मैंने किया। और मुझे इसलिए भी आनंद आया क्योंकि मैं अनु मलिक के पिताजी सरदार मलिक साहब का इंटरव्यू कर चुका था, और मुझे अनु मलिक का जो जो धुने हैं, जो जो मैंने कभी सीरियसली गंभीरता से लिए ही नहीं, मैंने 70 के बाद के जो जो संगीत है मुझे लगता था ये सारे नए हैं, सिर्फ उनके सुनता था जो पहले से चले आ रहे हैं, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, तो मेरे फेवरेट वो जरूर मैं कलेक्शन मेरे रिकॉर्ड्स। हाँ जी, लेकिन जब मैंने अनु मलिक का, अनु मलिक के जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की और उनके गाने सुनने शुरू किए, मुझे लगा हुआ कि जबरदस्त, भले ही वो आधुनिक गीत संगीत उस तरह का हो कि, लेकिन मिठास इतनी जबरदस्त, वो थोड़ी सी मेरे जो पूर्वाग्रह थे वो भी ढह गए इस मामले में कि नहीं भाई, मैं खैर ये था। एक शो जो आप कह रहे थे विविध भारती के, वैसे तो मैंने और भी लिखे, लेकिन विविध भारती का जो सबसे ज्यादा जो प्रेस्टीजियस है वो है 1957 में विविध भारती की स्थापना हुई थी, 2007 में 50 साल पूरे हुए, और उसमें मैंने 3 घंटे का वो शो, उसके रिसर्च, उसके स्क्रिप्ट, ये सब लिखा था। वो था विविध भारती, इसका सफर विविध भारती करके कुछ था, वो 3 घंटे का शो।
0: अजब,
1: तो वो है सर। जी जी जी,
0: तो चलिए विविध भारती के नाम पे, और जो उनकी मधुर संगीत तो विविध भारती से प्रसारित होता है, हम रुक जाते हैं, एक गाना लेते हैं, फिर मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ आपका जो सबसे प्राइम ऑक्यूपेशन या प्राइम फीचर है उसके बारे में बात करने चाहता हूँ मैं, बीते हुए दिन के बारे में। तो हम बस थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बीते हुए दिन के बारे में बात करते हैं।
1: जी जी जी, जरूर।

0: हाँ, वेलकम बैक शर्मा जी। अब चलिए हम बात करते हैं बीते हुए दिन के बारे में। और आपका ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, बीते हुए दिन की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये शौक था या जिम्मेदारी थी? ये बताइए, किस तरह से प्लान करते हैं आप, कुछ इसके बारे में बताइए। इसमें तो मेरे लिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आप
1: जी
0: बताइए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसके बारे में।
1: देखिए, पुरानी फिल्मों का जो मैं पैशन है मेरा, वो बचपन से ही था। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे, जब बहुत छोटा था घर में वो बजता था, एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था जिसमें श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का वो कार्यक्रम आता था, वो बड़े ध्यान से सुनता था मैं रात को विविध भारती के जो पुराने पुराने गाने, फिर वो डायरी में नोट करना, ये सब सर शुरू से ही शुरुआत हो गई थी जब से होश संभाला उस तरफ का। जो फिर ऐसे ही अचानक कुछ ऐसा हुआ, मुझे एक खास तरह का संगीत बहुत अच्छा लगता था। उस समय मुझे नहीं मालूम कौन संगीतकार कौन गीतकार क्या कुछ नहीं, लेकिन मुझे बताया कि ये जो गाने हैं ये ओपन ईयर के हैं। और ये तब हुआ कि 1969-70 की बात है, हम एक शादी में देहरादून में कहीं थे और ये बाहर बच्चे खेल रहे थे और कहीं किसी घर में वो अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी

0: डेमोग्राफी आती थी, और वहीं पे एक नाम मुझे बड़ा, जो हरीश रघुवंशी, संकलक संकलन करता हरीश रघुवंशी।
1: ओके ओके
0: हरीश सर जो है बाद में वो हमारे पैटर्न बने।
1: ओके ओके
0: जब मैं मुंबई आ गया, हाँ, तो मेरा मेरा ये शुरू ऐसे हुआ कि सन 2000 दिसंबर में मैंने बैंक छोड़ा। तो 2001 में, 2 में जो है, फिर मैं थोड़ा बहुत करने भी लगा। हालांकि पहले भी मैंने कुछ किए थे रोल्स ऐसे, लेकिन उसके बाद फिर मैं टीवी सीरियल्स कुछ किए, मैंने करता रहा। लेकिन मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि ये तो जिंदगी कुछ भी नहीं है कि आप रोज धक्के खाते रहो, ठीक ना। और दूसरा क्या है कि ये टीवी या सिनेमा, ये अभिनेता का माध्यम नहीं है, वो रंगमंच ही है। लेकिन अब एक और मुसीबत थी कि भाई मेरे साथ तो पत्नी और बच्चे भी थे। तो लेकिन इस बीच धीरेन्द्र जी ने ही 2003 में सारा समय शुरू हुआ। धीरेन्द्र जी दिल्ली में थे, मैंने बताया ना, वो जागरण धीरेन्द्र अस्थाना जी, ये फिर जलसत्ता बंद होने के बाद ये दिल्ली चले गए। 3 4 4 5 साल वहां रहे, और फिर इनका मुझे फोन आया। नहीं, पता था कि मेरा पुरानी फिल्मों को लेके मेरा बड़ा जबरदस्त झुकाव है, और मैं रिकॉर्ड्स भी इकट्ठे करने लगा। नौकरी लगी तो सन 82 में, उसके बाद से मैंने रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा, रिकॉर्ड्स दिल्ली जा जाके लेके आता था। बहुत बड़ा कलेक्शन है इस समय मेरे पास, पुराने गाने पर और पुराने रिकॉर्ड्स, ऑलमोस्ट अलमारियां भरी हुई हैं जी। तो 2003 में जो वो सारा समय के जो ये ब्यूरो चीफ होके दिल्ली से यहाँ आ गए, नया शुरू हुआ था सारा समय वीकली। इन्होंने मुझे कहा कि अब तेरे पास समय भी है, तू तो एक काम कर। अच्छा, तब तक मैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का और राइटर्स एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हो चुका था। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हो चुका था और राइटर्स एसोसिएशन का भी मेंबर हो गया था। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था चीजें, सिंटा से मुझे बड़ी मदद मिली। धीरेन्द्र जी ने कहा तो एक काम कर, ये पेपर आ रहा है, मैं तो, और 16 48 पन्नों का पेपर था, 16 पन्ने तो सिनेमा से ही रिलेटेड थे, जो जिसका सारा धीरेन्द्र जी को देखना था। अब सर मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, मुझे जितने नंबर हुआ करते थे वो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के ऑफिस में जाता था, वहां आज भी हैं, वहां पे वो पुराने जो कर्मचारी हैं वो, उनसे मैं कहता था, वो मेरे सामने रजिस्टर निकाल के रख देते थे कि ये लो जी आप ढूंढ लो इसमें से। उसमें से मैं पुराने पुराने रजिस्टर्स में से निकाल निकाल के और नंबर नोट करता था डायरी में, फिर उन लोगों को फोन करता था,
1: फोन करते हो
0: और सारा समय का नाम सुन के जो है मुझे बुला भी लिया जाता था सब जगह, और मैं बता भी देता था जी। तो इस तरह से सारा समय का मेरा जो कॉलम था, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा कॉलम था लोग, एक कॉलम था बाकलम खुद, ये जो जो आज के टाइम के उस मतलब जो काम कर रहे थे, रिटायर्ड नहीं, जो काम कर रहे थे लेकिन लेखक, क्रिएटिव लोग, लेखक, डायरेक्टर, गीतकार, इसमें उनसे बातचीत हुआ करती थी। क्या
1: ठीक है
0: बोलूं क्या याद करूं जो था उसमें, पुराने रिटायर्ड लोगों को। और सर वो समय मेरी ये खुशकिस्मती है, इंटरनेट आ रहा था और पुरानी पीढ़ी एक एक करके जा रही थी
1: ओके ओके
0: धीरे धीरे सर, वो पुराने जो रिटायर्ड। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों का इंटरव्यू कर लिया, और वो एक मजाक भी बन गया था मेरे साथ जो है। मुझे कई बार लोग जानने वाले हंसते थे, मतलब मेरे साथ ये कहते थे कि तू ये मत बताना किसी को कि मतलब तू, तेरा नाम सुनते ही भागने ना लग जाए, क्योंकि होता ये
1: अच्छा
0: था सर, इतने बुजुर्ग, उनका इंटरव्यू लिया, अब पता चला कुछ दिन के बाद वो नहीं रहे। तो ये
1: अच्छा
0: कहते थे कि अगर तू, ये मत
1: अच्छा
0: कहना जी आपका आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि सारे जा रहे हैं, तो तू जिसका इंटरव्यू कर रहा है उसके बाद वो। ये एक मजाक की बात थी, लेकिन ये सच्चाई है कि इस एज में भी लोगों ने, मैं 250 लोगों को ढूंढा, पूरा मुंबई छान मारा मोटरसाइकिल से, चेंबूर से लेके और बांद्रा और कहाँ कहाँ बताऊँ, अपना मरीन ड्राइव, मतलब सब जगह मैं गया। कुछ होंगे इक्का दुक्का, नहीं तो सभी का इंटरव्यू किया मैंने उस जमाने में जो थे।
1: अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, और वो भी ऑफ द कफ है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था पूछूं। आप ये बताइए, जितने आपने इंटरव्यूज किए हैं और यूट्यूब पे भी डाले हैं, इनमें कोई एक खास एक या दो नाम जो आपके जहन में हमेशा रहते हैं कि ये इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया हुआ, उसने बहुत जवाब बढ़िया दिए, और इसके अगेंस्ट दूसरा मुझको ये भी बताइए कि कोई ऐसा इंटरव्यू हो जिसमें आप परेशान

0: हो गए हो, जो तैयारी करके गए हो इंटरव्यू के लिए, वो सब धरी की धरी रह गई हो, उसने बात ही कुछ और शुरू कर दी हो, ऐसा एक अटपटा सा माहौल बन गया हो, ये दोनों बात बताइए। एक तो सबसे बढ़िया और एक सबसे खराब एक्सपीरियंस, कुछ बताइए इसके बारे में। ये तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे।
1: देखिए, अच्छे तो लगभग सभी हो जाते
0: जी,
1: थे, अच्छे होते थे। और उसका कारण आनंद जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैंने आनंद जी
0: अच्छा
1: को फोन किया, कल्याण जी, आनंद जी
0: अच्छा
1: कि आ तो जाओ भैया इंटरव्यू करने, लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी। बहुत
0: अच्छा
1: गहरी बात कह दी थी उन्होंने। होता
0: अच्छा
1: क्या है कि सर, मेरा तो चलिए ये काम है, मैं इसी इसी काम यही काम कर रहा हूं मैं। लेकिन
0: जी
1: होता क्या है कि आम लेखक चला गया, कोई पत्रकार चला गया, अब से वो तैयारी करके तो जाओ, कम से कम कुछ उनके बारे में पहले कुछ
0: हाँ,
1: तैयारियां तो कर लो।
0: पहले रिसर्च करके जाओ, बिल्कुल सही बात है।
1: वो अलग बात है कि आनंद जी का फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया, वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। खैर हाँ, मैं बीच में एक चीज बता दूं कि वही जो इंटरव्यूज थे मेरे, वही बाद में उन्होंने मेरे ब्लॉग बीते हुए दिन की शक्ल में आए वो,
0: अच्छा,
1: ठीक है ना। और वही फिर बीते हुए दिन जो है, फिर वो यूट्यूब चैनल। और अब तो ये है कि वो वाले तो हैं ही, अब तो मैं वैसे भी इंटरव्यू करता रहता हूँ बीच बीच में। पहले घर जाता था लोगों के, अब मैं फोन पे कर लेता हूँ। खैर, तो ये सब चल रहा है।
0: तो आपके
1: किया
0: कितने
1: कि
0: YouTube
1: सबसे
0: चैनल है, कितने फॉलोअर्स है, कुछ हमें बताइए ना इसके बारे में। आपके तो बहुत व्यू
1: सर,
0: हुए हैं इस।
1: फॉलोअर्स तो मेरे 90,000 पहुंचने वाले हैं
0: अच्छा, वाह।
1: नहीं,
0: और
1: ये बहुत कम है
0: ये
1: अगर देखा जाए, ये बहुत कम है देखा जाए। लेकिन क्या है कि मेरा जो आपका हर किसी का एक दर्शक वर्ग होता है, मेरा दर्शक वर्ग सर वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर। हालांकि वो छोटी उम्र के लड़के भी हैं जो बहुत, जैसे मैं जब छोटा था तब भी मैं उस जमाने की फिल्में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, तो
0: देखते
1: ऐसे आज भी हैं, आज भी हैं। और
0: देखते
1: वो जी, लेकिन लेकिन क्योंकि दर्शक वर्ग एक खास तरह का है, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें से भी ज्यादातर जो है वो, उन्हें इंटरनेट का या इन चीजों का नहीं। हाँ, मोबाइल जरूर अब हाथ में आ गया तो अब
0: हाँ,
1: देख
0: तो
1: लेते हैं
0: देख लेते हैं।
1: जी। लेकिन ये जो है, एवरेज हर एक महीने में 400 से 500 मेरे जुड़ जाते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स।
0: हाँ, नेचुरली। तो
1: तो ये
0: आपके
1: है,
0: YouTube चैनल दो है या एक है?
1: नहीं एक ही है सर,
0: एक ही है, बीते हुए दिन।
1: यूट्यूब चैनल एक ही है, और मेरे जो
0: हाँ
1: ब्लॉग हैं वो दो हैं। बीते हुए दिन सिनेमा से संबंधित है, मतलब सिनेमा का इतिहास से संबंधित। और जो
0: ओके
1: एक है मेरा व्यंग्योपासना,
0: अच्छा
1: वो मेरा जो है वो नॉन फिल्म, मेरी कहानियां हैं उसमें, मेरे व्यंग्य हैं, और एक आध कविता भी, गान गीत भी मैंने लिखा, इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू हैं।
0: हाँ
1: जैसे सलमा सिद्दीकी जी का मैंने इंटरव्यू किया था, और वो बड़ा इस
0: अच्छा,
1: तरह का इंटरव्यू, सलमा सिद्दीकी, कृष्णचंद्र, दोनों ने विद्रोह करके शादी कर ली थी, उनके उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था, इन्होंने अपनी पत्नी बच्चों को,
0: अरे
1: सलमा
0: कृष्णचंद्र
1: सिद्दीकी।
0: जो ऑथर थे उनकी बात कर रहे हैं
1: जी
0: आप?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: उसने सलमा सिद्दीकी से शादी कर ली थी? अरे वाह,
1: जी हाँ तो उसका उसका नाम ही, टाइटल ही ये है कि एक आग का दरिया है ये।
0: वाह।
1: उसमें ये नहीं है कि कौन सा किताब लिखी, क्या लिखी, आ जाता है बीच में कहीं कहीं, लेकिन उनका वो वाला सफर कि किस तरह से उनका विरोध हुआ, किस तरह से जो भी है, किस कैसे शादी करवाई गई, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने, वो सारी चीजें हैं। हाँ
0: कृष्णचंद्र भी गजब के ऑथर थे। मुझे भी एक
1: जी
0: उनकी किताब याद आ रही है, एक वायलेंस समंदर के किनारे, मैंने पढ़ी थी बहुत पहले,
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: याद है मुझे उसके में। अच्छा, तो अब करीब करीब हम बकौल अमीर सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। अब ये बताइए कि आपकी जो किताबें हैं, जैसे बीते हुए दिन आपकी एक किताब भी है, इसको क्या आप
1: जी
0: एक तरह की टाइम मशीन मानते हैं? बिल्कुल हमें अपने पिछले जमाने में ले जाती है, किस तरह से, क्या देखते हैं इस किताब के बारे में, कुछ बताइए।
1: देखिए, उसका स्वागत तो बहुत हुआ और बहुत खरीदी भी जा रही है, तो उससे यही लगता है कि इंटरनेट, ये आभासी दुनिया, ये जो है अपनी, इसे आभासी दुनिया ही कहेंगे ना, वर्चुअल वर्ल्ड,
0: वर्चुअल वर्ल्ड,
1: ब्लॉग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ये भले ही लोग कितना देख लें, ये कुछ कर लें, लेकिन जो आनंद हार्ड कॉपी में है, भले ही वो सजा के रखने के लिए भी हो कि अलमारी में रख दीजिए, हमारे पास यहाँ पढ़े भी ना कोई, लेकिन उसका एक अलग ही आनंद है। तो मुझे भी लगता है कि ये चीज ऐसी है सर, जिसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ब्लॉग की ब्लॉग ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। कितनी बिकेंगी, 2,000 4,000, वहां तो इतने जो है वो एक ही दिन में हो जाते हैं इतने व्यूज मेरे। पर इसका आनंद एक अलग है इन किताबों का, और मेरी दो आई है, दरअसल दो क्या चार आई है, बीते हुए दिन एक, बीते हुए दिन भाग दो, और दो हिंदी और अंग्रेजी, तो चार हो गई इस तरह से। और अब तीसरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक में जो है उसमें अभिनेत्रियां हैं, 30 अभिनेत्रियां, दो में अभिनेता पुरुष हैं, अभिनेता, और तीन में बाकी लोग हैं, संगीतकार हैं, गायक गायिकाएं हैं, तो उस तरह से जिसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ छपवाने की।
0: चलिए, तो आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, लेकिन आप मेरे को बस मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं और रूटीन बातों हटा के, कि शिशिर जी आपने जैसे अंग्रेजी में यू हैव डॉन्ड सो मेनी हैट्स, आपने इतनी रोल्स निभाए हैं, तरह तरह के काम किए हैं, अब इस फेज ऑफ लाइफ में अब क्या लगता है आपको कि क्या और करना बाकी है?
1: सर अब मैं कुछ वो नहीं सोचता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे संतुष्टि किसमें
0: है। Very good.
1: और मैं परम संतुष्ट हूँ अब इसमें कि मैं अपने घर के अंदर हूँ, मुझे कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है। अब इंटरव्यू भी जो है मैं फोन पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं बड़ा परम संतुष्ट हूँ। मेरा मेरी मेरी जिंदगी जो है मेरे अपने हाथ में है, मैं अपने हिसाब से है, मेरा दिन जब चाहता हूँ खाता हूँ, जब चाहता हूँ सोता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो सर ये बीते हुए दिन ने मुझे एक पहचान दी है, YouTube चैनल ने भी, और इसने ब्लॉग, बल्कि ब्लॉग पे मेरा थोड़ा जोर कम है क्योंकि वो किताबों के लिए हो गया है, मैंने उसमें कई इंटरव्यूज अभी जो टाइप किए हुए हैं वो डाले भी नहीं है अभी, उनपे वीडियो बना लिए। तो YouTube चैनल जो है वो काफी क्योंकि देखा जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, सर्कुलेशन काफी अच्छा है उसका, तो वो चीज है अपनी जगह सर। मैं मतलब मैं पूरी तरह से मैं और मेरे बीते हुए दिन, बस
0: बस, बस।
1: बाकी भूतकाल की बातें हो गई सर, वो सितार और बाटिक पेंटिंग और वो सारी चीजें, वो भटकाव था।
0: ठीक है ठीक,
1: लेकिन उसने ये जरूर की,
0: आपने मीडिया में अपना एक ही गाई पा लिया है, आप जिंदगी में सब कुछ जो कुछ रचनात्मक संतुष्टि जिसको कहते हैं, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो कहें, वो आपको मिल चुका है, अब जो मिल रहा है वो बस बोनस है, एक बात यही है,
1: बस बस ये कह सकते हैं आप। मतलब मैं आराम से अपने हिसाब से जी रहा हूँ अब, और घर से बाहर मेरा निकलना, मैं कई कई दिन हो जाते हैं सर मैं अपने नीचे नहीं उतरता बिल्डिंग से, मतलब तो फ्लैट से बाहर नहीं जाता, क्योंकि नहीं है, अगर सो रहे हैं तो
0: जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात।
1: और फिर अपना, हाँ ये जरूर है कि मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो चुका है इस दौरान किताबों का, सिनेमा से संबंधित, अब और कुछ नहीं है तो मैं वो पढ़ता रहता हूँ कि भाई अब किसका छापूं, किसका लिखूं, रिसर्च में लगा रहता हूँ कि हाँ भाई फलानी जी की, अब मैं बल्कि बल्कि 10 दिन हो गए मुझे, मैंने एक मायापुरी सेक्शन शुरू किया था, फिल्मों की कहानी और पात्रों का परिचय, तो 1939 की वो पुकार, 1940 की औरत, और फिर वो वहीं रह गया था,
0: उन पिक्चर से लिख रहे हैं आप।
1: अब मैं कर रहा हूँ सिकंदर, सिकंदर अब 41 की, उस पे कर रहा हूँ काम, तो सर वो बहुत बहुत काम हो जाता है सर, बहुत काम हो जाता है, आपको स्क्रीन शॉट्स लेने हो।
0: सिकंदर क्या वो सौरभ मोदी वाली पिक्चर है क्या?
1: सौरभ मोदी वाली 1941 की सिकंदर।
0: ओके, वही, वो तो बहुत बहुत मास्टरपीस मानते हैं उसको हम।
1: हाँ जी हाँ।
0: चलिए तो शर्मा जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी, ये एक खूबसूरत यात्रा थी, नवादा से मुंबई तक की, बैंक की फाइलों से सिनेमा की रील तक की, और बीते हुए दिनों से आज के डिजिटल दौर तक की। आपके अनुभवों में अनुशासन भी है, संवेदना भी, इतिहास की गहराई भी, और भविष्य की दिशा भी। आज की बातचीत से एहसास और मजबूत हुआ है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, वह हमारी स्मृतियों और समय का दस्तावेज भी है। हम खुद को सचमुच सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आप जैसे बहुआयामी और समर्पित व्यक्तित्व से इतनी आत्मीय बातचीत का अवसर मिला। श्री कृष्ण जी शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आने, अपने अनमोल अनुभव साझा करने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: धन्यवाद आलोक जी और समीर जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम।
0: तो श्रोताओं, इसके साथ हमें आज के कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई आवाज के साथ। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

हेलो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलीशा चिनाई की। 1965 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी अलीशा का असली नाम सुजाता चिनाई था। 1985 में उनका पहला एल्बम जादू आया था, लेकिन उन्हें असली पहचान तो मेड इन इंडिया गाने से मिली। आइए दोस्तों, सुनते हैं इन्हीं का ये शानदार गीत।

जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा

कितने ही गाने आएंगे जाएंगे, लेकिन 90 के पॉपुलर सॉन्ग मेड इन इंडिया को लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। 1995 में आए इस गाने को अलीशा चिनाय ने गाया था। इस गाने से ही अलीशा रातों रात संगीत की दुनिया की स्टार बन गई थी। अलीशा की गायकी की वजह से लोग उन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहकर बुलाने लगे थे। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इनका यही मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग।

हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अलीशा चिनाई की करियर की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो सिंगिंग की दुनिया से गायब हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अपने पीछे वो इतने सुंदर सुंदर गाने छोड़ गई हैं जिनका मजा दुनिया हमेशा लेती रहेगी। लीजिए, पेश खिदमत है एक और फड़कता हुआ गीत।

उनके गीत दिल ये कहता है, डूबी डूबी कांटे नहीं कटते, रुक रुक रुक और कजरारे जैसे सुपरहिट गाने हमेशा ही सबकी जुबान पर रहेंगे। लीजिए पेशे खिदमत है एक और बहुत प्यारा सा गीत।

or never. Love me forever. It's now or never. Love me forever.

कहा जाता है कि अलीशा को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय बप्पी लहरी का था। बप्पी दा के साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए। यही नहीं, अलीशा चिनाई ने अनु मलिक के साथ भी कई हिट सॉन्ग्स दिए। लीजिए सुनते हैं उनका एक और हिट सॉन्ग।

2005 में अलीशा चिनाई का करियर सबसे ऊंचाई पर रहा जब उन्होंने कजरारे, बंटी और बबली के लिए गाया। तो हो जाए इनका यही गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आईं। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया, पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली, तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है?

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो अलका को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमेरा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा संगीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आई हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से।
2: एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ मैं हूं आपकी हमनफस, आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, हमारे शो अल्फाज से एहसास तक में आज एक बहुत ही खास और बेमिसाल मेहमान मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनकी जिंदगी इंटरनेशनल बिजनेस, खेल के जज्बे और संगीत की रूहानी दुनिया का एक बहुत खूबसूरत संगम है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी अजीज रमा आनंद जी। रमा जी पिछले 25 सालों से ज्यादा वक्त से इंटरनेशनल फर्मा मार्केटिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना बहुत बड़ा नाम है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में काम करने का उनका बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि अपने स्कूल के दिनों में वो एक बेहतरीन एथलीट भी थी, जिन्होंने एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कबड्डी में भी कई मेडल्स जीते दोस्तों। और संगीत, संगीत तो उनके खून में है। मुझे बता रही थी रमा कि अपने दादाजी के जमाने से चला आ रहा संगीत का शौक उन्होंने आज भी अपने दिल में सहेज कर रखा है। और आज के हमारे इस शो में सबसे खास बात यह है कि रमा ने खुद अपनी सुरीली आवाज में गाकर हमें बेहद खूबसूरत गजलें भी भेजी हैं। रमा, हमारे शो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है, आदाब, आइए तशरीफ रखिए।
3: थैंक यू सो मच आरती जी इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरे SN परिवार के सभी दोस्तों के लिए नमस्कार, एंड आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा।
2: क्यों नहीं रमा, आप इतनी कामयाब बिजनेस, एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, कॉर्पोरेट वुमेन हैं, तो आपके साथ तो बात करके ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी महफिल में आई आज। तो आइए रमा, फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले ये बताइए रमा कि आपकी इस मेहनत और लगन से ये साफ पता चलता है कि सही सोच से किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपका 25 सालों से भी लंबा कैरियर इंटरनेशनल बिजनेस और ब्रांड मैनेजमेंट रहा है, एमएससी केमिस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बाजारों में काम करने का ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
3: मेरे लिए अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बाजारों में काम करने का अनुभव सिर्फ एक प्रोफेशनल जर्नी नहीं है, बल्कि एक लर्निंग और लगातार अपने आप को एक डेवलप करने की यात्रा भी रही है। जो एजुकेशन ने मुझे टेक्निकल एंड कमर्शियल फाउंडेशंस में स्ट्रॉन्ग किया, बट इंटरनेशनल मार्केटिंग करके ये मैंने सीखा कि जो मेजर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो है ट्रस्ट। सो मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी बिजनेस हम डेवलप करें वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल ना होते हुए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बने। सो That's how it is. Ground realities को समझकर work करने से ज्यादा सफलता मिलती है।
2: जी, और लोगों से direct inter आप मतलब उनसे ताल्लुक बना के उनसे मिल के, you mean to say that?
3: Yes. So, सबके cultural differences होते हैं, उनके जो market dynamics और उनके जो cultural boundaries होते हैं, उनका जो यू नो पेमेंट पैरिटी पैटर्न्स होते हैं, बाइंग पैटर्न्स होते हैं, वो सब समझ के अगर ग्राउंड में रह के अगर काम करें तो ज्यादा सक्सेस मिलता है।
2: बहुत खूब मतलब आप पूरे तरीके से पूरी स्ट्रेटजी को बना के और उसी तरीके से ही आप काम करती हैं। बहुत
3: जी
2: रमा जी, आप ये बताओ कि आपने मुझे बोला था कि आप अपने स्कूल के दिनों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कबड्डी में मेडल्स जीत चुकी हैं, तो खेल के मैदान से मिली इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ और लीडरशिप को कितना फायदा उठाया, मतलब पहुंचाया आपको?
3: हाँ, ये सही है। स्कूल में मैंने बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो जीतना और हार को करना ये एक चीज तो स्कूल से ही सीखने का मौका मिला है। बट ये मैं बोल सकती हूँ कि यू नो लाइक स्पोर्ट्स अपने जो बिजनेस होते हैं या फिर लीडरशिप में भी कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे यू नो हमें टारगेट्स होते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मार्केट्स अनसर्टेन होता है, हमें हमारा कंपटीशन पता नहीं होता है, है ना। बट द मेजर थिंग इज कि हम डटे रहे, अपने आप पे बिलीफ रखे और यू नो जब तक के जैसे स्पोर्ट्स में है आखिरी लाइन तक नहीं पहुंचो तब तक गेम खत्म नहीं होता है। सो सिमिलरली टिल you don't quit, you have an option to succeed. So मैं यही सोचती हूँ कि you know discipline और मेहनत, you know pressure के time हम कैसे अपने आप को काम रखे, team spirit को कैसे maintain करें, अगर ये हम कर सकते हैं तो कोई भी struggle से हम comeback कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही बोली हैं आप। खेल इंसान को वैसे हर मुश्किल सिचुएशन में मुकाबला करने का एक जो एक बात सिखाता है, वही बात आप मतलब कह सकते हैं कि हम बचपन से सीखते हैं और फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम उसको उसी तरीके से ही लागू कर देते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक यू मीन टू से, है ना?
3: जी जी बिल्कुल।
2: तो रमा, इसी नोट पर चलिए फिर आपकी गाई हुई बहुत खूबसूरत गजल प्यार का पहला खत लिखने को वक्त तो लगता है, ये आपने हमें गा के भेजी है, तो आइए सुनते हैं आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये खूबसूरत गजल

0: बहुत बहुत खूब। क्या मखमली आवाज और कितना दिलकश अंदाज था रमा आपका, कितनी खूबसूरत तरीके से आपने ये गजल गाई है।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: रमा आप ये बताइए कि आपके परिवार में, जैसा कि आपने कहा, आपके वालिद की तरफ से यानी आपकी पैटर्नल साइड में कई पीढ़ियों से आपने कहा कि म्यूजिक का बहुत ही खूबसूरत माहौल रहा है, इतनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ में संगीत आपके लिए किस तरह सुकून और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है?
1: एक्चुअली हाँ, मेरे पापा के साइड से संगीत का बहुत खूबसूरत माहौल रहा है हमेशा से ही। मैं कह सकती हूँ कि संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है हमारे लिए। इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ, जैसे कह सकते हैं, जिंदगी का एक हिस्सा ही है,
0: जी
1: और ये परवरिश और यादों से भी जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जब लगातार कई इमोशंस के बीच हम नॉर्मली रहते हैं, तो उस वक्त संगीत मेरे लिए एक तरह का इमोशनल रीसेट बन जाता है। कितना भी दिन चैलेंजिंग क्यों ना रहा, कुछ देर अच्छा म्यूजिक शाम को आप सुन लो तो
0: जी
1: मन एकदम शांत हो जाते हैं और आप अपने आप से फिर रिकनेक्ट करने लग
0: बिल्कुल
1: जाते हैं। तो मेरे लिए संगीत की सबसे खूबसूरत बात यही रहेगी कि इट इज अ काम इन द सराउंडिंग केओस ऑफ लाइफ, सो इन शॉर्ट हैप्पीनेस।
0: बिल्कुल मतलब अपने सोल को भी तो हमको उसको भी तो खुराक देनी होती है ना। मेरे
1: जी जी बिल्कुल
0: नजदीक संगीत से बढ़कर आप अपने आपको रूहानी खुशी शायद ही किसी और चीज में मिलती हो, मिलती
1: जी
0: है कई भी और चीजों में, पर ये एक अलग तरह की खुशी होती है। तो
1: हाँ
0: बहुत खूबसूरत म्यूजिक वाकई रूह को बहुत सुकून देता है। तो रमा आप हमें ये बताइए कि
1: जी
0: आप तमिल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है,
1: जी
0: तो आप कई भाषाएं भी समझती हैं और मुंबई में भी रहती हैं तो अलग अलग कल्चर और भाषाओं के इस माहौल ने आपकी पर्सनैलिटी को कितना निखारा, क्या फर्क पड़ा आपको, क्या फील करती हैं आप?
1: एक्चुअली बचपन में जहाँ हम रहते थे, वहाँ हम सराउंडेड बाय डिफरेंट अलग अलग भाषाओं के लोग थे, तो उनकी संस्कृतियां भी अलग थी। और सिमिलरली शहर में, मुंबई जैसे शहर में रहना, और फिर प्रोफेशनल करियर में भी अलग अलग देशों और कल्चर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो एक हिसाब से मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये हुआ कि इंक्लूसिवनेस एक हैबिट हो गई है।
0: जी
1: और सिर्फ कम्युनिकेशन के अलावा उनके कल्चर्स को अपनाना, उनके
0: जी
1: कल्चरल सेंसिटिविटीज को रेस्पेक्ट करना,
0: जी
1: तो उस हिसाब से एक पर्सनल कनेक्शन उनके साथ अच्छी बन जाती है। तो यही है कि ओपननेस और एडेप्टेबिलिटी का जो होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मैं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सही गलत का जो मापदंड होता है वो नहीं होता। जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है उनके लिए कुछ और हो, या उनके
0: बिल्कुल
1: लिए जो सही है वो मेरे लिए, बट वी डोंट इंट्रूड ईच अदर स्पेस, ये दिस
0: बहुत
1: काइंड ऑफ सपोर्ट स्टेइंग इन कॉस्मोपॉलिटन सिटी हैज गिवन मी।
0: जी बहुत खूब बहुत खूब। जुबान तो कोई भी हो, आपके संगीत का एहसास तो वैसे भी हर दिल में पहुंच ही जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और डिफरेंट, आप इतनी भाषाएं जानती हैं, आप इतने जगह आप बाहर भी घूमती हैं, तो सारी चीजों का मतलब उससे आपके होराइजन वाइडन हो जाते हैं और आपको बहुत फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी में इस चीज का। क्योंकि हम मैं ये खुद सोचती हूँ कि अगर हम बहुत कोई चीज के बारे में बहुत अच्छा जानने लग जाते हैं, तो अपने दिल से ही हमको लगता है जैसे हमने कुछ हासिल किया है। तो वो खुशी जो होती है वो आपके चेहरे पर झलकती है, और इतना नॉलेज हो तो फिर आपकी पर्सनैलिटी तो निखरेगी ना।
1: जी, बिल्कुल, या
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए रमा, फिर इसी खुशी में सुनते हैं आपकी दूसरी गजल जो बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। अरे वाह रमा, गा ही दो फटाफट 2 लाइनें इसकी।
1: ओके।

0: वाह, क्या बात है। पता नहीं कितने साल हो गए इसको सुनते हुए, और जब तक जिंदा है सुनते ही रहेंगे ये गजल, और इसका कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू सो मच रमा, इतनी खूबसूरत अनप्लग्ड वर्जन हमें सुनाने के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मानना है कि पर्सनल हैप्पीनेस और प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो होती है वो साथ साथ चलते हैं, तो एक बिजी करियर के साथ आप अपने फैमिली और बच्चों के बीच ये बैलेंस आपने कैसे बनाया?
1: मैं ये मानती हूँ कि पर्सनल हैप्पीनेस और प्रोफेशनल एक्सेलेंस एक दूसरे के साथ ही चलते हैं।
0: जी
1: जब तक आप पर्सनली खुश और इमोशनली फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपके वर्क में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली नहीं दिखेगा।
0: बिल्कुल
1: सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रोफेशनली चैलेंजिंग लाइफ, मैंने ये इंश्योर किया कि हर स्टेज पे मैं, डिपेंडिंग ऑन द कमिटमेंट लेवल रिक्वायर्ड, मैं अपनी फैमिली और करियर को बैलेंस करके चलूं। बच्चों को भी थोड़ा इंडिपेंडेंट किया कि वो अपने काम, बेसिक चीजें खुद कर सके, थोड़ी सेल्फ स्टडी खुद कर सके, है ना। फिर फैमिली ने भी इसमें समझा कि इनको प्रोफेशनली बहुत चैलेंजिंग करियर है, तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड उसकी वजह से आई कुड टेक फॉरवर्ड माय एम्बिशंस एंड डू वेल इन माय करियर।
0: बिल्कुल, आई नो अगर मतलब बच्चे सपोर्टिव हों, बच्चे धीरे धीरे अपने आप सपोर्टिव हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से अगर अपने प्रोफेशनल माँ बाप को देखते हैं तो उनमें अपने आप ये समझ आ जाती है, और फिर हस्बैंड की सपोर्ट हो तो फिर बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली फैमिली ही इंसान की असली ताकत होती है, और ये बात
1: हाँ, यही
0: आज।
1: है कि
0: हाँ बोलिए।
1: कि अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पे जितना हमें गर्व होता है, उतने ही
0: बिल्कुल
1: पर्सनल लाइफ में जो सुकून है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो रमा ये बताओ कि आप यंग जनरेशन को मेंटोर करने और फ्यूचर मार्केटिंग लीडर्स तैयार करने में यकीन रखती हैं, आज के यूथ को आप टीम वर्क और डिसिप्लिन को लेकर क्या टिप देना चाहेंगी?
1: ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मैं ये कहूंगी कि टैलेंट इनिशियल थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी ही आगे लेके जाएगा। सो तो उनको ये डेवलप करना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालें, वो पेशेंट रहे, बिकॉज आज की जनरेशन पे पेशेंस बहुत कम है। टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, किसी की बातें वो सुन के ले, ये भी सो हाँ, टीम वर्क की भावना से काम करे, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन। बिकॉज ये तो है कि जैसे हम आज एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल 100 मीटर रेस, ये तो लंबा मैराथन है। तो हमें शुरू में थोड़ा स्लो ही जाना पड़ेगा एंड टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन तक एनर्जी और अपनी सारी थ्रस्ट रख के फिर हमको फिनिश लाइन तक भागना पड़ेगा। तो ये ट्रेट्स जो है ना, जैसे कंसिस्टेंसी है, एफर्ट्स है, डिसिप्लिन है, यही आपको लास्ट लेग तक लेके जाएगी।
0: यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल डिसिप्लिन और टीम वर्क ही इंसान को किसी भी फील्ड में कामयाब बनाते हैं। ये बिल्कुल सही बोला आपने रमा। तो आइए रमा, अब आपकी खूबसूरत सी मखमली आवाज में गाई हुई प्रोग्राम में अब आपकी हम एक और गजल सुनते हैं, और ये गजल मतलब क्या गाया है यार आपने। मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। क्या खूबसूरत गजल है रमा। बहुत खूबसूरत चॉइस है आपकी। तो चलिए दोस्तों, रमा के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं उन्हीं की गाई हुई, उन्हीं की मखमली आवाज में ये खूबसूरत सी गजल।

0: वाह क्या बात है, गजल के एक एक लफ्ज में कितना दर्द और साथ ही कितनी मिठास थी। रमा बहुत खूबसूरत गाया, मजा आ गया सुन के।
1: थैंक यू सो मच आरती जी।
0: मुझे उम्मीद है हमारे दोस्तों की भी यही कैफियत होगी जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको। तो रमा आप ये बताइए, एक फर्मा लीडर, एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक बहुत ही समर्पित माँ, और एक बेहतरीन आर्टिस्ट के रूप में अपने इस सुहाने सफर से आज हमारे विमेन लिसनर्स के लिए आप क्या खास मैसेज देना चाहती हैं?
1: हमारे वुमेन लिसनर्स को मैं ये कहूंगी कि एक वुमेन का कई रोल्स होता है। आप देखिए, बेटी है, पत्नी है, और हर रोल का एक रिक्वायरमेंट होता है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बीच में भी अपने खुद को, अपनी आइडेंटिटी को कभी खोने ना दीजिए।
0: जी
1: अपने सपनों को कभी छोटा मत कीजिए,
0: आपके या
1: बिकॉज दैट इज द वन विच विल गिव यू फ्यूएल फॉर योर ओन सोर्स। जब आपको आपकी खुद की ऊर्जा उसी में से मिलेगी,
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं उसको जीवित रखना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले, टाइम मिले, उसको पूरा करने के लिए जरूर एफर्ट डालना चाहिए।
0: जी
1: तो मैं यही कहूंगी कि सक्सेस का मतलब खुद तय करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी परसेप्शंस होती है। हो सकता है कि जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑल्टरनेट छोड़ ही दो। तो अपने हिसाब से, अपने खुद के एनवायरनमेंट में जो भी पॉसिबल है, उस सिचुएशन में भी अपने खुद की आइडेंटिटी, आपकी खुद की इच्छाएं, इनको पूरा करने का जरिया जरूर ढूंढना चाहिए किसी ने भी।
0: बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। एक्चुअली मैं तो ये समझती हूँ, सब अपने मेल दोस्तों से माफी चाहते हुए, कि औरतों में हम वुमेन में ये एक नेचुरल एक सिक्स सेंस होती है, ज्यादा जहीन होती हैं और हर चीज को अच्छे तरीके से टैकल करना जानती हैं वो, लेकिन उसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करना और जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई फर्क ना आए आपके किसी भी चीज में, तो ये भी बहुत जरूरी है और हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत खूबसूरत आपका मैसेज है, तो कितना इंस्पायरिंग भी है। तो आइए दोस्तों, इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अब रमा जी की गाई हुई एक और खूबसूरत सी गजल जो पंकज उदास जी की आवाज में है, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने सुन रहा होगा कोई। रमा बहुत सुंदर गजल आपने गा के भेजी है, और आइए दोस्तों अब सुनते हैं फटाफट ये खूबसूरत गजल।

0: वाह, क्या नफासत और कितनी गहराई है आपकी गायकी में रमा। सॉफ्ट टू यू डियर, यस सच ए स्वीट हार्ट, बहुत सुंदर गाती हैं आप।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: ये बताइए रमा, बचपन की खूबसूरत यादों से लेकर मुंबई और दुनिया के कई देशों में काम करने तक, आज आप अपने इस सफर को अगर मुड़कर देखती हैं तो दिल में सबसे पहला एहसास क्या आता है?
1: अगर मुझे अपने पूरे सफर को पीछे मुड़ के देखने का देखना है तो मैं यही कहूंगी कि द फर्स्ट फीलिंग दैट आई हैव वो है ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी, व्हाट यू कॉल, क्योंकि बहुत लाइफ हमेशा आसान नहीं रही थी, उतार चढ़ाव वाले थे,
0: जी
1: बट हर एक मोड़ पे जो पेरेंट्स से लेके मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जिन्होंने मुझे फोर्स किया एमएससी में ज्वाइन करने के लिए,
0: जी
1: देन आई वुड से देन मेरे फर्स्ट जॉब में जो मेरे मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया ताकि
0: जी
1: मैं अपने आप को एक इंट्रोवर्ट से वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनी हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: जब मैं कोविड के टाइम में मैंने ये करियो की गाना शुरू किया तब मुझे
0: जी
1: बहुत अच्छे मेंटर मिले जिनके वजह से मैं आज ये गजल्स गा सकती हूँ।
0: वाह।
1: मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती यहाँ।
0: वाह।
1: सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज फर्स्ट थैंक गॉड, और उसके बाद थैंकफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज।

0: बहुत खूबसूरत है, एहसास हैं आपके बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो रमा, मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इस खूबसूरत सफर की बातें शेयर करने के लिए और अपनी सुरीली आवाज में गाकर भेजी गई इन गजलों से हमारी महफिल सजाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने से पहले आप अपने दोस्तों से भी बाय बाय कीजिए, और क्या पैगाम उनको देना चाहेंगी आप?
1: मैं थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंटली मेरे ये प्रोग्राम को सुना, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने। एंड मैं अपने फैमिली को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट दिया है।
0: जी
1: दे
0: जी
1: हैव बीन माई वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स, यू नो। एंड आपको तो स्पेशल थैंक्स, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: अरे
1: सो कीप सिंगिंग, सिंगिंग इज लाइक मेडिसिन,
0: यस यस
1: यू
0: ऑफ
1: नो,
0: कोर्स या
1: विदाउट द नीड टू हैव मेडिसिन।
0: यस ऑफ कोर्स
1: सो डेफिनेटली गाते रहिए, दिल खुश रहेगा, यू नो। हर मूड को जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, गाने बताते हैं, हमें फील
0: बिल्कुल सही
1: कराते हैं,
0: बात,
1: हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कराते हैं, तो जरूर
0: बिल्कुल
1: गाते रहिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कई बार ही 4 बजे उठ के भी मेरा मन करता है तो गाने लग जाती हूँ, यू नो। मुझे जब मोहम्मद रफी साहब का कोई गाना गाना होता है तो 4 बजे उठ के वो थोड़ी सी आवाज

0: बहुत बहुत शुक्रिया रमा का, जो उन्होंने हमें इतनी सुंदर और इतनी सुरीली गजल सुनाई, और इस गजल के इस सुरीले समापन के साथ अब हमारा आज का ये एक्सक्लूसिव शो अल्फाज से एहसास तक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मुंबई से हमारी मेहमान रमा आनंद जी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और डिसिप्लिन से आप किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के आर्टिस्ट और फैमिली के प्यार को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तो चलते चलते रमा आनंद जी की इस खास शख्सियत के नाम दो सत्रें पेश करती हूँ। वो ये हैं दोस्तों कि मेहनत और लगन से जिसने हर राह को आसान बनाया है, मेहनत और लगन से जिसने हर राह को आसान बनाया है, सुरों की मिठास से अपने हर एहसास को भी जग सजाया है, वही सच्चा, वही इंसान सच्चा मुसाफिर है इस दुनिया में ऐ दिल, जिसने काम के साथ साथ अपनों के दिल में भी घर बनाया। इस खूबसूरत ख्याल के साथ अब वक्त हो चला है कि आपकी हम नफस, आपकी रेडियो दोस्त आपसे ले इजाजत। वादा है कल ठीक इसी वक्त फिर हाजिर होंगी कुछ नए एहसासों और आपकी पसंद के नगमों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों से बहुत मोहब्बत कीजिएगा और गुनगुनाते रहिएगा, गाते रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए।

0: હું છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના સમય પર હાજર થતો રહું છે. આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે કૃષિમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતીની વાતો. તો કિસાન ભાઈઓ, જેવી રીતે હાવ જગ્યા જગ્યા પર ફૂલનો ઘણો ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો છે અને મંદિરોમાં, કાર્યક્રમોમાં અને વિવાહમાં પણ ફૂલની ઘણી માંગ રહેશે. તો કિસાન ભાઈઓ, એ એક નગદી ફસલ છે અને એની ખેતી કરીને આપું ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ શકીએ. કેવી રીતે કમાઈ શકીએ એ બધી વાતો આપું સાંભળવાના છે કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકો દેખી, હાથે હાથ એક એવા કિસાન ભાઈ દેખી જ્યાં ગેંદાની ખેતી કરીને ઘણો અસલ અને મોટો લાભ કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર ની કરી અને હા મળી કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતી.
2: हमारे देश में गेंदे के फूल की एक अलग ही जगह है. जी हाँ, धार्मिक कामों की बात हो या फिर सामाजिक अवसरों की बात हो, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है. ये बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है. और साथ ही बता दें, इसकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक तरोताजा बना रहता है. और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है. इसकी खेती का स्तर काफी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में. तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे. आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यवसायिक खेती के बारे में. गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है. और बता दें आपको कि 12 मासी इसकी खेती की जा सकती है. ऐसे में किसान अगर इसकी व्यवसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं. तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें.
3: भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है. धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है. भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है. गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है. कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है. गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं. इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसकी खेती इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं. बात करें इसकी उत्पत्ति की तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मेक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया. आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है.
2: मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं. पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है. साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं. आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं.
3: अपने औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है. आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है. मोचाने पर सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं. इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है.
4: गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में उपयोग किया जाता है काफी तौर पे, और इसको मुख्य तौर पे माला बनाने में काम में लिया जाता है. मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे. और अगर इसकी आजकल देखे जाएंगे तो गेंदे के पुष्पों से गुलाल बनाने की विधि भी स्टैंडर्डाइज की जा रही है. और आप देखेंगे ये जो है गेंदा, इसमें एक और मुख्य तौर पे मैं बताना चाहूंगी, ये कैरोटीनॉइड रिच होता है. इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है. तो इसको मुर्गी आहार में मिलाया जाता है है और इसकी अंडे का जो पीलापन होता है, एग योक बोलते हैं, उसका पीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग यह है कि ल्यूटिन को कहते हैं कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम में मदद करता है, जिससे और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, तो उससे बचाता है।
2: चाहे फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यवसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं।
3: गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बड़बार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं।
4: जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर एक पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में, लगभग 5-6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मेक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है, उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो चुका है और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफी इसका प्रचलन हो रहा है।
3: गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव, जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवंबर दिसंबर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए।
4: इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है।
3: गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में मिला दें ताकि उपज अच्छी मिल सके। 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दें। यूरिया को 3 बराबर भागों में बांटकर 1 भाग एवं सिंगल सुपर फास्फेट व पोटाश की पूरी मात्रा को रुपाई के समय दें। गेंदे की बुआई अगर किसान लाइन में करें तो लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई गेंदे की खेती को थोड़ा ऊंचाई दें ताकि पानी का जमाव ना हो सके, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है।
4: गेंदे को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करने पड़ेंगे। नर्सरी की बेड की लंबाई आप 3-4 मीटर तक रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाएगी और इसको ऊंचा रखना पड़ेगा ताकि इसमें पानी रुके ना, तो उसकी हाइट आप रख सकते हैं 10-15 सेंटीमीटर। आपको इसको पंक्ति में लगाना पड़ेगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जब आप इसको लगा दीजिएगा तो आपको इसके ऊपर FIM से ढक दीजिएगा। आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है रोपण के लिए और हम इसको मेन मुख्य खेत में लगा सकते हैं। मुख्य खेत में भी इसको लगाने की अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते थे, और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पूसा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा।
2: कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे।

Bye.

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है।
2: इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आप सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में ये अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फास्फोरस लगता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए।
0: किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है।
2: इसमें दो प्रजातियां पाई जाती है, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा जिसको जाफरी भी कहा जाता है वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है।
1: वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कोच आते हैं।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक है, वहाँ से भी वैरायटीज निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहाँ हरियाणा में यहाँ से 2 वैरायटीज निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी।
0: गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
1: रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रुपाई के 60 पर गेंदा में फूल आता है जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए।
2: गेंदे में शीर्ष लोचन भी किया जाता चिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे किया जाता है क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। अगर शीर्षलोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी आंतरिक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है, जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षलोचन की क्रिया को करते हैं, उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसमें हम 4 से 5 बाई तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पे निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड आती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर।
0: फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है।
1: अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक, चूर्णी, फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें।
2: अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीजन में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफी ज्यादा आते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिरेट 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोर्स स्टॉक, रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे।

0: क्या होता है, हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपए रेट है, तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृत्त स्तर पर करेंगे, तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है। अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें, और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-68-35-90-89।
1: उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी।
2: वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गांव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के हवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है।
3: मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं। गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पे अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो दो तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो हमें इसमें 20,000 रुपए की लागत आई 2 एकड़ खेत में हमारे। उसके बाद 3 महीने में हमारी फसल तैयार हुई और उसमें हमें मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का। तब से हम साहब गेंदा कर रहे हैं।
2: मान सिंह बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सफल किसान हैं। इन्होंने 3 एकड़ खेत में गेंदे की फसल तैयार की जिसमें इन्हें 30,000 की लागत लगी। इन्होंने कड़ी मेहनत कर गेंदे की खेती में सफलता हासिल की है। गेंदे की फसल से लाभ होता देख अब मान सिंह परंपरागत खेती करना छोड़ केवल गेंदे की खेती ही करने लगे हैं। अपने खेत में प्राप्त उपज को बरेली के मंडी में जाकर अच्छे दामों पर उसे बेचते हैं। इनके अनुसार गेंदे की क्वालिटी के आधार पर बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है।
4: पहले गेहूं धान कर रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूं, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूं धान बोई 1,000 रुपए, 900 रुपए कुंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूं था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं, इससे ज्यादा गेहूं से ज्यादा मार्जिन, धान से ज्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्या जो है हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। 1 एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में, मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग लगभग मान लो 1 एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा, और 30,000 से 35,000 की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी खाद, पानी दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज्यादा कर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मंदिर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है।
2: अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सह फसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
5: आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको

0: स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। 6 डिग्री के आसपास आपको इस रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10 12 दिन तक चल सकता है।
1: गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसको इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं।
2: तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सह फसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है, और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यवसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे।
3: तो किसान भाइयों, हमने अपनी बात हम ली गल रसियाना फूल नी खेती नी वातियो एतरे गेंदा ना फूल नी खेती नी वातियो इनो फूल नो हार बने से अने हार नी

0: संसाधनों की कमी है वो सामान्य तरीकों से काम चला रहे हैं और जिनके पास संसाधन है उनकी दिलचस्पी हाईटेक विधियों में है। अब यहाँ से एक सवाल जन्म लेता है कि आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई इंसान पशुपालन जैसे व्यवसाय को भला क्यों अपनाना चाहेगा। ऐसे ही सवालों को लेकर हम नोएडा के एक डेयरी फार्म जा पहुँचे। ये अत्याधुनिक फार्म लंदन से लौटे एक नौजवान दुष्यंत भाटी का है। वो MBA करने के लिए 7 समंदर पार गए थे। डेयरी फार्म का आइडिया वहीं से आया।
1: डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बहुत से युवा आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल डेयरी उद्यमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, दुष्यंत भाटी जी। आइए उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर जानते हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में जब हमने जाना तो बहुत ही खास बात ये हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी आप उच्च शिक्षा हासिल करके आए हैं, लंदन में आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद कैसे ख्याल आया कि डेयरी क्षेत्र से जुड़ा जाए और इसे एक उद्यम की तरह शुरू किया जाए।
2: जी मैम नमस्कार, आज हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया, एजुकेशन मेरी बेसिक जो प्राइमरी हुई है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इंडिया में अपने अंडर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी लंदन से MBA से। तो वहाँ पर मैंने जितना भी अपने जितने डेयरी फार्म्स थे, जो इस तरीके के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज थी, मैंने उनको स्टडी किया। उसके बाद मैंने देखा करके कि भाई अपने इंडिया में भी इस तरीके का एक लेवल हमें लाना चाहिए।
0: दुष्यंत ने लंदन में डेयरी फार्म की स्टडी जरूर की थी, लेकिन एक MBA छात्र के लिए ये नया क्षेत्र था। यही वजह है कि डेयरी फार्म को इन्होंने भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनाया, प्राथमिकता डेवलपर बनने की रखी। फिर इनका मन बदल गया और भविष्य की योजना वर्तमान बन गई। इन्होंने काम शुरू करने से पहले NDRI करनाल से प्रशिक्षण लिया, कुछ डेयरी कंपनियों के मैनेजरों के साथ वक्त बिताया और पंजाब के किसानों से मुलाकात की।
2: जितनी लैंड की अपनी स्केयरसिटी आ रही है उसको देखते हुए कि भाई नंबर ऑफ जो लार्ज फार्म्स हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हम लोग आगे जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करेंगे मार्केट में।
0: इस फार्म में फिलहाल 100 से भी अधिक गायें हैं। आज से 5 साल पहले इसे महज 6 गायों के साथ शुरू किया गया था। हष्ट पुष्ट शरीर और दूध से लबालब भरे थन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ काफी मेहनत की गई है और गायों का बहुत ख्याल रखा गया है।
1: अत्याधुनिक तकनीक से डेयरी फार्म स्थापित करने के बाद भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे में दुष्यंत भाटी जी किस तरह से अपने फार्म में पशुओं के स्वास्थ्य का और उनके आहार का ध्यान रखते हैं?
0: यहाँ पर गाय पूरी तरह आजाद है। फार्म में ना तो आपको खूंटा नजर आएगा ना गायों के गले में रस्सी। इनका जब मन करेगा खाना खाएंगी, जब मन करेगा पानी पिएंगी। गाय सफाई को पसंद करती है, इसलिए फार्म में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो शावर और पंखे चल रहे हैं। अक्टूबर में इन्हें बंद करना होगा और सर्दियां आने पर गौशाला में पर्दे लटकाने होंगे। दुष्यंत का मानना है कि बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी चाहिए।
2: गले के टैग्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है कि उनका डेटा हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि उनका मास्टिकेशन कितना है, मास्टिकेशन मींस जुगाली कितनी है और दूध कितना दिया उन्होंने, उनका टेम्परेचर लेवल क्या है, उनकी मूवमेंट कितनी हुई है, कितनी देर उन्होंने फूड का इंटेक किया है। तो नंबर ऑफ आवर्स वो हमें कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं जिससे कि हमें डेटा प्रोवाइड होता है कि हम देख सकें कि भाई गाय को कितना उसने पूरे दिन में अपनी मूवमेंट करी है, कितना हैबिट्स में खाना खाया है और उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना हमें दूध उसने प्रोड्यूस करके दिया है। और उसी के साथ लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सारा, जिसमें कि गाय को बांधा नहीं जाता है और उसमें उसको खाना 24 घंटे के लिए दिया जाता है, 2 बार हम लोग फीडिंग करते हैं, मिल्क अनलिमिटेड, वाटर अनलिमिटेड है।
0: हर गाय के आहार की गणना की जाती है, उसके खान पान का निर्धारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, वो किस स्टेज में है और दूध कितना दे रही है। हर 15वें दिन डाइट चार्ट बदल दिया जाता है।
1: आपसे मैं पशु के आहार के बारे में और विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस किस तरह का आहार आप उनको देते हैं और क्या उसमें भी मौसम के अनुसार तब्दीली करते हैं?
2: जो आहार बनता है पशु का वो 4 चीजों से बनता है, जिसमें कि हम लोग हरा चारा लेते हैं, भूस लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड डाइट होती है और साइलेज हम लोग प्राइमरी इन 4 चीजों पे रखते हैं। बाकी एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह और होते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द

0: तो उसके अंदर भी हम मेंटेन करते हैं कि भाई कितना साइलेज देना है, कितना भूस देना है, कितनी फीड देनी है, फीड की जो इम्प्लीमेंट जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एज पर दी मौसम चेंज करते रहते हैं।
1: कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से पशुओं को चारा मिलता है और पशुओं से फसलों को खाद। दुष्यंत के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है मगर इतनी भी नहीं कि 100 गायों का पेट भर सके। चारे के लिए उन्हें दूसरे किसानों से संपर्क करना होता है। इस तरह उनका डेयरी फार्म आसपास के किसानों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है।
0: हरा चारा हम लोग किसानों से उगवा लेते हैं, अपने पास भी जमीन है उसमें भी हम उगवाते हैं, और मक्का हम लोग बाहर से प्रिक्योर करते हैं। तो इस तरीके के इनके अलग अलग डाइट्स होती हैं जो हम मौसम के हिसाब से उससे फीड बनवाते हैं। कुछ बाहर की कंपनीज हैं उनसे भी ले लेते हैं। हम लोग अपना भी फीड प्लांट हमारा लगा हुआ है, हम उसे भी बनाते हैं, और उसमें एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द काउ उसके साथ हम लोग जितने भी तरीके के 28 तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें फीड में डाल के उसको फीड को तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग इन गायों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो फीड डालते हैं, उसके साथ ही पूरा TMR मेंटेन करते हैं। TMR वो चीज़ है जो टोटल मिक्स राशन है, जिसमें कि पूरा एक बैलेंस डाइट दी जाती है थ्रू आउट द ईयर एज पर दी वेदर। उसमें ये जितना भी हमें कंसंट्रेशन डालना है, कितना हमें विटामिंस मिनरल्स उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। जो अपनी देसी पदार्थ हैं जैसे हल्दी है, शतावरी है, वो भी हम समय समय पर डालते हैं। जैसे कोई गाय ग्याबन है उसके साथ हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो इस तरीके के जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
1: दुष्यंत MBA है इसलिए वो खुद ही मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं और कांच की बोतलों में दूध पैक करके बेच रहे हैं। दूध के अलावा दही, पनीर, घी, छाछ और मावा सब कुछ यहाँ बनता है।
2: इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हमें बताएं कि दूध तो है सबसे प्राथमिक जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो मिलता है हमें, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके?
0: दूध के साथ हम लोगों ने फिर पनीर बनाया, फिर घी बनाया, और अब हम लोग स्वीट्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है लास्ट ईयर, और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क एंड घी, पनीर, बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं बाय नेक्स्ट ऑफ द मंथ।
1: शुरुआत से ही ये डेयरी फार्म अच्छा कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी के समय बिजनेस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से पटरी पर लौट आया है। अच्छी कमाई की वजह से ही दुष्यंत दूसरे किसानों और नौजवानों को भी डेयरी फार्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 40 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं और उन्हें डेयरी फार्म विकसित करने के तरीके बता रहे हैं।
2: कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए डेयरी फार्म से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
1: दुष्यंत के पिता हरीशचंद भाटी अपने इलाके का जाना माना नाम है। खेती और पशुपालन इनका पुश्तैनी काम रहा है। उनका कहना है कि बेटे को बड़ा आदमी बनना था, इसलिए MBA के बाद नौकरी की बजाय खुद का कारोबार विकसित किया।
0: दुष्यंत भाटी जी की सफलता के बारे में क्या विचार है उनके पिताजी श्री हरीशचंद भाटी जी का, ये उन्हीं से जानते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो हरीशचंद जी, आप अपने क्षेत्र में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और आपके सुपुत्र ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, विदेश में पढ़कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने डेयरी फार्मिंग को चुना। उनकी सफलता को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, जैसे कहावत है कि पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं, तो ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जो एजुकेशन है वो पहले नोएडा में हुई और फिर अमेठी में हुई, फिर ये इंग्लैंड चला गया और इसने वहाँ जा कर के फिर अपने को एक्सपोज किया और फिर मार्केटिंग में और दूसरी क्षेत्रों में इसने बड़ी संभावनाएं संभाली। और जब ये वहाँ से लौटे तो अब से 6 वर्ष पहले, तब हमने इसको ऑफर दिया था कि भाई आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इसने मना किया और कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो हम लोग किसान लोग हैं गुर्जर जाति से, तो हमारे यहाँ बिजनेस में एक रिस्क होता है और वो लेने के लिए गांव के बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसने कहा कि मुझे बिजनेस करना, तो मैंने कहा कि भाई उसमें आपको क्या संभावना लगती है और नौकरी आप प्रेफर नहीं कर रहे तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा कि नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, बड़ा आदमी बनना है तो आप बड़ा आदमी बन जाइए। तो हमारी कुछ लैंड थी कासना में भी और जहाँ ये खड़े हैं यहाँ भी 60-70 बीघा ज़मीन है, तो हमने इनको कहा कि आप इसमें जो NCR के काम हैं बिल्डर्स लाइन वगैरह के, उसमें आप जाके देखिए। तो इसने स्टडी कराया तो इसका मन बिल्डिंग लाइन में, मकान बनाने में या फ्लैट बनाने में नहीं लगा। फिर ये नेचुरली जो हम लोगों के फोर फादर्स भी करते आए हैं दूध का काम और इस तरह का काम जो है गाय का भैंस का, तो वो हम लोगों का पुश्तैनी काम था। तो फिर इसने एक उत्तर प्रदेश सरकार के की एक स्कीम थी काम धेनु, और उसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपये लेके और 1 करोड़ बैंक से 30

0: एक लाइसेंस भी वर्ल्ड लेवल का ले लिया है, जिससे इसका घी भी अब दुनिया में जाएगा।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। एक उद्योग के रूप में ये 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर या तो छोटे और सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन तबका।
2: डेयरी व्यवसाय का प्राथमिक उत्पाद दूध है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई तरह के डेयरी उत्पाद हैं जिनकी बाजार में बहुत ही अच्छी मांग रहती है। तो आइए जानते हैं कि दूध और इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में किस तरह के विकल्प और किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं।
1: दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादों को बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे आगे है। हमारा देश बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है, खासकर मक्खन, ऑयल, पाउडर के रूप में दूध और क्रीम, घी, लस्सी, पनीर, स्किम दूध पाउडर और पूर्ण दूध का निर्यात कई देशों में हो रहा है। 2022-23 के दौरान भारत से 67,573 टन डेयरी उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनसे 2,27,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
2: डेयरी व्यवसाय पारंपरिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तारीख में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
1: राष्ट्रीय डेयरी योजना के विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के कारण डेयरी फार्मिंग का बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इस क्षेत्र को अच्छा प्रोत्साहन मिला है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। पशुओं की उत्पादकता और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पशु आबादी के कानों में टैगिंग की जा रही है, ताकि पशुओं की बीमारियों का पता लगाने, निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।
2: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजना है खास तौर पर जो चलाई जा रही है, जिसका जो पशुपालक है वो लाभ ले सकते हैं, जो डेयरी उद्यम से जुड़ना चाहते हैं।
3: धन्यवाद मैडम। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म जो लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारतीय ब्रीड्स हैं, भारतीय नस्लें जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनका संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,01,00,000 रुपया का है। इसके लिए आप ndddb.coop की साइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इसमें लगभग 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको 200 भारतीय नस्ल के पशु पालने होंगे, जिसमें कि प्रत्येक साल आपको ये मानते हुए कि 50% जानवर आपके गाभिन हो जाएंगे, तो उनसे हम अगर मोर्टेलिटी रेट निकाल भी दें तब भी 90 बछिया आपके पास मौजूद रहेंगी। उन 90 बछियाओं को आपको सेल आउट कर इसके फार्म को आगे बढ़ाना है। ये योजना की सब्सिडी आपको प्रत्येक 4 चरण में, जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे, उसी दशा में आपको 50-50 लाख रुपए की कर 4 बार में आपको योजना की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कर दी जाएगी।
1: बेहतर डेयरी कारोबार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहला है अच्छी नस्ल के सांड से गर्भाधान, दूसरा है आहार, तीसरा साफ सफाई, रोग प्रबंधन और टीकाकरण, और चौथा है पेट के कीड़ों की दवा दिलाना।
2: डॉक्टर विपिन, डेयरी उद्योग जो है इसमें भी कई तरह की नई तकनीकें अब आ गई है, खासतौर पर अगर नस्ल सुधार की बात करें या फिर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं और हैं जिनका लाभ ले सकते हैं पशुपालक?
3: जो मेन तकनीक या अभी हमारे सामने जो निराश्रित गौवंश की समस्या आ रही है, उसके निदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा

0: हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा एक अभिनव प्रयोग किया है जिसका लगातार हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे पास वर्गीकृत बीर जिसको कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन कहते हैं, उसके द्वारा हम अब पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की योजना का संचालन कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि इसकी अगर हम मार्केट कॉस्ट देखें तो लगभग 1250 रुपये थी, लेकिन विगत वर्ष तक सरकारी लेवी इसकी जो थी वो 300 रुपया ली जा रही थी, लेकिन मवेशक भाइयों को और पशुपालक भाइयों को सुविधा देने के लिए इस कृत्रिम गर्भाधान की शुल्क केवल 100 रुपये कर दी गई है। इसमें ये एश्योर्ड है कि आप जो भी जानवर कराएंगे उसमें 90% तक केवल फीमेल काफ ही बॉर्न होगा। जब फीमेल काफ बॉर्न होगा तो मेल काफ की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि मैकनाइज युग में ट्रैक्टर वगैरह का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मेल काफ की उपयोगिता काफी कम हो चुकी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सालय है उस पर आप जाकर वर्गीकृत बीर से अपने जो भी, अभी हमारे पास केवल गौवंशीय पशुओं का वर्गीकृत बीर उपलब्ध है, बहुत ही जल्दी महिष वंशियों का भी वर्गीकृत बीर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर आगे भी कार्य कर रही है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक जो कि अभी हमारे पास लैब में है, लैब टू लैंड तक आने में उसको थोड़ा सा समय है, लेकिन आगे हम उस तकनीक का भी प्रयोग फील्ड में करेंगे।
1: 70 के दशक में हमारा देश दूध की कमी से जूझ रहा था। प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता घटकर 107 ग्राम रह गई थी। तब देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डेयरी क्षेत्र की जो सफलता आज हम देख रहे हैं उसमें इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में कोशिशें हो रही है। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अलग से डॉक्टर कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाता है।
2: आज के कृषि के कार्यक्रम में कि किस तरह से आज के युवा डेयरी क्षेत्र से बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप वात हामली गेंदा ना फूल नी खेती नी वात्यो अने कार्यक्रम नी बीजी कड़ी में आधुनिक तरीका देखी दूध उत्पादन नी वात्यो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा अने खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वात्यो पन लावी से अने नवी नवी खेती नी तकनीकी वात्यो पन लावी से। किसान भाइयों, हमु आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातियों हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी ना क्षेत्र में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू बस एतरी बात, केम की हाल समय थाय गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कई था, हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते।
4: હું છે આરજે રાકેશ
5: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
4: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી આપડા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર।
3: नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोज नी जेम तमारी बस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो छे। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी बस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वात्यो लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रहूं छे। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपु वात्यो सांभळवाना छे कड़कनाथ मुर्गी पालन नी। आने हाथे हाथ एवा आपड़ा झाबवा जिला ना किसान भाई अने देश ना अलग अलग खूणा ना किसान भाइयों नी कहानी हामल हूँ त्या मुर्गी पालन नी खेती करीने केवी रीतनो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रह्या छे। तो चालो किसान भाईयो, हा वार नी करी अने शुरुआत करी आज ना कार्यक्रम खेतीवाड़ी नी।
6: कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है जिसे काली मासी भी कहा जाता है। ये मुर्गे पूरी तरह काले होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का खून और मांस भी काले रंग का ही होता है तथा इनके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। इनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले से हुई है। इन पक्षियों को ज्यादातर गरीबों आदिवासियों द्वारा पाला जाता है।
3: इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को देखते हुए इसकी मार्केट में मांग अधिक रहती है और इसकी गुणवत्ता के कारण ये काफी महंगा भी बिकता है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन मुर्गों को पाल रखा है और कड़कनाथ मुर्गे से वे कड़क कमाई करते हैं। तो सालो किसान भाइयों, हमारी एक एवा सफल किसान की कहानी त्या कड़कनाथ मुर्गी फार्म खोली ने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से।
7: तो ये जो फार्म है आपका, कौन सा बर्ड है अभी यहाँ पर?
8: ये सारा कड़कनाथ है।
7: कड़कनाथ है, हाँ। कितना बर्ड है अभी?
8: अभी 2200 बर्ड है।
7: 2200 बर्ड है। छोटा बर्ड शुरू कर किया था आपने?
8: छोटा बर्ड भी स्टार्ट किया था, कुछ लिंग बर्ड भी परचेस किया था
7: जी। अच्छा, जो ये देख रहा हूँ कई सेक्शन है इसमें बने हुए, कितने सेक्शन है
8: इसमें? चार सेक्शन है।
7: चार सेक्शन है। जो आपके ये चार सेक्शन है, पहला सेक्शन में इसमें बहुत सारे बर्ड है और बड़े हेल्दी बर्ड है। तो ये बर्ड किस तरह का बर्ड है?
8: ये बच्चा लाए थे हम
7: जी,
8: एक दिन का
7: जी।
8: तो ये वो बर्ड तैयार हो रहा है। अच्छा। और ये अगले 10 दिन पे लेंग पे आ जाएगा।
7: अच्छा, अंडे पे आ जाएगा
8: अगले 10 दिन में? ये अंडे पे आ जाएगा
7: जी।
8: जी,
7: तो कितना बर्ड है ये वाला?
8: ये 1600 बर्ड है।
7: 1600 बर्ड ये?
8: हाँ।
7: किस साइज का शेड है ये?
8: ये 30x150 का साइज है।
7: जो ये वाला है?
8: ये वाला जो साइज,
7: जो इनके लिए जो तैयार,
8: जो तैयार बर्ड के लिए है
7: जी। टैंक लगाया हुआ ऊपर?
8: नहीं, ग्राउंड वाटर चलता है। हाँ, टैंक लगा हुआ ऊपर।
7: टैंक से आता है ना?
8: टैंक से आता है पानी।
7: और जो फीड देते हैं, फीड कौन सा चल रहा है इनका?
8: फीड चल रहा है इनका लेंग फीड। अब
7: लेंग फीड चल रहा है। तो अमूमन एक बर्ड कितना फीड ले लेता है ये?
8: एक 70 ग्राम के आसपास एक बर्ड, जो एडल्ट बर्ड होता है, 70 ग्राम के आसपास फीड लेता है एक दिन में।
7: अच्छा भाई सर, ये बताइए, आपने कड़कनाथ से ही शुरुआत क्यों की और क्या विशेषता इस बर्ड की?
8: जी, बेसिकली कड़कनाथ हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि इसमें ना बीमारियां बहुत कम होती हैं।
7: अच्छा,
8: तो जो नया, मतलब जो नया काम स्टार्ट कर रहा होता है, मेन नुकसान है पोल्ट्री में वो मोर्टलिटी की है
7: जी।
8: आप ये सोच नहीं पाते कि जब तक किसान, मतलब किसान ही समझ पाता है कि मैं किस वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, तब तक काफी मोर्टलिटी हो चुकी होती है और फिर किसान थक जाता है।
7: कड़कनाथ एक टब ब्रीड है,
8: टब ब्रीड है, बीमारी कम आती है,
7: झेल जाता
8: है। छोटी मोटी बीमारी हुई तो ये झेल जाता है।
7: यही वजह थी कड़कनाथ,
8: यही वजह थी कड़कनाथ स्टार्ट करने की
7: जी। और अभी अंडे आ रहे हैं?
8: हाँ, लेंग चल रही है, आगे लेंग, आगे लेंग बर्ड है,
7: दिखाइए।
8: हाँ।
7: अच्छा, जो लेंग वाला बर्ड है, अभी कितना बर्ड है आपके पास में?
8: अभी 400 बर्ड है।
7: 400 बर्ड है।
8: हाँ।
7: अंडे कितने आ रहे हैं उनसे?
8: 200 अंडे के आसपास डेली की,
7: 200 के आसपास प्रोडक्शन है, अंडे रोज आ रहे हैं।
8: हाँ।
7: तो जो अंडे हैं वो कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
8: सोसाइटीज में जाते हैं। तो मैंने मार्केटिंग भी सोसाइटी में स्टार्ट की थी और चिकन भी जा रहा है पैक होके, यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी है चिकन की भी।
7: आप चिकन भी जो है
8: डिलीवर कर देते हैं,
7: ऑनलाइन भेजते हैं।
8: हाँ। और एग भी ऑनलाइन डिलीवर कर देते
7: हैं। एग क्या रेट जाता है आपका?
8: एग अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है।
7: 800 रुपए की।
8: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है।
7: 600 रुपए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं। बेशक इनका फार्म गांव में है, लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं। कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
8: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की और लंबाई, 30 फुट चौड़ा है ये
7: जी,
8: और 300 फीट लंबा है ये
7: जी।
8: 30x300 का साइज है ये।
7: बाहर भी ओपन के लिए, आप फ्री रेंज के लिए भी?
8: फ्री रेंज के लिए।
7: और मुर्गियां चर भी रही हैं?
8: जी जी, फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको
7: जी।
8: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है।
7: ये खर्चा कितना आया आपका? लीज का है या अपना?
8: नहीं, ये अपना लीज का है।
7: लीज का है?
8: हाँ जी।
7: क्या लीज जाती है?
8: 20,000 रेंट जाता है इसका।
7: 20,000 जाता है। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए?
8: दो वर्कर है।
7: दो वर्कर है और संभाल लेते हैं।
8: बिल्कुल।
7: आप इसके अलावा क्या करते हैं? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
8: जी जी,
7: इस बारे में बताइए।
8: मैं MBA हूँ
7: जी,
8: ऑपरेशन से। मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
7: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये आपने?
8: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले।
7: 8-9 महीने से किया?
8: हाँ जी।
7: आप इतने अच्छे धंधे में, आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
8: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
7: जी,
8: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
7: अच्छा,
8: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
7: मतलब किया। समथिंग मोर?
8: हाँ जी, समथिंग मोर
7: जी, मतलब कुछ और कर ले हट।
8: बिल्कुल।
7: प्रेरणा कैसे मिली?
8: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
7: अच्छा, कहाँ से हैं?
8: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ।
7: अमरोहा से?
8: हाँ जी। तो बाप दादा ये किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए। तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए, अभी तो ये स्टार्ट फेस है। इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
7: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
7: जी
8: जी।
7: इतने शानदार बर्ड है आपके
8: जी,
7: जो चिकन है,
8: एडल्ट चिकन है जी।
7: चिकन पर्पस से आपने
8: ये चिकन पर्पस से अलग रखे,
7: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं
8: जी,
7: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
8: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
7: क्योंकि अच्छे खासे
8: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा ये लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
7: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
7: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8 महीने 9 महीने हो गए आप
8: जी,
7: कैसा लगा आपको ये काम?
8: बहुत बढ़िया काम है
7: जी।
8: बस मेन काम है मार्केटिंग।
7: अच्छा,
8: अगर आपकी मार्केट नहीं है
7: जी
8: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
7: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने
8: ये एक्चुअली है क्या? खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
7: अच्छा,
8: ये सेक्शन बढ़ेगा तो इसमें आ जाएगा, उधर फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
7: स्पेस ज्यादा चाहिए,
8: स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी,
7: यहाँ पे आपने अंडे की ट्रे रखी हुई है
8: जी,
7: मतलब स्टोर आपने यहाँ
8: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है? रोज 2 दिन में 4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
7: हाँ।
8: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है। जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है,
7: क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
8: जी, जी
7: मतलब
8: पैकिंग में जाता है,
7: रेडी
8: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
7: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
8: जी,
7: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
8: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
7: जी,
8: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
7: अच्छा,
8: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
7: जी,
8: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
7: जी।
8: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
7: उनको टारगेट किया
8: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया है, जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं करता, वो 1000 और 2000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
7: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
8: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
7: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
8: देखिए डिमांड ठीक आने लगी है, क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है तो अब डिमांड और बढ़ रही है,
7: बिल्कुल
8: रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग, उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं, लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
7: जी।
8: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
7: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
8: जी,
7: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुंच नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है।
8: बिल्कुल,
7: रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा
8: वहाँ माल बिक नहीं रहा,
7: पहुंच नहीं पा रहे।
8: बिल्कुल,
7: ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
8: जी जी जी जी
7: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया?
8: बिल्कुल
7: जी,
8: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
9: भारत में कड़कनाथ मुर्गा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में ही मिलता है, किंतु कड़कनाथ की इस ब्रीड को अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाने लगा है। कड़कनाथ मुर्गे की तासीर गर्म होती है तथा देश से तकरीबन सभी हिस्सों में इस मुर्गे की काफी मांग रहती है। यह 3 प्रजातियों में पाया जाता है, जिसमें पेंसिल्ड, गोल्डन और झेड ब्लैक शामिल होते हैं। झेड ब्लैक मुर्गे के पंख पूरे काले होते हैं तथा पेंसिल्ड प्रजाति के मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है। वहीं गोल्डन प्रजाति के मुर्गे के पंखों पर गोल्डन छिटे पड़े होते हैं। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं। इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियां और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो सालो किसान भाइयों, हव हमली कड़कनाथ मुर्गानी वातियों मारा सहयोगी भाई कमता डामोर देखी भिल्ली बोली माँ।
10: तो किसान भाइयों, कड़कनाथ एवो कुकड़ू से जो कि आपड़ा झाबुआ जिला में पड़वा वालों से अने तीनी प्रदेश भर में अने देश भर में इन्होंने काफी डिमांड से अने ज्यादा डिमांड अने ઉત્પાદન કમ રહેવાને કારણ ઇનાને જ્યાદા ઇહની કિંમત મળે છે. તો કિસાન ભાઈઓ ઇનાન પાળવા હારું એક સહી તરીકાથી એની દેખરેખ કરવી પડે અને એનો કાળોમાં અને પૂરી દુનિયામાં ઘણો હી કિંમતી અને ઘણો દુર્લભ અને કઠિન માની જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, હમણે તક પૂરા વિશ્વમાં 25થી જ્યાદા કુકડાની પ્રજાતિઓ પાઈ જાય છે. તેમાં કાળા માંસના નામથી એનાને કડકનાથના જાણે છે. તો એના એનામાં ભારતના કડકનાથને અલાવા ચીનની સિલ્કી અને ઇન્ડોનેશિયાની આયામ સેનીની અને વિયેતનામની ઓકે નામનો કુકડો કાફી પ્રસિદ્ધ છે. અને એના કાળા રંગની મુખ્ય વજહથી ફાઇબ્રોમિલેનોસિસ નામની એક અનુવાંશિક ગુણવાળો રહેશે અને એમાં મેલેનિન પિગમેન્ટ કડકનાથ માંસ હડ્ડી અને ત્વચાના સંચયથી થાય છે. કડકનાથ ભારતનો એક પંજીકૃત મુર્ગાની એક નસ્લ છે અને તેનાને હાલમાં મધ્યપ્રદેશને માહના હારું ભૌગોલિક સંકેત GI ટેગ મળ્યો છે. ઝાબવા મધ્યપ્રદેશની પહેચાણ યુ આ હરકો કેવલ ઝાબવામાં પાઈ જવાવાળી કુકડાની એક પ્રજાતિ કડકનાથના કારણ પૂરા દેહમાં છે. ક્ષેત્રીય ભાષામાં કડકનાથને કાળા માસીના નામ થી જાણે જાય છે, કેમ કે ઇહનો માંસ ચોસ, કલંગી, જુબાન અને પોગ, નોખ, સાંભળી એની હાગળી કાળી રહેશે અને એનું લોહી બી કાળું રહેશે. તો કિસાન સાથીઓ, તેની હારું મિલેનિન પિગમેન્ટની જ્યાદાતર રહેવાને કારણ રહેશે. એમાં માહમાં પ્રોટીન પ્રચુર માત્રામાં અને વસા ન્યૂનતમ માત્રામાં રહેશે. તેથી હૃદય, ડાયાબિટીસ રોગીઓ હારું કાફી ઉત્તમ આહાર છે. એનો માં હવાદવાળો અને આસાનીથી પચવાવાળો રહેશે. એની વિશેષતાને કારણ બજારમાં એની માંગ કાફી તેજ રહેશે અને કાફી ઊંચી દરી પર એના જ્યાદા કિંમતમાં વેચાઈ જાય છે. કડકનાથની તીન પ્રજાતિઓ રહેશે. પહેલી પ્રજાતિ છે જેટ અને બીજી છે બ્લેક અને આગલી પ્રજાતિ પેન્સિલ્ડ ગોલ્ડન પાઈ જાય છે. એમાંથી જેટ બ્લેક પ્રજાતિ સૌથી જ્યાદા માત્રામાં અને ગોલ્ડન પ્રજાતિ સૌથી કમ માત્રામાં પાઈ જાય છે. નર કડકનાથનો ઓસ્તન વજન 180 થી લગાડીને 2.5 કિલો વજન તકનું રહેશે. માદા કડકનાથનો ઓસ્તન વજનના અને ઓસ્તન વજન 180 થી 2.5 કિલો તકની લગભગ રહેશે અને એનો ઓસ્તન વજન 125 થી 1.5 કિલો તક લગભગ રહેશે. માદા કડકનાથ હર વરે 110 થી 120 ઈંડા મેલે છે અને એના ઈંડા નાના મધ્યમ આકારના હલકા ભૂરા ગુલાબી રંગના અને વજનમાં 30 થી 35 ગ્રામ વજનવાળા રહેશે. આર્થિક અને સામાજિક પ્રભાવ. તો કિસાન ભાઈઓ, મુરગી પાલનમાં કુક્કુટ પ્રબંધનનો મહત્વ પૂરો યોગદાન રહેશે. કડકનાથ વ્યવસાયમાં લગભગ 80% સમસ્યાઓ કુક્કુટ પ્રબંધનમાં કરીગી લાપરવાહીને કારણ પેદા થાય છે. કડકનાથ મુરગી પાલનવાળાને ઘણી એવી સાવધાનીઓને ધ્યાન રાખીને આગળ વધવાની સલાહ આપી જાય છે કે કઈની બી કડકનાથ ફાર્મને એવા વિકટ સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડે. એના હારું વ્યવસાયમાં કદમ રાખવાથી પહેલું પૂરો વિશ્વાસની હાથે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈએ અને એની ટ્રેનિંગ બી કરી લેવી જોઈએ. બ્રુડિંગ વ્યવસ્થાની જાણકારી, કેમ કે બ્રુડિંગમાં પક્ષીનો ભવિષ્ય, ઉત્પાદન અને લાભ હાનિ નિર્ધારિત થાય છે. કડકનાથ ચૂજામાં સહી સમય પર ટીકાકરણ કાર્યક્રમ અને કડકનાથ પક્ષીઓમાં સહી સમય પર કૃમિનાશક દવાઈઓનો પ્રયોગ કરવાનું યુ સૌથી પહેલું પ્રમુખ કામ રહેશે. કડકનાથ માંસ સેવનથી લાભ. કિસાન સાથીઓ, ઓરિજિનલ કડકનાથ માંસમાં ભરપૂર પ્રોટીન રહેશે અને વસા એમાં નાની બરાબર રહેશે. એની હારું એનાને हगड़ा खिलाड़ियों ने खावानी सलाह आली जाए से। कड़कनाथ माहना सेवन थी केवल शरीर ने बढ़ोतरी बल्कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी इनकी बढ़े से अने अनेक बीमारियों थी इन्होंने खावा थी वसी सके। तभी साथियों कड़कनाथ माह

यो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआनी आवाज पर। तो किसान भाइयों, यह हता प्रवीण मेरा जी, ग्राम मिंडल ना रहवा वाला से अने कड़कनाथ मुर्गी पालन करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से। किसान भाइयों, 10-12 साल देखी मुर्गी पालन करवा देखी इन्होंने कड़कनाथ मुर्गी पालवानो घणो अनुभव थाई गयो से अने हाव मोटा फार्म नी पण विचार करी रहा से। तो सालो किसान भाइयों, हाव आपू कार्यक्रम ने आगारी बढ़ावी अने हामली आपड़ा झाबवा जिला मा आदिवासी भील समुदाय में जब लाड लाडियां पैणे अने तीन में जो गावे त्यू मजानू असल गीत हामली ने पाछा भेड़ा था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जाजो मती कही था हामलता रेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम पर।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में एक नए टैलेंट, एक नई गायिका, एक नए सिंगर हमारे साथ हैं जिनका नाम है अंकिता जी। बाकी अंकिता जी खुद बताएंगी। तो अंकिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम अंकिता काकोटी है और मैं गुवाहाटी आसाम की रहने वाली हूँ और यही पली बड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया। और आज के कलाकार इस कार्यक्रम को मैं काफी समय से सुन रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि अलग अलग जो आवाजें सुनाई दे रही है, देती है, तो वो काफी मीठी और सुरीली है। हर एक प्रांत के लोग इस प्रोग्राम में आमंत्रित किए जाते हैं और उनको सुनकर ये महसूस होता है कि हमारे भारत में अनेकता में भी एक एकता छुपी हुई है और यही हम सबको अलग बनाती है और स्पेशल बनाती है। और इसी के साथ मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में बोलूं तो फिलहाल मैं एक कंटेंट राइटर हूं और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रही हूं रिमोटली, और साथ ही साथ मैं PhD की शिक्षा भी कर रही हूँ, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मैं अपनी PhD कर रही हूँ। और संगीत की शिक्षा मैंने विशारद कंप्लीट की है और एक प्राइवेट म्यूजिक स्कूल से, असम से ही मैंने म्यूजिक की तालीम ली है और यही है मेरी लाइफ की कुछ बातें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकिता जी। दोस्तों आपने सुना अंकिता जी गुवाहाटी आसाम से हैं, तो जाहिर सी बात है जैसा अंकिता जी ने बिल्कुल सही कहा, पूरा हिंदुस्तान जुड़ता ही जा रहा है। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को अंकिता जी के ही गाए हुए प्यारे से गीत से।

0: बहुत सुंदर। अंकिता जी चलिए बचपन में चलते हैं, छोटे बन जाते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: सर क्रिएटिविटी का मुझे काफी लगाव था बचपन से ही, और किसी भी क्रिएटिव चीज को जैसे कि आर्ट हो गई, पेंटिंग हो गई, तो उससे मेरी काफी खिंचाव थी। और मैं और मेरी बहन हम दोनों स्क्रिबल किया करते थे, हमारा एक बहुत मजेदार गेम हुआ करती थी। तो हम क्या ड्राइंग बुक में मैं अलग अलग वो फैशन शो ऑर्गेनाइज करती थी, मतलब फैशन वो ड्रॉ करती थी, स्क्रिबल करती थी, और एट लास्ट हम लोग विनर्स डिक्लेयर करते थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये एक बहुत मजेदार गेम थी हम लोगों की। और साथ ही में मैं एक हम लोग प्राइवेट गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो वहां पे मतलब मेरे काफी सारे दोस्त थे, हम उम्र के थे सब लोग। तो हम लोग एक ईयरली एक प्रोग्राम हम लोगों ने वो किया, ऑर्गेनाइज किया, उसका नाम था कैंपस टाइमपास शो। तो हर एक घर के लोग बच्चे आके अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे, कोई गाना गा लेता था, कोई मोनोलॉग करता था, कोई डांस करता था। तो यही सारी क्रिएटिव चीजें मेरे अंदर थी, और हमेशा से मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में, म्यूजिक या मीडिया में कुछ करना था। और बचपन से ही मैं क्रिएटिव पर्सन बनना चाहती थी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। दोस्तों चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अंकिता जी की ही आवाज में।

0: तो अंकिता जी, क्रिएटिविटी से भरे हुए बचपन में आपके कौन से ऐसे टीचर थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया, प्रभावित किया? आपके फेवरेट टीचर कौन थे?
1: मेरी जिंदगी में टीचर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमेशा से ही। मेरी बहन भी एक टीचर है, शी इज अ प्रोफेसर, और साथ ही में हमारे फैमिली में भी काफी सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स है। तो सबसे अगर बोले मेरे फेवरेट टीचर में से दो टीचर्स का मैं नाम लेना चाहूंगी।
0: जी
1: एक तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब अभिक्षा मिश्रा जी करके हमारी एक टीचर हुआ करती थी, तो वो मुझे काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती थी कि कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, या तो फिर आप मैं बीच बीच में अटकती थी कभी कभी प्रेजेंटेशन जब देती थी, क्योंकि वो नया भी था मेरे लिए कोर्स, मैंने बीबीए किया था, तो तब वो ट्रिक्स देती थी कि कभी भी अगर हिचकिचाओ या तो फिर अटको तो प्लेन सरफेस में हम लोगों को 5-6 सेकंड के लिए देखना चाहिए और फिर से हमको कंसंट्रेशन, तो ऐसी सारी चीजें वो बताती थी। और रादर देन मतलब मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के बजाय वो सुधारने की कोशिश करती थी स्टूडेंट्स को, तो वो चीज मैंने सीखी और अपने लाइफ में भी वो चीज लाने की कोशिश की। और दूसरी टीचर जो है मेरी मास्टर्स एमबीए की टीचर अभिनव जायसवाल मैम, तो वो उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि फिल्म पहले कैसे होती थी, एक एस्केपिस्ट मीडियम कहते थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी बिजनेस है उससे बचने के लिए फिल्म देखने के लिए लोग जाते थे, बोर्डम के लिए बचने के लिए, और फिर वो कैसे आर्ट फॉर्म बनी और कैसे मतलब पैरेलल फिल्म्स आई, फिर कमर्शियल फिल्म्स कैसे आए, तो फिल्म के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी बताई, हर एक एंगल से कैसे देखा जाता है फिल्म, तो ये सब चीजें मुझे बताई जो आगे चल के मेरी लाइफ में काफी काम आए। और अभी जो जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, तो उसपे भी मैं काफी सारे उनकी चीजें लेके चल सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टीचर्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत प्रेरणा दी आगे बढ़ने की, तो ये दोनों मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक रहेंगे, अभिनव मैम और अभिक्षा मैम।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगला गीत जो आपने गाया है, हम आपके फेवरेट टीचर्स को डेडिकेट करते हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अंकिता मैम, मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिफाइन करते हैं, आपकी डेफिनेशन बताते हैं, कौन से तीन शब्द हैं?
1: तो तीन शब्द में अगर मैं बोलूं तो एक होगा रचनात्मक, क्रिएटिव, और दूसरा होगा सशक्त, जो एम्पावर्ड
0: एम्पावर्ड,
1: और तीसरा होगा संवेदनशील।
0: ओके,
1: तो ये तीन वर्ड्स मेरे जिंदगी में काफी मायने रखते हैं और कहीं ना कहीं ये परिभाषित भी करते हैं मेरी लाइफ को।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। क्रिएटिव रचनात्मक हो गया, एम्पैथेटिक आप संवेदनशील हैं, और तीसरा आपने बताया था एम्पावर्ड, सशक्त। हाँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, अंकिता जी का ही गाया हुआ।

0: आगे बढ़ते हैं अंकिता जी। जैसे आपने कहा कि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, बचपन से क्रिएटिव हैं, तो चलिए एक क्रिएटिव क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आप कहें तो।
1: जी बिल्कुल।
0: फर्ज कीजिए आपको 24 घंटों के लिए, 24 आवर्स के लिए गायब कर दिया जाए, इनविजिबल बना दिया जाए, तो उन 24 घंटों में क्या करना पसंद करेंगे आप?
1: तो मुझे मतलब दो जगह जाने की बहुत तमन्ना है, और अगर मुझे 24 घंटे के लिए मतलब ये मिले ये मौका, एक तो मैं अंतरिक्ष में जाना चाहूंगी,
0: वेरी नाइस
1: चाहूंगी, तो वहां पे एक्सप्लोर करना चाहूंगी कि लाइफ बियॉन्ड जो बोलते हैं, जैसे कि आप अंतरिक्ष में लाइफ कैसी होती है और कैसे लोग वहां पे गुजारा करते हैं, तो वो चीज, और यूएफओ को से भी मुझे काफी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में भी मैं जितना हो सके 24 घंटे में जानना चाहूंगी और उनके साथ मतलब एक दिन गुजारना चाहूंगी मैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी ही मजेदार बात कही अंकिता जी ने। सचमुच आप एक क्रिएटिव पर्सन है, इतना क्रिएटिव सा जवाब, बहुत ही खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यूएफओस के बारे में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आप यूएफओस, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगी, आप अंतरिक्ष में जाना चाहेंगी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ एक दिन गुजारना चाहेंगी, बड़ी ही खूबसूरत बात। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अंकिता जी का ही गाया हुआ।

0: अंकिता जी, आपकी हॉबीज क्या है? गाना गाने के अलावा बताइएगा, आपकी हॉबीज क्या है?
1: जी, तो गाने के अलावा मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं कुकीज व कपकेक्स या क्रिसमस में एक स्पेशल होता है प्लम केक, तो वो मैं बनाती हूँ घर में, और काफी नए नए रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। और जैसे हम लोग के असम में एक फेमस रेसिपी है तिल चिकन, तिल से बनाया जाता है, तो
0: ओके
1: वो भी मुझे काफी पसंद है बनाना। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं ये सारी चीजें, क्योंकि मतलब बचपन से ही हम लोग बहुत पेरेंट्स वर्किंग हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों वर्किंग थे, तो हम लोग को टाइम काफी मिलता था, तो हम जब भी फ्री टाइम मिलता था हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे ऐसे चीजें। तो ग्रेजुअली मुझे बेकिंग का भी बहुत वो इंटरेस्ट आया, तो इसीलिए गाने के अलावा बेकिंग मुझे करना बहुत पसंद है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मुझे वॉइस एक्टिंग का भी शौक है, और मैं वॉइस आर्टिस्ट के हिसाब से भी मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं तो ब्रांड्स के साथ। तो वॉइस एक्टिंग का भी मैंने 4-5 सालों से मैंने सीखा है, सेल्फ लर्निंग की है यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के, तो वॉइस एक्टिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत ऐसा शौक है, तो कहा
0: बहुत
1: जाए तो
0: बढ़िया,
1: हॉबीज।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। दोस्तों, आपने सुना कितने खूबसूरत और कितने क्रिएटिव हॉबीज हैं अंकिता जी की। चलिए फिर एक गीत भी सुनते हैं अंकिता जी का ही गाया हुआ।

0: अंकिता जी, पूरे दिन में जब कभी भी आप बहुत खुश रहती हैं तो क्या कोई ऐसी बाधा, कोई हर्डल आता है नॉर्मल रूटीन में, रेगुलर आ जाता हो, जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, आपका मूड खराब करके चला जाता हो, ऐसा क्या होता है?
1: रेगुलर रूटीन में अगर देखा जाए तो हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो मुझे बीच बीच में, मतलब वो होता है कि बीच में मतलब क्या था, मुझे सांस की भी, अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी एक वक्त पे जब मैं स्टूडेंट थी, और उसके बाद भी जब वर्क लाइफ में भी आई तो एक बार मतलब टूर जॉब काफी हो गया था मेरा, टूरिंग रिलेटेड जॉब, तो उसमें भी मेरी तबीयत काफी खराब रहती थी क्योंकि जंक फूड वगैरह हम ट्रेवल पे खाना पड़ता था। तो उसको कैसे मैं डील किया, मैंने तो नेगेटिविटी को भी मैंने पॉजिटिव वे में लिया। अब अपार्ट फ्रॉम मतलब मेडिसिन जो हम लोग प्रेस्क्राइब डेफिनेटली डॉक्टर से करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी होता है।
0: श्योर,
1: तो व्यायाम और योग के द्वारा मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं और मैं अभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये इंप्लीमेंट करती हूँ कि योग, मेडिटेशन या एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखूँ, और जितना हो सके होममेड फूड कैरी करूँ या खाऊं। तो ये सारी चीजें मतलब बाधाएं, मैंने नेगेटिव बाधाएं भी पॉजिटिव करने की कोशिश की है लाइफ में।
0: अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया आपने। चलिए दोस्तों, सुने एक और प्यारा सा गीत अंकिता जी का ही।

0: और अंकिता जी, आपकी जिंदगी में अब तक सबसे इंपॉर्टेंट अकॉम्प्लिशमेंट या बहुत गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही है?
1: सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक अगर मैं बोलूं तो वो रहेगी, मैंने मास्टर्स में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन हुआ था, प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन। तो वहां पे मैंने अपने आसाम के एक फेमस नाट्यकार है हमारे ज्योति प्रसाद अगरवाला, उनके ऊपर एक प्रस्तुति की थी मुझे। मैंने उनकी एक चलचित्र है जो आसाम की पहली फिल्म है, पहली चलचित्र है जौनमती करके, वो एक आसाम के वीरांगना जौनमती कुंवरी या सती जौनमती भी बोलते हैं उनको, तो उनके उनकी कहानी को लेके बनाया गया है। तो कैसे उनकी स्ट्रगल की कहानी, उनके जो पति गोदापनी थे वो एक वॉरियर थे, तो वो उनके बारे में जौनमती बोलती बताती नहीं थी कि वो कहाँ पे है, तो उनके ऊपर भी काफी अत्याचार हुआ, और वो उन्होंने कैसे अपने साहस और बलिदान की कहानी है ये, कैसे वो उन्होंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, तो सेक्रीफाइस की कहानी है। तो वो चीज मैंने जब प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया तो सारे जजेस काफी अप्रिशिएट किया, सारे जजेस ने, और उनको काफी अच्छा लगा कि एसमीस फिल्म एक 1935 में रिलीज हुई, तो
0: माय
1: उनको
0: गॉड,
1: पता नहीं था ये चीज, तो काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि 1935 में ये फिल्म आई थी, और तब तकनीकी असुविधाएं भी थी काफी और फिल्म मेकिंग में, लेकिन फिर भी ये फिल्म बनी और काफी अप्रिसिएशन भी मिली यहाँ पे। और आइडियो हैंडी करके जो जिन लेडी ने ये प्ले किया है रोल, तो वो भी उनको भी बहुत प्रेज और सक्सेस मिली थी इस फिल्म से, तो वो मेरे लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि में से एक है, क्योंकि पूरे हॉल में, पूरे सेमिनार हॉल में सब लोगों ने ताली बजाया और अप्रिशिएट किया कि एसमिस फिल्म 1930s के दौर में आई थी, और ऐसे मतलब अहोम किंगडम के बारे में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट की गई है, क्योंकि अहोम किंगडम हमारे आसाम में 600 साल तक उन्होंने राज की थी, तो उसके बारे में मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी कम चर्चा होती है, तो फिल्में बननी चाहिए इस सब्जेक्ट पे, तो इसी वजह से मतलब ये एक चीज मैं हमेशा मतलब मेरी लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट मेमोरी रहेगी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल चूज किया हुआ सब्जेक्ट। दोस्तों, बहुत बढ़िया, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अंकिता जी की ही आवाज में।

0: अंकिता जी आगे बढ़ते हैं, अभी तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है और किसने दिया?
1: वैसे तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, मेरे प्रियजन उन्होंने दिए है, मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन सबसे कीमती में से एक अगर बोलूं तो वो रहेगी द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो गिफ्ट है, तो वही मेरे लिए सबसे कीमती और महत्वपूर्ण है लाइफ में, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को एजुकेटेड होना चाहिए अपने फील्ड में, क्योंकि तभी वो अपने क्षमता के द्वारा, अपने साहस के द्वारा एक दिशा नियंत्रण कर सकते हैं लाइफ में। और मुझे मेरे मम्मी पापा ने इस काबिल बनाया, मुझे प्रबल बनाया, शिक्षा के द्वारा शिक्षित बनाया, ताकि मैं लाइफ में कुछ कर सकूं और मेरी गोल्स को अचीव कर सकूं मैं, तो ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, गिफ्ट ऑफ एजुकेशन।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया बात। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं आपकी आवाज में।

0: अंकिता जी, अब हम लोग हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए ना, उनसे कुछ कहिए।
1: सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद मेरे गीतों के साथ साथ मेरी कहानी और किस्सों के बारे में भी सुनने के लिए। तो मेरा एक मैसेज जो मैं सभी को देना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में चाहे जो भी परेशानियां हो या जो भी चैलेंजेस आए, आप लोगों को हमेशा से ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और म्यूजिक या कोई भी चीज जो आपको खुशी दे तो वो चीज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिन में अगर आप 10 मिनट का समय भी निकालते हो उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखने के लिए, तो वो चीज अपने लाइफ में जरूर लाइएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि वो चीज लाने से आपकी जिंदगी में एक खुशी और एक सेटिस्फेक्शन हमेशा से रहेगा कि आप कुछ कर पाए हो। तो इसी के साथ मैं आप सभी को मेरी तरफ से आदर भरा प्रणाम। थैंक यू फॉर
0: थैंक यू सो
1: लिसनिंग।
0: मच। तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर मैं आपका रेडियो दोस्त समीर हाजिर हूं और बहुत मजा आएगा सुनकर दोस्तों आपको आज का प्रोग्राम। हमारे साथ जो टैलेंट हैं वो हैं सुरैया नायक जी, और बहुत ही प्यारे प्रदेश से, बहुत ही प्यारी जगह से हैं, वो गोवा से हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लहरें, वो समंदर। तो चलिए चलिए चलिए, मैं सुरैया जी से उनका थंडर स्टील करने की कोशिश नहीं करूंगा। हम लोग सुरैया जी का स्वागत करते हुए, उनका वेलकम करते हुए उन्हीं से पूछेंगे। सुरैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मुझे और अपने नई फैमिली मेंबर्स जो आज के कलाकार की फैमिली में आप आज स्वागत हुआ है आपका, जुड़े हो, उन सबको बताइए। बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
1: हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते समीर जी, नमस्कार, वडक्कम, केम छो, कॉमिस्ता, सबको मेरा प्रणाम। मैं गोवा से हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ रहती हूँ गोवा में, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच के माध्यम से आप सभी से आज बात कर रही हूँ और ये मौका मिला मुझे। थैंक यू नितिन जी और

0: मेरी फ्रेंड जो मीनाक्षी है उसने मुझे इधर इधर कांटेक्ट किया मुझे।
1: ऑलराइट सुरैया जी, ये तो बताइए आप करते क्या हो वहां पर गोवा में, व्हाट डू यू डू?
0: मैं गोवा में आई एम अ बैंकर, एक्चुअली आई एम अ एक्स बैंकर।
1: अच्छा, ओके।
0: अभी या एंड अभी मैं मेरा व्यवसाय है, मेरा ट्रेवल एजेंसी है वो चला रही हूँ।
1: अच्छा, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं गोवा में ही, पंजिम में ही?
0: पंजिम में, हाँ
1: बहुत
0: पंजिम
1: बढ़िया,
0: में,
1: बहुत खूब। तो जी बोलिए बोलिए।
0: सो एक्चुअली बैंकिंग इज द प्रोफेशन वेयर मुझे इस बैंकिंग से मुझे बहुत से लोगों से मिलाया। वो जो डिसिप्लिन, पेशेंस, कस्टमर सर्विस, वो सब इसी माध्यम से सीखी मैं। और नाउ सिंगिंग इज बिकम अ पैशन। सो
1: ऑलराइट, बहुत खूब। तो चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम लोगों ने ये जाना कि सुरैया जी गोवा से हैं, पंजिम से हैं और क्या करती हैं। चलिए सुनते हैं उनके गाए हुए ये दो प्यारे से गीत इस कार्यक्रम की शुरुआत में।

0: बहुत बहुत ही प्यारे गीत सुरैया जी, कमाल कर दिया, बहुत ही प्यारी गायकी सुरैया जी। चलिए थोड़ा सा आपके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपने म्यूजिक के बारे में ही हमें बता दीजिए, आपकी ये जो गायकी है, जो सिंगिंग है, ये आप कब से गा रहे हो, और कहीं से आपने क्लासिकल सीखा या नहीं सीखा, सिर्फ आप म्यूजिक के बारे में पैशनेट हो, तो गायकी आपकी कब से चल रही है?
1: एक्चुअली बचपन से मुझे संगीत में बहुत लगाव हुआ है, लेकिन संगीत मेरे लिए केवल एक शौक नहीं है, बल्कि मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम जैसा है। और पहले तो क्या होता था कि म्यूजिक टीवी नहीं था, कभी सिर्फ रेडियो, बाद में टीवी आ गया, रेडियो से मैं सुनती थी, रेडियो बहुत सुना मैंने, तो इवन वो लव्स होते थे, जो प्रॉपर लव्स भी ना हमको मालूम नहीं होते थे शब्द, फिर भी दैट लय, वो संगीत हमेशा अपनी क्या बोलते हैं कि विद दैट सिंगिंग, जब हमारी चतुर्थी होती थी तो मेरे काका भजन गाते थे, वो सुनना, उनके साथ बैठ के सुनना, उधर से सीखा मैंने थोड़ी जैसे वो जो गाने होते थे मराठी में, कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला कस्तोर, देन केशवा माधवा, विठ्ठल तो बरवा, ऑल दिस सॉन्ग्स, दैट म्यूजिक, वो सुन के सीखी हूँ। फॉर्मल सिंगिंग कभी नहीं सीखा।
0: कोई बात नहीं मैम, हमारे आज के कलाकार में जितने लोग हैं ना, वो लोग म्यूजिक के पैशनेट ही हैं, पसंद करने वाले हैं, उनको म्यूजिक से प्यार है, तो ठीक है, अगर आपको सीखने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। सो मैं सचमुच आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने मराठी के जो भजन वगैरह, अभंग वगैरह गाते हुए सुना और उनको गाया, वहीं से आप इंस्पायर हुए और आपने गाना शुरू किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी ही बढ़िया बात है। लेकिन सुरैया जी, ये तो बताइए कि आप किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं? मेरा कहने का मतलब है भजन, गजल, क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड, हिंदी सॉन्ग्स, किस तरीके का पसंद करते हैं आप?
1: मुझे अलग अलग तरीके के गीत गाना पसंद है एक्चुअली
0: जी,
1: और हमेशा अपनी गायकी को बेहतर बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। मुझे लता जी बहुत पसंद है, आई ट्राई टू सिंग हर सॉन्ग्स, क्योंकि उसकी गायकी में जो उसकी विविधता है, सरलता है, लाइफ गिविंग वो सॉन्ग्स है उसके, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो कठिन से कठिन गाना भी वो इतनी सरलता से गाती है, दैट आई लाइक, सो आई लव हर सिंगिंग।
0: बहुत
1: बढ़िया। भजन भी गाती हूँ मैं, आई लाइक दिस आल्सो, आई ट्राई टू सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस आल्सो, आई नो मेनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, आई ट्राई टू सिंग इन दिस
0: लैंग्वेज। क्या बात है, वैसे भी इतनी सारी लैंग्वेजेस को जानना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक और बात सुरैया जी, मतलब आप इतनी सारी लैंग्वेजेस में गाते हैं तो हाँ। वैसे तो बोल भी लेते होंगे, सारी लैंग्वेजेस बोल लेते होंगे, है ना?
1: बोल लेती हूँ
0: आराम से।
1: कन्नड़ा समझ लेती हूँ, पोर्चुगीज ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सिंग बट आई कैन अंडरस्टैंड, देन इंग्लिश तो हाँ, मराठी आई कैन सिंग।
0: ओके तो बहुत बढ़िया। लीजिए दोस्तों, एक और हमारे साथ आज के कलाकार जुड़े हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए पहले तो इनके इन गीतों का मजा लें और फिर वापस आए सुरैया जी के पास।